मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी का।

लखनऊ केंद्र। आज दिन है गुरुवार, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:55 और 38 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होते हैं हमारी आज की ये पहली सभा।

सुबह की पावन बेला और चिड़ियों की चहचहाहट के साथ आइए करते हैं दिन की शुरुआत। तो नमस्कार, लखनऊ में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करता है आकाशवाणी लखनऊ।

0: मीडियम वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आइए रुख करते हैं आकाशवाणी दिल्ली की ओर, जहां से अब से बस थोड़ी ही देर बाद यानी 6 बजे से रिले किया जाएगा हिंदी समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, खेती किसानी से जुड़ी जानकारियों के लिए आइए चलते हैं हमारे

0: अगले कार्यक्रम की ओर। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा, जिसमें आज बाजरा की उन्नत खेती विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर विष्णु प्रताप सिंह, और इस विषय पर इनसे बात करने जा रही हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय। आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां आप खरीफ फसलों की बुआई कर रहे हैं और बाजरा उत्पादन की आपकी फसल योजना है और अभी तक बुआई नहीं कर पाए हैं, तो बाजरा उत्पादन की उन्नत तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पूर्व निदेशक कृषि डॉक्टर बीपी सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि बाजरा उत्पादन की क्या कुछ संभावना है अभी भी?
2: नमस्कार राय साहब और हमारे किसान भाइयों को हमारा अभिवादन। बहुत ही सामयिक प्रश्न आपने पूछा है। हमारे प्रदेश में जो खरीफ की मुख्य फसल धान है, उसके बाद दूसरा नंबर बाजरा का आता है, तो आज बहुत ही सामयिक हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं बता दूं किसान भाइयों को कि ये मूल जो फसल है ये अफ्रीका की थी, और बाद में जो हमारे यहाँ की क्लाइमेट है और एशिया की अन्य देशों की क्लाइमेट है, यहाँ पे इसका प्रसार हुआ है, और मौसम की जो प्रतिकूलता बढ़ती जा रही है उसके लिए ये हमको ये लगता है कि सबसे मुफीद फसल है। और बुआई का उचित समय चल रहा है, ये 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में इसकी खेती हम लोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं।
1: और वैल्यू एडिशन की बात करें तो संभावनाएं भी बहुत हैं।
2: बहुत संभावना है। आप केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा दोनों पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी हमारे श्री अन्न है, जिसमें मुख्य हमारा बाजरा है सबसे अधिक एरिया, इसमें खेती पे भी ध्यान दिया जाए, और इसके जो प्रसंस्कृत करके इसके बिस्किट बन सकते हैं, लड्डू बन सकता है, केक बन रहा है, मठरियां बन रही हैं, और बहुत सारे जो महिला समूह हमारे हैं, कृषक उत्पादक संगठन है, इसको प्रसंस्कृत करके बाजार में ला रहे हैं, और धीरे धीरे इसकी स्वीकार्यता भी लोगों में बढ़ रही है, क्योंकि इसमें वसा की मात्रा अच्छा है, ग्लूटेन फ्री है, डायबिटीज कम करता है आपके, और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है बाजरा। हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और खेती के लिए भी मुफीद है, कि अगर आप अभी तक धान की रोपाई नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो मेरी सलाह ये होगी कि आप बाजरा की खेती पे भी ध्यान दें।
1: और आधे अगस्त तक इसकी बुआई कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, ये कुल फसल 80 से 90 दिन की प्रजातियां, इसकी जितनी भी हैं प्रचलित प्रजातियां जो अधिक उत्पादन देती हैं, सब 80 से 90 दिन में हो जाती हैं, तो आपको रबी की फसल के लिए पर्याप्त तैयारी का समय भी मिल जाता है, और बड़ी सफलतापूर्वक आप अपनी रबी भी कर सकते हैं 15 अगस्त को भी, अगर आप बाजरा की बुआई करते हैं तो।
1: तो डॉक्टर साहब, इसके लिए खेत का चुनाव और खेत की तैयारी में क्या करें?
2: इसमें जो ऊपरहार के खेत हैं, अपलैंड खेत जो हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे मेरी सलाह यह है कि आप धान की बजाय आप इसकी खेती करें। ये कम पानी में, सूखे की स्थिति में भी हो जाता है। अगर ऊपरहार खेत में हम धान का करेंगे तो हमें अधिक पानी देना पड़ेगा, सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बलुई भूमि हो, दोमट भूमि हो, दोनों में बड़ा सफलतापूर्वक हो सकता है। भारी मिट्टी में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि ऊपरहार के जो बलुई भूमि है या दोमट भूमि है, उसमें अगर आप करेंगे तो आप इसमें सफलतापूर्वक इसकी खेती कर पाएंगे।
1: और खेत की तैयारी में?
2: खेत की तैयारी सामान्य, जो एक मिट्टी पलटने वाले हल से कर दीजिए, 2-3 जुताई आप कल्टीवेटर से करके मिट्टी थोड़ी भुरभुरी हो जाए उतना पर्याप्त है। गोबर की खाद अगर है आपके पास तो उसको पहले उसमें मिला दें। और इसमें एक फायदा यह है कि 2-3 बारिश हो जाती है, तो जब आप खेत की जुताई करते हैं तो जो खरपतवार अधिकांश जो जमते हैं वो उसी जुताई के समय नष्ट हो जाते हैं, तो खरपतवार की समस्या भी कम आएगी। अगर आप जुलाई के अंत में या अगस्त के प्रथम पक्ष में अगर आप बुआई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो।
1: प्रजातियां कौन कौन सी हैं जिनकी अच्छी पैदावार मिल सकती है?
2: इसमें जो संकुल प्रजातियां हैं, जो धन शक्ति है, इसमें जिंक की मात्रा ज्यादा है, और ये करीब करीब 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ इसमें उत्पादन आपको मिल सकता है, 75 से 80 दिन की है। एक
1: यानी
2: दूसरे
1: 45 वैरायटी है।
2: हाँ, जिंक 45 है, और एक राज 171 है, जो राजस्थान की वैरायटी है, अपने यहाँ भी बहुत अच्छा हो जाती है, तो इसकी भी उत्पादकता करीब 10 क्विंटल के आसपास है, और 80 दिन के अंदर ही ये भी तैयार हो जाती है। जो प्रजातियां प्रचलित हैं किसान भाइयों जो जानते हैं, आजकल बहुत मांग है, उसमें संकर प्रजातियों में 86M90 है, 9001 है, बलवान है, सुपर 27 है, सुपर बॉस है, ये सब प्रजातियां 80 से 85 दिन में तैयार हो जाती है। इनकी उत्पादकता बहुत अच्छी है, 18 से 20 क्विंटल हमें मिल जाता है प्रति एकड़।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे बाजरा उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
2: 9450-334-772

0: 9453334778।
1: डॉक्टर बीपी सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और बाजरा उत्पादन की उन्नत तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बाजरा की उन्नत खेती, इस विषय पर अभी हमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विष्णु प्रताप सिंह और इनसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ खेती किसानी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और अब प्रस्तुत है आज का सुविचार जिज्ञासा।
1: स्वयं अपनी एक ज्ञान शक्ति होती है। जिज्ञासा के जागते ही किसी बात को जान सकने का सहायक ज्ञान स्वयं ही विकसित होने लगता है। जो जो जिज्ञासा गहरी होती जाती है, ज्ञान भी बढ़ता जाता है। मनुष्य की जिज्ञासु वृत्ति ने ही उसे दार्शनिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक एवं अन्वेषक बनाया है। यदि जिज्ञासा न होती तो मनुष्य में इस प्रकार के प्रश्न ही क्यों जागते कि वह क्या है, ये विराट विश्व क्या है, इसका रचयिता कौन है और इस संपूर्ण प्रपंच का प्रयोजन क्या है, इन सब का आदि कहाँ से होता है, अंत कहाँ होगा और भला क्यों इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में वह परिश्रम करता। जिज्ञासा के अभाव में मनुष्य आज जिस ज्ञानपूर्ण स्थिति में आया हुआ है कभी ना पाता। आज मनुष्य के ज्ञान भंडार में जो कुछ संचय है वह आगे भी जो वृद्धि होगी उसका भी मुख्य हेतु उसकी जिज्ञासा ही होगी। आज यदि मनुष्य की जिज्ञासु वृत्ति कुंठित अथवा तिरोहित हो जाए तो उसका ज्ञान अभिमान जहाँ का तहाँ ठप हो जाए और तब आगे भी ये जान सकने की संभावना सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए कि आखिर इन मंगल, चंद्र अथवा बुध ग्रहों पर क्या है, इनका वास्तविक अस्तित्व क्या है, क्या इन पर भी उसी प्रकार जीवन का अस्तित्व हो सकता है जिस प्रकार की हमारी पृथ्वी पर। यदि इनमें जीवन है तो वहाँ के जीव किस प्रकार के हैं, मनुष्य की भांति उनके परम लक्ष्य मोक्ष की क्या परिभाषा होगी, और न जाने उनका साहित्य, सभ्यता, संस्कृति, कला कौशल, शिल्प व रहन सहन किस प्रकार का होगा। जिज्ञासा के आधार पर ही तो मनुष्य एक दूसरे से ज्ञान ग्रहण कर आगे बढ़ता है। जब किसी में कुछ जानने अथवा सीखने की उत्सुकता ही न रहेगी तब वे क्यों व्यर्थ में किसी विषय पर ज्ञानोपार्जन करेगा। जो जिज्ञासु है वही गहरे बैठता है। जिज्ञासु की दृष्टि सामान्य लोगों से कुछ अधिक पैनी और खोजक होती है। किसी एक दृश्य या घटना को कोई सामान्य व्यक्ति देखता है तो वे उसके लिए एक साधारण बात होती है, किंतु जब उसी विषय पर किसी जिज्ञासु व्यक्ति की दृष्टि पड़ती है तो वही साधारण बात कोई दार्शनिक अथवा कवित्व पूर्ण अभिव्यक्ति पाकर असाधारण बन जाती है। जिज्ञासु के लिए संसार की हर घटना एक रहस्य एवं एक महत्व लिए रहती है। एक रसोई के लिए भाप से बटलोई का ढक्कन उछलना सामान्य बात होती है, किंतु स्टीवेंसन के लिए भाप से ढक्कन का उठना गिरना एक असाधारण रहस्य की बात बनकर इंजन के आविष्कार का कारण बनी। एक माली के लिए पेड़ से फल गिरना एक सामान्यतम घटना है, किंतु उसके आधार पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सिद्धांत के ज्ञाता न्यूटन के लिए वह असाधारण महत्व की बात थी। इतनी असाधारण कि आगे चलकर उसी आधार सूत्र के बल पर अधर में लटके इस ब्रह्मांड के हर ग्रह नक्षत्र की चाल तथा अवस्था का रहस्य मालूम कर लिया गया। जिज्ञासा ज्ञान की महान जननी है। मनुष्य की जिज्ञासु बुद्धि उस चींटी की तरह सतत प्रयत्नरत रहती है जो 7 पर्दों में छिपी हुई शक्कर को भी खोज कर दम लेती है। जिज्ञासु बुद्धि का सहज गुण होता है कि जब तक वह अज्ञात रहस्य को खोज नहीं लेती संतुष्ट नहीं होती, दिन रात उसी के पीछे लगी रहती है। जिज्ञासु की बुद्धि बड़ी ग्रहणीय होती है। वे एक बार में ही कोई बातें देख सुनकर ग्रहण कर लेती है और फिर कभी नहीं उसे भूलती। अजिज्ञासु बुद्धि कुंद एवं कुंठित होती है। 1000 बार देखने, सुनने और पढ़ने पर भी वे ना तो किसी बात को ठीक से समझ पाती है ना ही याद रख पाती है। जिज्ञासा का अभाव मनुष्य को मंदबुद्धि बना देता है। जिज्ञासु व्यक्ति किसी भी बात की तह तक बैठकर उसमें से किसी न किसी प्रकार की

0: उपयोगिता खोज लाता है। जिज्ञासा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक चारों उन्नतियों की हेतु होती है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी जिज्ञासा को प्रमाद पूर्वक नष्ट न करे, उसे विकसित एवं प्रयुक्त करे। और यदि जिज्ञासा नहीं है तो उसे चाहिए कि वह तन्मयता एवं गहरे पैठने के अभ्यास से उसे पैदा करे, क्योंकि जिज्ञासा ही भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों महान क्षेत्रों में प्रगति का आधार बनती है।
1: जिज्ञासा, डॉक्टर शीबा राकेश के स्वरों में अभी आप सुन रही थी आज का सुविचार। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का। जी हाँ, भक्ति और प्रेम भाव से परिपूर्ण आराधना

प्रभु श्री कृष्ण जिनको मीरा मन ही मन अपना पति मान चुकी हैं, उनके जीवन में प्रभु के सिवा और कोई भी नहीं है। हर समय उन्हीं की पूजा और आस्था में अपना समय व्यतीत करती मीरा प्रभु के मनमोहक रूप का गुणगान करते हुए कुछ यूं अपनी बात कहती हैं, हे प्रभु, यदि सारा संसार मेरा साथ छोड़ दे, परंतु आप मेरा साथ मत छोड़ना।

माता रानी के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता है, माता रानी उसे कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटा देंगी। किस्मत के मारों का माता रानी ही बेड़ा पार लगाती हैं। हे माता, आप तो संपूर्ण जगत की जननी हैं, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन।

सही अर्थों में वास्तविक धर्म है मानव धर्म। हे मानव, यदि तू अपने हृदय में सत्य, शांति, दया व अहिंसा की भावना रखेगा तो तेरा गुरु तुझे अपने हृदय में ही मिल जाएगा। सच्चे मन से तू जो भी मांगेगा तुझे वही मिलेगा। गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर तेरी हर समस्या दूर होगी।

माता रानी की ममता की कोई सीमा ही नहीं है। माता के चरणों में ही हम सभी भक्तों को सुख मिलता है, तभी तो हम इन पर्वतों की ऊंचाइयों को चीरते हुए पहुंच जाते हैं माता के दरबार। माता की इसी ममतामयी छाया में आकर हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।

हम सभी पर ईश्वर की कृपा यूं ही बनी रहे और हम सभी का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो, इसी शुभेच्छा के साथ आज का भक्तिमय कार्यक्रम आराधना यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। और अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से आज का संगीतमय प्रसंग। आज आप सुनेंगे भाग 212।

चित्रकूट पहुंचकर श्री राम को देखते ही भरत हे नाथ रक्षा कीजिए कहकर रूखे सूखे बांस की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत और राम का इस प्रकार का हृदय स्पर्शी मिलन देखकर उपस्थित लोगों को अपनी सुधि न रही। कैसे वर्णन किया जाए इस प्रेम मिलन का, जो कवि के कर्म मन और वाणी तीनों की पहुंच से परे है। भरत श्री राम का प्रेम ऐसा अगम्य है जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का मन भी नहीं पहुंच सकता। संभवतः इसी कारण दोनों भाइयों का मिलन देख देवता इस आशंका से भयभीत हो गए कि श्री राम को अयोध्या लिवा ले जाने में भरत सफल न हो जाएं। किंतु देवगुरु बृहस्पति के समझाने पर उनका भय जाता रहा और उन्होंने भ्रातृप्रेम के इस अभूतपूर्व दृश्य पर पुष्प वर्षा की। श्री राम सहज प्रेम से शत्रुघ्न से मिले और फिर केवट निषाद राज से भरत और लक्ष्मण और फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का मिलन हुआ। भरत और लक्ष्मण ने सीता के चरणों की रज अपने माथे पर धारण की। स्नेह और शील का ये अद्भुत दृश्य है जहां उपस्थित सभी लोग प्रेम और आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। कोई न कुछ कहता है न ही कुछ पूछता है। तब निषादराज बोले, हे नाथ, कुलगुरु वशिष्ठ जी के साथ सभी माताएं, नगर निवासी, सेवकगण, सेनापति, मंत्री सभी आपके वियोग में व्याकुल

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज का संगीतमय प्रसंग। स्वर श्रीकांत परगांवकर के थे और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। सुबह की 6:55 होने को है। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत समाचार। आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम, प्रवाचिका निधि ही झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः नवदेहल्याः सेवातीर्थस्थले प्रगति इति सूचना संचार प्रौद्योगिकी आधारित मंचस्य 250वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां विहितवान्। अस्यां गोष्ठ्यां श्रीमोदी चतुर्षु राज्येषु विस्तृतान् मार्ग विद्युत औद्योगिकी वीथि तथा मेट्रो रेलवे क्षेत्राणां चतुर्प्रमुखान् आधारभूत संरचना प्रकल्पान् समीक्षितवान्। एतेषां प्रकल्पानाम् आहत्य व्ययः प्रायः 30,000 कोटि रूप्यकाणि अस्ति। आर्थिक विकासं, क्षेत्रीय सम्पर्कम्, औद्योगिक विकास

0: तथा जनकल्याणं वर्धयितुं सन्धारिताः एते प्रकल्पाः समयसीमा विभिन्न संस्थानां समन्वयः तथा प्रलम्बित विषयानां शीघ्रनिवारणाय विशेष ध्यानेन सह सन्ति समीक्षिताः। अद्यतावत् संविधान हत्या दिवसो वर्तते। दिवसोयं तस्याः घटनायाः स्मरणं कारयति यदा पञ्चसप्तत्युत्तर ऊनविंशतितम वर्षस्य जून मासस्य पञ्चविंशतिः दिनांके भारतीय संविधानस्य अवमानना कृता। अनेन सहैव अयं दिवसः आपत्काले अत्याचारैः प्रताडितेभ्यः प्रत्येकं जनेभ्यः श्रद्धांजलिम् अर्पयितुं दिवसो वर्तते। अस्मिन्नेव दिने तत्कालीनः राष्ट्रपतिः फखरुद्दीन अली अहमदः आन्तरिक अशान्तेः कारणं प्रदर्श्य देशे राष्ट्रीय आपत्कालस्य घोषणाम् अकरोत्। देहल्याम् अस्य मासस्य त्रिंशत् दिनांकात् आरभ्यमाणस्य मतदात्री सूचीनां विशेष गहन पुनरीक्षणस्य अन्तर्गतम् गृहं गृहं गत्वा गणना कार्यक्रमम् अभिलक्ष्य देहल्याः मुख्य निर्वाचन अधिकारिण ह्यः नवदिल्ल्यां विभिन्न राजनैतिक दलानां प्रतिनिधिभिः सह एका सभा आहूता। मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः एकेन विवरणेन स्पष्टीकृतं यत् अस्यां गोष्ठ्यां भारतीय जनता पार्टी इति दलम्, आम आदमी पार्टी इति दलम् तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इत्यादि प्रमुखाणां राजनैतिक दलानां प्रतिनिधयः समुपस्थिताः आसन्। कार्यालयानुसारं मुख्य निर्वाचनाधिकारी प्रत्यपादयत् यत् कोऽपि योग्यः नागरिकः न वञ्चितः स्यात्, सहैव कोऽपि अयोग्यः जनः मतदात्री सूच्यां न सम्मिलितो भवेत्। अनेन सहैव गणनाचरणे अनुपालनीयानां प्रमुखाणां गतिविधीनां विषयेऽपि राजनैतिकदलानि विस्तरेण सूचितानि। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य देशस्य उत्तरपूर्वीयक्षेत्रेषु झारखण्ड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उपहिमालय, पश्चिमबंग, तेलंगाना, तटीय कर्णाटक, कोंकणं समेत्य गोवा क्षेत्रस्य कतिपयेषु भागेषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रख्यापितम्। विभागानुसारम् अद्य पश्चिम राजस्थान क्षेत्रे झंझावातस्य संभावना अपि वर्तते। अत्रावधेयं यत् अद्य बिहार, पूर्व मध्यप्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेशस्य च नाना स्थानेषु उष्णतरंगस्य अनुमानमपि विभागेनानेन प्रकटीकृतम्। अपरत्र अद्य देहल्याम् आंशिकरूपेण मेघाच्छादनं नभः भविष्यति। सहैव अपराह्णे सायंकाले वा विद्युद्गर्जनेन वृष्टेः सम्भावनापि वर्तते। सम्प्रति क्रीडा वार्तासु आईसीसी महिला टी20 विश्वकप स्पर्धायाम् अद्य भारतस्य सम्मुखीकरणं बांग्लादेशेन सह भविष्यति। स्पर्धेयं मैंचेस्टर नगरस्य एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफोर्ड क्रीडांगणे आयोज्यते। या भारतीय समयानुसारं सायंकाले सप्तवादने समारप्स्यते। हरमनप्रीत कौरस्य नेतृत्वे भारतीय महिला दलं विमेन इन ब्लू सम्प्रति स्वसमूहे द्वितीयं स्थानं भजते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, सुबह के 7 बज चुके हैं और चलिए आपको लिए चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखना हमें कितना जरूरी होता है, ये रोज हम आपको बताते हैं हमारे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत। और आज के इस कार्यक्रम में नीना सोनकर हमें बताने जा रही हैं कुल्थी दाल के बारे में। जी हाँ, परंपरा से पोषण तक का सफर, तो आइए सुनते हैं।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनाज की जो हमारी पारंपरिक थाली का हिस्सा तो था लेकिन धीरे धीरे आधुनिक भोजन शैली में कहीं खो गया है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम फिर से उसकी ओर लौटें। आज का विषय है कुमठ, जिसे कुछ जगहों पर कुल्थी दाल, हुलगा या होरिया भी कहा जाता है। ये एक देसी दाल है जो

0: हमारी मिट्टी से जुड़ी है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी मानी जाती है। कुमट एक प्रकार की मोटी दाल है जिसका स्वाद अलग होता है, हल्का तीखा मिट्टी जैसा, लेकिन जितना जमीन से जुड़ा इसका स्वाद है उतना ही इसकी ताकत भी गहराई से हमारे शरीर को लाभ देती है। ये खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में सर्दियों के दिनों में अधिक खाई जाती है, लेकिन इसके फायदे ऐसे हैं कि हर मौसम में इसका उपयोग किया जा सकता है। ये दाल भारत के कई हिस्सों में सदियों से खाई जाती रही है। उत्तर भारत में ये ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए दी जाती है, तो दक्षिण भारत में इसे पथरी और किडनी की समस्याओं में उपयोगी माना जाता है। कुमट में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है और खास बात ये है कि इसमें ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। ये एक लो फैट हाई फाइबर दाल है जो पाचन को सुधारती है, कब्ज से राहत देती है और आंतों की सेहत के लिए अत्यंत उपयोगी है। जो लोग वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए कुमट एक उत्तम भोजन है, क्योंकि ये पेट को देर तक भरा रखती है और बार बार खाने की आदत को रोकती है। इसमें आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज तत्व भरपूर पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत करने और शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये दाल किडनी की सफाई में भी बेहद उपयोगी मानी जाती है। बहुत से आयुर्वेदिक नुस्खों में कुमट का पानी पेशाब से जुड़ी समस्याओं और पथरी के उपचार में दिया जाता है। कुमट का सूप भी बनाया जाता है जिसे छानकर दिया जाए तो शरीर को नमी मिलती है और आंतरिक सूजन कम होती है। खास बात श्रोताओं ये है कि कुमट को पकाने का तरीका भी बेहद आसान है। इसे भिगोकर दाल की तरह उबालें या फिर इसकी रोटी बनाकर खाएं। स्वाद और सेहत दोनों में इसका कोई जवाब नहीं। कई इलाकों में इसे लहसुन और हींग के तड़के के साथ पकाया जाता है। इससे न सिर्फ इसका स्वाद बढ़ता है बल्कि ये पाचन में भी मदद करती है। आज के समय में जब हम प्रोटीन शेक्स, पिल्स और विदेशी सुपरफूड्स की ओर दौड़ रहे हैं, तब हमारी अपनी जमीन का ये अनाज चुपचाप एक कोने में पड़ा है, जबकि इसके गुण किसी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सप्लीमेंट से कम नहीं हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सस्ता है, देसी है और हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और शायद यही कारण है कि अब धीरे धीरे लोग फिर से कुमट को अपने भोजन में शामिल करने लगे हैं। श्रोताओं, जब हम देसी भोजन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ स्वाद या पोषण ही नहीं, एक जीवन शैली छिपी होती है जो ऋतुओं के अनुसार चलती है, जो शरीर की प्रकृति को समझती है और जो प्रकृति से सीधा संवाद करती है। कुमट भी ऐसा ही एक संवाद है, मिट्टी से, स्वास्थ्य से और हमारी परंपरा से। तो इस बार जब आप बाजार जाएं, तो दालों की अलमारी में कुमट को भी एक स्थान दीजिए। इसे अपने घर के बच्चों को भी दीजिए जो शायद इसके नाम से भी परिचित ना हो। उन्हें बताइए कि ये वही दाल है जो हमारी दादी नानी हमें सर्दियों में बड़े प्यार से देती थीं और जो शरीर को भीतर से मजबूती देती है। आज की स्वास्थ्य चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसे विषय के साथ जो हमारी रसोई और हमारी सेहत दोनों से जुड़ा हो। तब तक स्वस्थ रहिए, परंपरा से जुड़िए और देसी दालों को अपनाइए। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: कुलथी दाल, परंपरा से पोषण तक का सफर। इसके बारे में अभी स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत हमें जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और अब आइए डालते हैं एक नजर आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, शाम 6:30 से हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा आईसीसी वर्ल्ड वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत और बांग्लादेश के मध्य खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल।

न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का अनुप्रसारण समय रहेगा सुबह 10:10 का। जिले की हलचल आप सुन सकते हैं सुबह 9:15 से, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे बस्ती और बदायूं जिलों की हलचल। सुबह 9:30 का वक्त होगा उर्दू कार्यक्रम का। आज की पेशकश होगी आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से, जिसमें आज पेश किया जाएगा जायका शेफ भीमक प्रसाद के साथ। प्रेजेंटर होंगे सईद अख्तर और साथ ही साथ आज के कलाम शायर होंगे रफी सीतापुरी। शांति के लिए युद्ध है जरूरी, इस विषय पर विविधा प्रोग्राम में सुबह 7:10 से आपके साथ होंगी सीमा शाही। विज्ञान और किसान, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 से, जिसमें आज आप सुनेंगे पशुओं में चारा विषाक्तता कारण और निवारण। इस विषय पर डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिपाठी की भेंट वार्ता, भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। लोकगीतों के लोक माधुरी कार्यक्रम में आज दोपहर 2:40 पर आप आनंद लेंगे अवधि लोक गायिका डॉक्टर शिखा भदौरिया के गाय लोकगीतों का। साथ ही साथ इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं लोकरंग कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 9:50 पर।

कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित ये फोन इन प्रोग्राम आप सुनेंगे दिन में 11 बजे से। एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा दिन में 12 बजे का। युवा तरंग, युवा साथियों का ये दैनिक कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:10 से, जिसमें आज की बात क्रम के अंतर्गत आज चर्चा होगी उज्ज्वला योजना पर, साथ ही ग्राम्य आधारित अर्थव्यवस्था और गांधी दर्शन विषय पर युवा साथी सुनेंगे डॉक्टर विशाकांत श्रीवास्तव की वार्ता। नई उड़ान कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:45 का, जिसमें आज आप सुनेंगे डिजिटल लेन देन कितनी बचत कितनी आसानी, इस विषय पर अर्पित की ओबी प्रस्तुति। घर आंगन, महिलाएं अपना ये कार्यक्रम सुन सकती हैं दिन में 1:15 से। तो श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र।

नमस्कार। लखनऊ के इस खास सेगमेंट में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, आभार। विविधा, ये खास प्रोग्राम लेकर आज हाजिर हूँ मैं सीमा शाही। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो पहली दृष्टि में विरोधाभासी प्रतीत होता है, लेकिन इतिहास समाज और मानव जीवन के अनेक पहलुओं को समझने का अवसर प्रदान करता है। आज का विषय है शांति के लिए युद्ध है जरूरी।

जी हाँ, सामान्य रूप से शांति और युद्ध को एक दूसरे का विरोधी माना जाता है। शांति का अर्थ है सौहार्द, स्थिरता और सुखद सह अस्तित्व, जबकि युद्ध संघर्ष, टकराव और विनाश का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इतिहास के अनेक उदाहरण हमें ये बताते हैं कि कुछ परिस्थितियों में शांति की रक्षा के लिए संघर्ष करना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। जब अन्याय बढ़ता है, जब किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता पर खतरा मंडराने लगता है, जब मानवाधिकारों का हनन होने लगता है, या फिर जब समाज के अत्याचार अपनी सीमा पार कर जाते हैं, तब सिर्फ मौन रहना समाधान नहीं होता। ऐसे समय में अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही और सत्य की रक्षा करना आवश्यक हो जाता है। यही संघर्ष आगे चलकर शांति की स्थापना का मार्ग बनता है।

0: श्रोताओं, भारतीय संस्कृति और दर्शन में भी धर्म और न्याय की रक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है। महाभारत की घटना की बात कहें तो इसका एक प्रमुख उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध को कभी प्राथमिकता नहीं दी, लेकिन जब उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास किए और फिर वो सारे प्रयास विफल हो गए और अन्याय का अंत असंभव दिखाई देने लगा, तब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक हो गया था। ये युद्ध सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं था, बल्कि न्याय और सत्य की स्थापना का माध्यम बन गया था। यही कारण था कि महाभारत का संदेश आज भी हमें यही सिखाता है कि शांति का मूल्य तभी है जब वो न्याय पर आधारित
1: हो। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
0: दोस्तों, विश्व के इतिहास में भी अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि एक शांति पाने के लिए युद्ध कितना जरूरी हो गया था। जी हाँ, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासी हजरत इमाम हुसैन ने 680 ईस्वी में जब कर्बला के मैदान में यजीद की अन्यायपूर्ण सत्ता और अत्याचार के सामने जब झुकने से इनकार कर दिया था, तब मुहर्रम की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया था।
2: यादगारे कर्बला है ये अलम अब्बास का, आज भी लहरा रहा है ये अलम अब्बास का।
0: अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए कर्बला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के परिवार के अनेक सदस्यों को भी शहीद कर दिया गया था। उन्होंने अपने बलिदान से सत्य और धर्म की रक्षा का अमर संदेश दिया। कर्बला के मैदान का संदेश हमें हर हाल में सत्य का साथ देने और अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा देता है।

तो किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी सुरक्षा और संप्रभुता सर्वोपरि होती है। यदि कोई बाहरी शक्ति उसके अस्तित्व को चुनौती देती है तो उसकी रक्षा के लिए संघर्ष करना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। हमारे देश के वीर सैनिक भी सीमाओं पर इसी उद्देश्य से तैनात रहते हैं, ताकि देश के भीतर शांति, सुरक्षा और विकास का वातावरण बना रहे। हालांकि ये भी उतना ही सत्य है कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का पहला समाधान नहीं होना चाहिए। संवाद, समझ, कूटनीति और सहयोग हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। वास्तव में इस विषय का गहरा अर्थ केवल राष्ट्रों के बीच होने वाले युद्ध तक सीमित नहीं है। हमारे जीवन में भी कई प्रकार के संघर्ष होते हैं। अज्ञानता के विरुद्ध ज्ञान का संघर्ष, बुराइयों के विरुद्ध अच्छाई का संघर्ष, भय के विरुद्ध आत्मविश्वास का संघर्ष और अन्याय के विरुद्ध सत्य का संघर्ष। इन संघर्षों को स्वीकार किए बिना हम जीवन में वास्तविक शांति प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, शांति कोई कमजोर अवस्था नहीं है। शांति के पीछे साहस, धैर्य

शासन और न्याय की शक्ति होती है। जिस समाज में न्याय नहीं होता, वहां शांति भी अधिक समय तक टिक नहीं पाती। इसलिए हमें ये समझना होगा कि शांति और संघर्ष दोनों का उद्देश्य मानवता की रक्षा और समाज के कल्याण से जुड़ा होना चाहिए। जी हाँ, अंत में चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि शांति की रक्षा के लिए शक्ति आवश्यक है और शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग शांति की स्थापना में ही है। आइए हम सभी ये संकल्प लें कि अपने जीवन में संवाद, सहिष्णुता और सद्भाव को बढ़ावा देंगे, लेकिन अन्याय और असत्य के सामने कभी नहीं झुकेंगे। तो इसी प्रेरणादायक विचार के साथ आज के विविधा कार्यक्रम से सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नमस्कार लखनऊ का ये खास प्रोग्राम विविधा। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। अब से बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे गोरखपुर केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम।

नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। कहा, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में राज्यों को करना चाहिए काम। लखनऊ अग्निकांड में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल।

0: और प्रदेश भर में कल से मौसम के शुष्क रहने की संभावना। पूर्वी जिलों में 28 जून तक कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा तीर्थ में आयोजित प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित यह बहुमाध्यम मंच केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को निर्बाध रूप से एकीकृत कर सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रभावी योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने नागरिकों को ठगने के लिए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसे मामलों का सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा समन्वित, संवेदनशील और समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को साइबर धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित पंजीकरण और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में LDA ने विभागीय जांच कर दोषियों को चिन्हित कर लिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आग की चपेट में आई इमारत का नक्शा वर्ष 2014 में पास किया गया था। इसके बाद वर्ष 2016 में LDA ने मानकों का पालन न करने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। विभागीय जांच में तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS स्तर के अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की संसुष्टि की गई है।
2: तो इसमें जो दोषी लोग हैं, हम लोगों ने अपनी आंतरिक जांच कर ली है। जो दोषी लोग हैं उस समय जो तैनात प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रहे हैं उनके विरुद्ध, और साथ ही साथ निर्माण करने में जिन लोग का निश्चित रूप से सहयोग रहा होगा 16-17 में तैनात जो अधिकारीगण थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई के लिए शासन भेज दिया है। और हम लोग शासन से अनुरोध भी कर रहे हैं कि सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई की जाए।
0: अग्निकांड में घायल हुए 7 लोगों को इलाज के बाद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU से डिस्चार्ज कर दिया गया है। KGMU के प्रवक्ता KK सिंह ने बताया कि एक गंभीर रूप से घायल युवक की हालत भी अब स्थिर है। इस बीच प्रदेश भर में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम द्वारा कोचिंग संस्थानों में चेकिंग अभियान लगातार जारी है। गौतमबुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि वहां जांच के दौरान 2 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया। अयोध्या में CFO महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए 2 टीमें बनाई हैं जो फायर सेफ्टी की जांच के साथ लोगों को जागरूक भी कर रही हैं।
3: जो दुखद घटना हुई है लखनऊ में, इसके क्रम में हमारे जिले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ फायर सर्विस में। उन सभी को हम एक अभियान के तहत 2 टीमें हम लोगों ने बनाई हुई है, एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है। छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं। अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाए।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के माध्यम से प्रदेश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सेक्टोरल पॉलिसीज, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी आदि की प्रगति से अवगत कराते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश की जानी मानी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की और कई निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को लेकर बेहद सकारात्मक माहौल बना है।
4: भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है और स्पीड है। एक मजबूत रूल ऑफ लॉ के स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी।
0: भारत में ताजिकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज्यादा ने कल रामपुर स्थित रजा लाइब्रेरी और संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा

0: की यहाँ संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियाँ भारत और ताजिकिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। रजा लाइब्रेरी के निदेशक पुष्कर ने बताया कि ताजिकिस्तान और भारत के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्दी ही एक समझौता ज्ञापन MOU भी किया जाएगा।
1: तो भारत के बीच में सांस्कृतिक और अकादमिक सहयोग किस प्रकार का हो सकता है, उस दिशा में हमने बातचीत भी की और आने वाले समय में हम वहां के संस्थानों और रामपुर हजार पुस्तकालय के बीच में समझौता ज्ञापन करेंगे। एक विशेष बात ये आई कि कुछ ग्रंथ यहाँ पर कजाकिस्तान से सीधा संबंध रहा और वो उस स्क्रिप्ट को और उस भाषा के अध्ययन के लिए मुझे हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर साहब ने कहा है कि वो वहां से स्कॉलर्स हमारे यहाँ भेजेंगे जो उसका अध्ययन कर सकें। और
0: राज्य सरकार ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को सहमति प्रदान कर दी है। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया, मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति देने वाला दूरगामी कदम सिद्ध होगा
2: और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि RRTS को मुजफ्फर होते हुए हरिद्वार तक ले जाने के लिए DPR तैयार करने का निर्देश दिया है। उस DPR के लिए 6.43 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान की होती है। शासन से इसके लिए पत्र जारी हो गया है। मंडलायुक्त मेयर को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और जो DPR इसकी तैयार होनी है, जितना हिस्सा मेयर के अंदर आएगा उसका पैसा मेयर का प्राधिकरण और जितना हिस्सा मुजफ्फरनगर जनपद में आएगा उसका पैसा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण खर्च करेगा।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मौसम विभाग ने कल से प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 जून तक कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश भर में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। कहा, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में राज्यों को करना चाहिए काम। लखनऊ अग्निकांड में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और प्रदेश भर में कल से मौसम के शुष्क रहने की संभावना, पूर्वी जिलों में 28 जून तक कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
5: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
4: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।

मीडियम वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, सुबह के 7:31 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। तो इसमें आज सुनिए पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का ख्याल गायन, राग है शुक्ला बिलावल।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित मल्लिकार्जुन का ख्याल गायन, राग था शुक्ला बिलावल। इसी कार्यक्रम के साथ नमस्कार लखनऊ का यह खास सेगमेंट अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। सुबह के 8 बजने को है, अब से बस थोड़ी देर में रिले किया जाएगा समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा, 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज शाम मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल

0: दल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
3: राजूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम

0: तक पहुंचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान कुलीपुलुई दर्जे तक पहुंचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी की गई है।
1: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू है। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेकर पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP आर्मी व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभी डांग के समीप ही एक पड़ाव चयनित किया गया है।
0: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
4: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
5: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों चार दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में

0: प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को एक गोल और एक असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के दो गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग। शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: .4 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और अब समय है कार्यक्रम नमस्ते बरेली का। तो चलिए सुनते हैं नमस्ते बरेली।

सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और नमस्कार। इस समय आप सुन रहे हैं नमस्ते बरेली 100.4 एफएम पर और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त नीतू। आज तारीख है 25 जून 2026 और हमारे बेहद खास सुबह के शो नमस्ते बरेली में आप सभी का स्वागत है।

वैसे बरेली की सुबह की बात ही क्या है, हवाओं में थोड़ी सी तपिश जरूर है, लेकिन बरेली वासियों के जोश में कोई कमी नहीं। आज इसके इस 30 मिनट के सफर में हम बात करेंगे अपने शहर के तरक्की की, मौसम के हाल की, और याद करेंगे इतिहास के उन पन्नों की जिसने हमारे देश के लोकतंत्र की दिशा को बदल दिया था। लेकिन दिन की शुरुआत एक नई ताजगी और सुरेली

और सुबह की शुरुआत तो हो चुकी है और बात करेंगे इतिहास की, इतिहास के उन पन्नों की, तो उसमें आज का जो दिन है वो बेहद खास है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील तारीख के तौर पर दर्ज है, क्योंकि 1975 में इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था और भारत सरकार ने इस तारीख को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया। वहीं 25 जून 1932 को भारत ने इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला आधिकारिक टेस्ट मैच खेलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था।

की जानकारी के लिए बता दें कि 25 जून का दिन हमें एक बहुत बड़ी खुशी भी देता है। आज ही के दिन 25 जून 1983 को कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप जीता था और लॉर्ड्स के मैदान पर तिरंगा फहराया था। तो इतिहास के ये जो पहलू हैं वो अपने आप में इन्हें समेटे हुए हैं।

एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नमस्ते बरेली में। इस समय आपने ट्यून इन किया है AIR बरेली 100.4 FM पर। और जब भी आपने सुबह सुबह अपनी आंखें खोली हैं तो यही खबर पाई है कि बरेली हर दिन तरक्की के रूप में सामने आ रहा है और तरक्की की राह पर हमारे शहर ने एक बहुत बड़ी छलांग भी लगाई है। बरेली विकास प्राधिकरण यानी कि BDA की नई औद्योगिक टाउनशिप परियोजना अब तेजी से जमीन पर उतर रही है। दिल्ली हाईवे से सटी इस मेगा परियोजना के लिए करीब 126 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है और सबसे खुशी की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के पूरे होने से बरेली और आसपास के हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। साथ ही हुनरमंद युवाओं को नौकरी के लिए अब दूसरे शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा, तो है ना अच्छी खबर।

इसके अलावा अगर हम बात करें तो रामगंगानगर और ग्रेटर बरेली में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चौड़ी सड़कें, अंडरग्राउंड बिजली नेटवर्क और ग्रीन जोन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। सच कहें तो हमारा बरेली अब सिर्फ सुरमे और झुमकी का शहर नहीं बल्कि यूपी का एक नया स्मार्ट हब भी बनता जा रहा है। तो है ना ये खुशी की खबर।

0: की कोचो? कैसा बंगाली है तू, इतना फिश खाता है फिर भी अकुल नहीं है।
1: तो क्या करूँ?
0: जूता खोल के धक्का मारो, नहीं तो जीवन भर फिसलता ही रहेगा।

समय आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी बरेली प्रोग्राम नमस्ते बरेली। और जब बात तरक्की की हो रही है और हमारी लाइफलाइन यानी कि रेलवे कैसे पीछे रह सकती है, रेल यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा बरेली सिटी और इज्जत नगर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण यानी कि अब वो ज्यादातर आधुनिक हो जाएगा, कभी सारी चीजों से लैस होगा और अपने अंतिम चरण तक पहुंच चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशन पर यात्रियों के लिए कई सुविधाएं होंगी।

जैसे कि नए एस्केलेटर, हाईटेक वेटिंग लाउंज और पार्किंग की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही दिल्ली लखनऊ रूट पर यात्रियों को भारी जो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, ऐसे में बरेली जंक्शन से होकर जो गुजरने वाली कई ट्रेनें हैं, वो स्पेशल ट्रेनों के जो फेरे हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही गर्मी के मौसम में सफर करने वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना भी अब आसान हो जाएगा। तो है ना, हम सभी बरेली के लोगों के लिए एक बेहतरीन अचीवमेंट। तो चलिए इसी तरक्की के बीच सुनते हैं ये गाना।

इस समय आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी बरेली और बरेली की कुछ खास खबरों की ओर नजर डालते हैं।

गंगा दशहरा के मौके पर श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम बरेली में देखने को मिला। शहर के किनारे बहने वाले रामगंगा नदी के तटों पर श्रद्धालु का हुजूम दिखाई दिया और साथ ही इस विशेष अवसर पर भक्तों ने रामगंगा में आस्था की डुबकी लगाई और स्नान के बाद घाटों पर बैठे पुरोहितों को अन्य वस्त्र और धन का दान भी किया। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया आज से शुरू होगी। अभ्यर्थियों की हेल्प के लिए जिले में 3 हेल्प सेंटर यानी कि रिपोर्टिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर 1 जुलाई से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। पहला जो चरण है वो काउंसलिंग 25 से 30 जून तक चलेगा। जिले में राजकीय पॉलिटेक्निक सीबीगंज, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक सीबीगंज और राजकीय पॉलिटेक्निक बहेड़ी को हेल्प सेंटर बनाया गया है और इसमें काउंसलिंग में हिस्सा लेकर अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण फीस, अपनी जो चयन प्रक्रिया है सीट लॉक फीस कर सकेंगे। हेल्प सेंटर पर 1 जुलाई से डीवी होगी। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए अभ्यर्थी को सबसे पहले अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी डालना होगा, पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और चयनित संस्था पाठ्यक्रम के विकल्पों को आधिकारिक संख्या में पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रोहिलगंज विश्वविद्यालय ने द सस्टेनेबल टी इंपैक्ट रेटिंग्स 2026 में संयुक्त राष्ट्र के लिए सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों में सहभागिता दर्ज कर दी है। विश्व के 1603 उच्च शिक्षण संस्थानों में विश्वविद्यालय को 100 में से 54.9 अंक के साथ समग्र रूप से 801/1000 रैंक बैंड का स्थान मिला है। वहीं पिछले काफी दिनों से बरेली में भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में शहर का अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिन भर धूप और बादलों की आवाजाही के बीच उमस ने काफी भी परेशान लोगों किया। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लू का असर भी बना हुआ है। तो ये तो थी बरेली की कुछ खास खबरें।

सबसे जरूरी बात जो आज घर से बाहर निकलने से पहले हम सभी को जानना जरूरी है। मौसम विभाग के मुताबिक बरेली में झुलसा देने वाली गर्मी का असर देखने को आज मिलेगा। अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दोपहर के वक्त धूप काफी तेज होगी। यूवी इंडेक्स भी 9.3 के करीब रहेगा, जो काफी हाई है। लेकिन राहत की बात यह है कि जून के अंत तक मॉनसून की एंट्री की उम्मीद है, लेकिन आज बारिश की संभावना सिर्फ 1% है। इसलिए दोपहर के वक्त जरूरी काम पर ही घर से बाहर निकले। पानी की बॉटल, ग्लूकोज, अम्ब्रेला और सूती कपड़े जरूर पहने।

और अब चलने का समय हो गया है, लेकिन तरक्की करते रहिए और अपने शहर को साफ सुथरा रखिए। और हाँ, धूप से अपना बचाव भी करिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली 100.4 FM।

अभी आप सुन रहे थे नमस्ते बरेली 100.4 एफएम पर, और अब समय है लोकगीत का, तो चलिए सुनते हैं ये लोकगीत। इसमें आवाज है योगेश कुमारी की।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: कौसर मुनीर के बोल जीत गांगुली का संकेत। कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

0: शाहिद माल्या की आवाज में आप सुन रहे थे उड़ता पंजाब फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा शिव कुमार बटालवी ने, अमित त्रिवेदी का संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

प्रीतम के संगीत निर्देशन में ये गीत आपने सुना हॉलीडे फिल्म से, अरिजीत सिंह की आवाज, इरशाद कामिल के बोल। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का ये गीत, इरशाद कामिल के बोल, विशाल शेखर का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर सुन रहे हैं और कार्यक्रम में वक्त एक अंतराल का।

0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल हिमेश रेशमिया की तर्ज और आवाजें आमंत रेखा विनीत सिंह और साथियों की।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

विशाल शेखर के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे। बैंग बैंग फिल्म के इस गीत में हर्षदीप कौर और बेनी दयाल की आवाज है, अन्विता दत्त के बोल। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर सुन रहे और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। हृदय गट्टानी की आवाज में ये गीत, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत, फिल्म बैंजो से सुनिए ये गीत।

बैंजो फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हृदय गत्तानी की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और दिन भर जहां भी रहें, रहें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। आज के लिए अपने दोस्त नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: 104 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य।
1: लीजिए सुनिए एसआर एजुकेशनल ट्रस्ट भुता बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य।
2: एसआर हॉस्पिटल बीसलपुर रोड बरेली से करवाएं समस्त स्त्री रोगों का इलाज। प्रमुख स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संध्या गंगवार।
3: एसआर हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन के साथ बच्चेदानी और बांझपन के इलाज की पूरी व्यवस्था।
4: डॉक्टर रतन गंगवार से कराएं जहर खाए, दिमागी बुखार, एक्सीडेंटल, सांस रोग जैसे मरीज अपना सफल इलाज या ऑपरेशन।
3: ICU और वेंटिलेटर की सुविधा के साथ एसआर हॉस्पिटल बीसलपुर रोड बरेली।
1: एसआर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी मैकपुर भुता फरीदपुर रोड भुता बरेली में बी फार्मा करें गवर्नमेंट की फीस पर। स्कूल खत्म होने के दिन सब ने मिलकर एक आखिरी फोटो खिंचवाई थी। सब हंस रहे थे क्योंकि किसी को नहीं पता था कि यही तस्वीर एक दिन सबसे कीमती याद बन जाएगी। आज सालों बाद जब वो उस फोटो को देखता है तो कुछ चेहरे याद आते हैं, कुछ आवाजें याद आती हैं और आंखें अपने आप नम हो जाती हैं, क्योंकि स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं था, वो जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था।

0: उपस्थित है आपका प्यारा प्यारा दोस्त रविंद्र मिश्रा। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रतन गंगवार। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार रविंद्र जी।
0: नमस्कार डॉक्टर साहब, और हम अपने श्रोताओं की तरफ से भी आपको नमस्कार करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर साहब, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे गर्मियों में खानपान के बारे में। जी डॉक्टर साहब, गर्मियों में खानपान कैसा हो जिससे हम और हमारे भाई बहन स्वस्थ रहें।
1: जैसा कि आपका प्रश्न है कि गर्मियों में क्या खाएं पिएं, इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि गर्मी में समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। आप सभी जानते हैं अभी भीषण गर्मी पड़ रही है, हमारे जो क्षेत्र जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं ऐसी गर्म हवाएं चल रही जो कि मनुष्य के शरीर का पूरा पानी निकाल दे रही, जिसमें मनुष्य के शरीर में पानी की कमी हो जा रही, और हीट स्ट्रोक जो बेब ऐसी होती है जो हीट स्ट्रोक कर देती है
0: जी,
1: उसके अपने लक्षण होते हैं। एक बीमारी होती है ये जो कि अत्यधिक गर्मी के कारण होती है, अत्यधिक गर्मी हो और पानी की शरीर में कमी हो जाए, तो जो कि इस दौरान चल ही रही है, इससे पहले बहुत तेज गर्म हवाएं चल रही थी, हीट वेव चल रही थी
0: जी।
1: तो ऐसे में हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि गर्मियों में प्रॉब्लम्स क्या क्या हो जाती हैं, तो गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या एक तो शरीर में पानी की कमी होती है, दूसरी समस्या गर्मियों में बैक्टीरिया के लिए जो जीवाणु होते हैं उनके लिए उक्त वातावरण होता है, बढ़ावा मिलता है, बैक्टीरिया बहुत जल्दी हमारी खाने पीने की चीजें सड़ जाती हैं, जिनमें कि बैक्टीरिया फंगस ये सब लग जाते हैं, तो थोड़ी देर भी रखा हुआ खाना हम नहीं खा सकते हैं, इन्फेक्टेड खाना होगा तो फूड पॉइजनिंग की समस्या हो जाती है। ऐसे में जो टाइफाइड फीवर होता है या विषाणु जनित जैसे हेपेटाइटिस ए की बीमारियां हैं, दिमागी बुखार हैं, पेट के और एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, पेट के इन्फेक्शन, ये सारे तरह के इन्फेक्शन होते हैं।
0: डॉक्टर साहब, आपने खाने की बात की तो लोग फ्रिज पे बहुत विश्वास करते हैं, उसमें रख के अगले दिन खाना खाते हैं, क्या ये सही है?
1: नहीं, देखिए, रखे हुए फूड जो कि हमारे यहाँ इंडिया में रखा जाता है, डीप फ्रीजर में हम रखते नहीं है तो डिकम्पोज होता रहता है, वो फूड हमारा अपना रूप बदलता रहता है, उसमें पोषक तत्व उस मात्रा में नहीं रहते हैं जिस मात्रा में एक फ्रेश खाने में होते हैं। एक तो पोषक तत्वों की समस्या हो सकती है, दूसरा इन उनमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इवन हमारे फ्रिज होता है बार बार खुलता रहता है, उसका भी टेम्परेचर टॉप डाउन होता रहता है, तो उसमें और बैक्टीरिया लग जाते हैं, खाना खराब हो जाता है, जिसे हम कहते हैं खाना घुस गया है। ऐसा खाना खाने से हमें पेट की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे एक गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, डायरिया है, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो फ्रिज में रखा हुआ खाना खाना उचित नहीं है, स्पेशली गर्मियों में फ्रेशली प्रिपेयर्ड एकदम तुरंत बना हुआ ताजा खाना खाना चाहिए। तो जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि क्या क्या समस्याएं होती हैं, उन्हीं समस्याओं को से बचने के लिए हमें गर्मियों में अपने खान पान में ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या हीट स्ट्रोक की होती है। हीट स्ट्रोक को आप सबसे पहले पहचानेंगे क्या? हीट स्ट्रोक में एक तो अत्यधिक पसीना आने लगेगा शुरू में, लेकिन बाद में जब पूरा अपना हीट स्ट्रोक का प्रभाव प्रकोप पूरा हो जाएगा तो शरीर एकदम सूखा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा,
0: स्किन सूखी
1: हो जाएगी, सिर दर्द होने लगेगा, उल्टी आने लगेगी, पेट में ऐठन होने लगेगी, हाथ पैरों की मांसपेशियों में ऐठन होने लगेगी, बहुत ज्यादा कमजोरी होने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे। तो ऐसे सब लक्षण हीट स्ट्रोक के होते हैं, जिसमें पानी और लवण दोनों की मात्रा कम हो जाती है शरीर में। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें नियमित पानी लेते रहना चाहिए, ताजा पानी, शुद्ध पानी लेते रहना चाहिए। लवण की मात्रा को पूरा करने के लिए हम बाकी चीजें खाने में, अपने तरल पदार्थ वाली खाने में चीजें, जैसे नारियल का पानी है, तरबूज है, उसमें पानी की मात्रा अच्छी खासी होती, खीरा है, खरबूजा है, शिकंजी बना लें, आम का पन्ना बना लें, इस तरह की जो जिसमें पानी की अधिक मात्रा है, लवण की मात्रा भी होती है, ऐसा पेय पदार्थ हम ले सकते हैं, छाछ है, ऐसे पेय पदार्थ हम अधिक से अधिक मात्रा में लेते रहें। धूप में खान पान के साथ साथ इस समय धूप में जब भी कभी हम निकलें तो अपने सर को ढककर पूरे शरीर को ढक के निकलें। कोशिश करें कि बहुत तेज धूप हो रही हो तो उस समय सीधे घर से निकल के डायरेक्ट धूप में ना जाएं, थोड़ी देर ट्रांजिशन फेज में रहे, ऐसा ना हो एसी से निकले सीधे धूप में चले गए, वो भी नुकसानदायक होती है, एकदम से इम्यूनिटी डिप करती है, उसमें बीमारी से लड़ने की क्षमता कम होती है एकदम से, तो बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा भी ना करें, हो सके छाता लेके जाएं, पानी की बोतल अपनी अपने साथ रखें, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एकदम ताजा बना हुआ खाना खाएं। इन सभी चीजों का हम ध्यान अगर रखें, खाने में कोई ऐसा विशेष नहीं, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं खानी चाहिए,
0: ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। एक दो रोटी
1: खाना कम, पानी की मात्रा अधिक रखें इस समय गर्मियों में। ताजा खाना रखेंगे, शुद्ध पानी

0: नहीं रखेंगे तो जैसे कि हमने बताया कि गंदे पानी से हेपेटाइटिस ए जो पीलिया हो जाता है वो होने की संभावना रहती है, वो भी नहीं होगा। ताजा खाना खाने से जो डायरिया होती है वो भी नहीं होगा। आजकल अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे मरीज बुखार डायरिया के साथ पेट दर्द के साथ बहुत सारे मरीज आ रहे हैं।
1: अभी आपने वायरस बताया था एक पेशेंट को।
0: हाँ, मरीजों को जब अगर डायरिया हो रही है तो ORS बना लें, ORS ले लें, मार्केट्स में ORS मिलते हैं, लेकिन ORS सिर्फ ORS ही लें। जो ये रेडीमेड बने हुए चीजें आ रही हैं, जैसे पैक्ड ORS आ रहा है, वो उतना अच्छा नहीं जितना कि आप ORS का पैकेट लीजिए, पूरा पैकेट एक बोतल पानी में डालिए, शुद्ध साफ पानी में डालिए। अगर आपके पास RO है तो ठीक है, RO का पानी ले लीजिए, नहीं है तो पानी को उबाल के ठंडा करके उसमें मिला लीजिए। पैकेट एक लीटर में ही मिलाइए, ये नहीं है कि आपने थोड़ा सा पाउडर ले लिया, आधा गिलास एक गिलास पानी ले लिया, इस तरह से उसकी मात्रा ठीक नहीं रहेगी, लवण की आपके शरीर में कमी हो जाएगी। तो ORS को बनाते समय विशेष ध्यान रखें कि पूरा पाउच मिलाएं और थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें। जी रविंद्र जी,
1: ये ना सोचें कि ज्यादा दिन चलेगा।
0: नहीं, ये भी ना सोचें, और एक बार ORS बना करके और आप एक दो घंटे में उसको, दो घंटे तीन घंटे तक पी लीजिए, उसको फिनिश कर दीजिए।
1: अक्सर खाने के साथ लोग भोजन के साथ सलाद भी खाते हैं, तो सलाद को पहले से कटा हुआ रखा होता है।
0: कोई भी खाने की चीज है वो ताजी ही लेनी है गर्मियों में। आपने बहुत पहले से सलाद काट के रखी हुई, हो सकता है उस पर मक्खियां बैठ गई, मक्खी अपने के साथ में टाइफाइड का बैक्टीरिया ले आई है, अपने साथ में हेपेटाइटिस का बैक्टीरिया ले आई,
1: और प्याज तो वैसे भी,
0: और वो बिल्कुल सब अट्रैक्ट करती मक्खियों को, बाकी जो होते हैं उनको, और सड़ने भी लगती है ये चीजें। तो तुरंत ताजा कटा हुआ सलाद लें, सलाद जरूर लें, सलाद में खीरा टमाटर जिनमें की पानी की प्रचुर मात्रा होती है, ऐसी चीजें जरूर अपने खाने में लें।
1: डॉक्टर साहब, आपके जो SR क्रिटिकल केयर जो हॉस्पिटल है, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: रविंद्र जी, पहले तो SR क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल हम 2009 से चला रहे हैं
1: जी।
0: यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी सुविधाएं मिलती हैं हमारे पास। जैसे मैं क्रिटिकल केयर फिजिशियन हूँ तो ICU पूर्ण विकसित ICU है, जिसमें वेंटिलेटर की सुविधा, बाईपैप की सुविधा, डायलिसिस की सुविधा, ABG मशीन, ABG एनालाइजर होता है जिसमें हम गैस पूरे खून में देख लेते हैं, गैस है, लवड़ की मात्रा ये देख लेते हैं, पैथोलॉजी लैब भी है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। आप देखेंगे गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर संध्या हैं, सर्जन में डॉक्टर पारितोष, डॉक्टर अमन आते हैं, डॉक्टर अमन न्यूरो सर्जन है
1: जी।
0: ऐसे ही हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रविंद्र हैं, प्लास्टिक सर्जन, लगभग सभी, पीडियाट्रिक में डॉक्टर मोनिका आती हैं, तो लगभग सभी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी का इलाज होता है और कुछ सुपर स्पेशलिटी का भी इलाज होता है, जैसे प्लास्टिक सर्जरी है या न्यूरो सर्जरी है, गैस्ट्रो सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है, न्यूरो में डॉक्टर दीपक आते हैं। तो अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, 100 संयाओं का ये अस्पताल है, पुराना अस्पताल है और वेल मेंटेन करके हमने रखा हुआ है। कोशिश करते हैं कि यहाँ आए हुए मरीजों को सभी तरह की सुविधाएं एक छत के नीचे मिल जाएं।
1: डॉक्टर साहब, आप मरीजों से भावनात्मक जुड़े हुए हैं, और लेकिन हमारा आकाशवाणी संगीत से भी जुड़ा हुआ है, तो आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
0: रविंद्र जी, आप अगर एक प्यार का नगमा है ये गाना सुना दे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मुझे बहुत पसंद है गाना।
1: फिल्म शोर का गीत है।
0: फिल्म शोर का गीत,
1: ठीक है, हम आपको सुनाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: डॉक्टर साहब, आपका जो SR क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल है, इसके अलावा और कोई इंस्टीट्यूट है उसके बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को।
1: रविंद्र जी, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे SR इंस्टीट्यूशन, वो भी 2015 से हम चला

0: सन, वो भी 2015 से हम चला रहे हैं, जिसमें हमारे डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्मा, बैचलर इन फार्मेसी के कोर्सेज चल रहे हैं। ऐसी नर्सिंग के क्षेत्र में बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और डिप्लोमा फिजियोथेरेपी चल रहे हैं। आईटीआई का भी इंस्टीट्यूट है, जिसमें हमने बड़े अच्छे से कोर्स रखे हुए हैं, जैसे कि हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स है, डिप्लोमा रेडियोथेरेपी का कोर्स है, इलेक्ट्रीशियन और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो हमने जितने भी कोर्सेस अपने इंस्टीट्यूट में लाए हैं, वो सब के सब ऐसे हैं जिनमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हैं। हमारे इंस्टीट्यूट से निकला हुआ कोई भी बच्चा खाली नहीं रहता है, इधर अपना डिग्री डिप्लोमा करता है और तुरंत ही उसको जॉब मिलती है। हम अपने इंस्टीट्यूट में पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चों को करिकुलर एक्टिविटी तो मिले ही, पढ़ाई तो हो ही, उसके साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास हो सके। अपने इंस्टीट्यूट का एनवायरमेंट एक हेल्दी पॉजिटिव एनवायरमेंट रखने की कोशिश करते हैं। समय समय पर विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते रहते हैं, बच्चों को हमेशा प्रमोट करते हैं पढ़ने के लिए, अच्छी लाइब्रेरी, अच्छे इक्विपमेंट्स, जो भी उन्हें सुविधाओं की जरूरत होती है, इंक्लूडिंग हॉस्टल फैसिलिटी, बस फैसिलिटी, सारी सुविधाएं हम अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं।
1: और अब आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमारे इस कार्यक्रम में आज मेहमान थे डॉक्टर रतन गंगवार जी। श्रोताओं, अब हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: SR Institutions Maghpur Bareilly
3: से करें
2: ITI में इलेक्ट्रीशियन,
3: कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट,
2: रेडियोलॉजी टेक्नीशियन
3: और हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर। SR इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से करें, डी फार्मा और बी फार्मा। SR पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से करें,
2: BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी।
3: SR इंस्टीट्यूशंस मैकपुर भुताबरेली के चेयरमैन हैं डॉक्टर रतन गंगवार
2: और वाइस चेयरमैन डॉक्टर संध्या गंगवार।
3: संपर्क करें 9720456885।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब लीजिए सुनिए विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: के बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूंगा क्योंकि इट बी इजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे, तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफी याद हैं लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है लेकिन उन्हें जरूर लगा। और इसकी वजह भी है, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों, फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
2: जी मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है ये, उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूं। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूं और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे ₹1,000 मांगना चाहता हूं, इस खबर के लिए आप मुझे ₹1,000 दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैं देखा कि कोने में रफी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहां, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूं। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
1: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था और दस्तक 1970 में मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ एकदम जे सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, हम मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे कहा छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज चलाओ तेज चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज़ पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माताजी जो साथ में बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तो इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए। उन्होंने कहा मदन जी, मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नजरों ने समझा गाना जो सुना है कमाल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत, तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब खूब प्रयोग किया।

सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम, जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।

शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 एफएम पर और अब समय है आपकी पसंद का। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम आपकी पसंद में और मैं हूँ आपके अपनी दोस्त नीतू। इस कार्यक्रम में आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं। इसके लिए जल्दी से हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, कमेंट पे अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना पसंदीदा गाना हमें जल्दी से लिख भेजें ताकि हम आपके गाने को आप तक पहुंचा सके और आपका नाम भी। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 10 बज चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर।

कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इस गाने के साथ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये गाना हमारे श्रोता कहां से सुनना चाहते हैं। कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशबद और राहुल इस गाने को सुनना चाहते हैं। मंसूरी क्लब ग्राम एरोचा, तहसील मिलक, जिला रामपुर से सकावत हुसैन मंसूरी, तालिब हुसैन, तौफीक, राहुल, सुनील, दर्पण सैनी और इनके परिवार के सभी सदस्य। पद्मा टॉकेश, नेपानगर, मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। ज्योतिनगर नोखा, राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, फरसाराम सोलंकी, श्याम लाल चौहान, घनश्याम भागर्व, बाबू गौरी और हसन सिक्का। सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राम भाऊ तांदले, आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से, धोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन अहद, मिफ्रा चाहत और सादिया भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। बागपत उत्तर प्रदेश

संजय ढंगिया नमन और अपार, सिंधौली मीरगंज बरेली से वारसी क्लब से जेशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करुला मुरादाबाद से हैं अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब, गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा सार्थक और सचिन, संबल राघोपुर पुखाता से हैं ध्रुवेश यादव, और दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता सुभाष योगी, डब्बू और बब्बू भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल शुभम और ये हैं दुर्गेश्वरी जायसवाल। लाल फाटक बरेली से ये गाना सुनना चाहते हैं रंजीत सिंह, अखिलेश कुमार, अवनीश कुमार, हर्षित, प्रज्ञा और रक्षित के अलावा सुनील कुमार, राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष, यूनुश, मनीष, अंशिका और सोफिया बीचना मुरादाबाद से, दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलगा रामगेट कासगंज से एम असलम सैफी, जुबैनिशा सद्दाम, सोनी जाहिद और आबाद खान, सब्जी मंडी कस्बा उसावा वार्ड नंबर एक जिला बदायूं से धर्मवीर कश्यप, उषा, ध्यान, संजय, अनमोल, अंश, करिश्मा और मुस्कान भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिना नूर, एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ से लॉर्ड छत्रपति, संभाजीनगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोटके, वैशाली प्राजक्ता, वैष्णव गायत्री और यज्ञेश घोटके भी इसे सुनना चाहते हैं। नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी अंसारी, नुजहत फातिमा, अबरार इसरार अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, तस्लीम रजा और पप्पू भाई, तौफीक अहमद अंसारी, अतीक अहमद, मोहम्मद दानिश अंसारी, सलाम मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से, गाँव फारांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र, दही गांव नादुरा से धोडू भातुरकर, मंगला विवेक भारती, प्रतीक्षा कोमल, समाधान, संत नगरी शुगांव से शुभम और रुद्र राउत, चंतोसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम, सुनील अमन, बुद्धनगर खंडवा से नदीम और राजू, गांवगढ़ी कोटहा जिला पंचकुला हरियाणा से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अकरम शानिया, इलियास मुशाहिद, अक्सा आयशा, उमर और समीना, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनेजा, पूनम विशाल दिशानी और निमित आहूजा, राम कुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़, सादुल शहर राजस्थान से, गंज डुंडवारा से कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम, मोहम्मद अयान और मोहम्मद उस्मान, रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद बनलकर, वीणा और विविधा भी इस गाने को सुनना चाहते हैं, हरवेश कश्यप, अरजीत कश्यप, दिव्यांश और गायत्री गुन्नैर यूबी छबीलपुर से, और अब सुनते हैं बॉर्डर टू का ये गाना सोनू निगम, रूप कुमार की राठौर की आवाज, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और विशाल मिश्रा की आवाज का ये गाना, फिल्म का नाम बॉर्डर 2।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद। गंगा सिंह रावत रामपुर हल्द्वानी से, ये हैं नागपुर महाराष्ट्र से कमल स्वानी, हजी अफजल मलिक, संदीप मक्कर रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी स्वानी और इनके परिवार के सदस्य, राम कोठा मक्खन बरेली से अरफिरोज अंसारी और फारूक अंसारी। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसुवर्णा और सत्यम आनंद, राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना, बिट्टू कुमार और इनके मित्रगण और परिवार जन, कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल, अजीत, आयुष और नंदिनी, धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजदा, हिना कौसर, मोहल्ला हलवाइयां शेरकोट जिला बिजनौर से, धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और अयान, मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू राजपाल, काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष, मोहिनी सोनी, ऋतिक बलवीर ग्राम धुलापुर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से हैं, मोहम्मद अकरम अंसारी नगरिया कला से, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग टेलर, पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी दीवाना, सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा इकबाल, जीशान अफजल रजा, मोनिश रजा, सादिक और इनके पूरा परिवार, गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नथावत, बहेड़ी से अंजुम जहां, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन और माहिना नूर, ये हैं कस्बा मीरगंज बिजलीघर से आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, उमेंद्रपुरी और कल्लू, कस्बा उघैती बदायूं से धीरज गुप्ता, पंकज, डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता और इनके परिवार के सदस्य, ग्रामर पोस्ट हरहरपुर मटकले जिला बरेली से शारू नूर अंसारी, फरियाद शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान, सेंथल जिला बरेली से फरियाद हुसैन, ताहिर तासिफ, मोहम्मद अजहान अंसारी, अलमीर बशर, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, सेक्टर 67 चंडीगढ़ मोहाली से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल और जयवीर के अलावा डॉक्टर अमनदीप।

कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा और अभय, नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण मुनीश और राहुल, मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू अर्चना, कल्पना मुन्नी कुमारी, चांदनी और नंदिनी, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश, मंजू निशांत, कौशिकी दीपाली और युवन आर के राजा, बेडो लोहार पोपल घट से है चंद्रकला पोपल घट, निवासा खुपटी से हैं ये, और बाबूदीन मेरठ कैंट से हैं, शाजी नगर दिलगूर जिला नादेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु जिला पटियाला पंजाब नाभा से, गोविंद सीकर राजस्थान से, दातार सिंह शेखावत, संगीता तुषार और रिंकी ये हैं, ढांडी नादुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाटे, संदीप और अमूल्य, साथ ही टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी भी है, बड़ी गैवी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय, मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमलरानी भानु प्रकाश और गीतिका ये है, रामगढ़ से है ओल्ड लिसनर्स महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हिमलता हिना, हर्षित और खुशी, साथ ही ग्राम लसोडिया तहसील नरसिंहगढ़ राजगढ़ एमपी से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी और ऋतिका ये है, अलकनाथ मंदिर के सामने बरेली से बेचीलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत ज्ञानेंद्र, इला देवी, वर्फा देवी, सुनील, संजय, अश्विनी, विनोद दीक्षित, राज महावीर, कश्यप, रमेश चंद सैनी और गौतम राम, गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा से डॉ एम फारूक शेख शमा, परवीन साइमा, सरफराज गुलफराज, बेबी मुस्कान, शेरकोट बिजनौर से नदीम, कलीम, अलीम, अजीम, अदीम, अब्दुल, अलमीर, जन्नत और इनके परिवार के सदस्य, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना, नवाजिज दानिश और अमन आफरीदी, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से हैं, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष, सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है मृत्युदंड, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम आपकी पसंद, और स्टूडियो की घड़ी में 10:25 हो चुके हैं। और अब बारी अगले गाने की, लेकिन उससे पहले आप सभी के नाम भी जरूरी हैं। ग्राम लोहे डी, जिला महोबा बुंदेलखंड से जयपाल, इंद्रपाल, राघवेंद्र, रागनी, रिया, रेणु, दिव्यांशु, आराधना, रोनिका, चंद्रेश और सुनील पाठक। सिकलापुर बरेली मौर्य मंदिर से रतन माला मौर्य, मुकेश प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा गौरव और चंद्र प्रकाश। और ये है नारायण प्रधान, ओडिशा से हैं नारायण और प्रधान जी। और साथ ही ये हैं हमारे श्रोता खरगोन सनावद एमपी से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज आयुषी, रमेश चंद, शेख मुसा भाईजान, राजकुमार बुड़ाना, सुदामा नगर से खंडवा से हैं लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप। कस्बा उगैती से हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज, पंकज प्रिंस, प्रशांत, कार्तिक और निर्भय, प्रभाकर गुप्ता, अवधेश, सचिन देव, परियाल गुप्ता, कार्यव गुप्ता, शनि बाजार कस्बा उगैती से हैं। सप्तरंग श्रोता परिवार कुमार गल्ली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश दले और जीविका पुनावले पुणे से अजय, सोनवने, करिश्मा, अविका, विशाखा। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत और सोनम, मोहम्मद रफीक पवार, बेंजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगराडे, विनीता गंगराडे, मोहम्मद हसनैन पवार, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से हैं। सालार पहलगाम कश्मीर से परजादा मिराज, मिराजुद्दीन और ये हैं रेडियो ऑडियंस एसोसिएशन से हैं नेहरू स्क्वायर पैठान से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती प्रसाद, सोनल सिया जाधव और ये हैं सोमनाथ यादव जालना से, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष सैंडलवुड जाधव, एकनाथ और संगीता। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरण हुजरे और रेहान शेख। धनवंती नगर जबलपुर एमपी से अशोक सिंह, सुनीता, प्रीति, ऋतु गुड़िया और वेदा सिंह। गांव हीरावाली फाजिल का पंजाब से सुभाष गुदारा, विमला इंदु, पार्वती, हिमांशु गुदारा। मदार चौक ग्राम उदयपुर जिला बरेली यूपी से नाजिम अली, वसीम अकरम, अहमद अली, मना

नाजिर हुसैन और मुनाहिजिर के अलावा हैं शबनम जेवा नूर अदीबा फातिमा आकेब अली और हाशिम अमला। कटरा चांदखा मौर्य मंदिर पुराने शहर बरेली से हैं जमुना प्रसाद किरण मौर्य दृष्टि और मानवी। साथी डॉक्टर आरवी सिंह अर्जीत यादव प्रशांत यादव उदित अभय दीक्षा थाने के सामने आलागंज जनपद शाहजहांपुर से हैं। गनगौला दाता गंज से इसम खान शायरा बेगम रहूब खान सावरीन शहबाज सैफ ईशान आजम और अरहान ये हैं तुत्सांग प्रीत ये राजमाता नगर बुल्डाना महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े ज्योति नरवाड़े आकांक्षा और आकाश कुमार भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान संक्रांति चौहान रुतेश राजेश्वरी उत्कर्ष चौहान और इनके परिवार के सदस्य। राम सिंहपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर पवन राजेश अजय राहुल और मनु। ग्राम मिट्टू मुडा चौक दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीनिवास और गेंदू भाई भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। ये है हमारे श्रोता जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू कुलवंतीन देवी देवेंद्र प्रसाद नेहा देवी मिलिंद कुमार प्रणय रुद्रांश और इनके परिवार के सदस्य। जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरीत रमेश तारा विद्या जितेश सुनीता नीलकंठ हिरेंद्र संजीवन त्रिलोक कुमार साहू। और अब सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना जो कि है फिल्म क्या यही प्यार है अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम आपकी पसंद। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश कुमार, पायल जोशी और शिव कुमार, वैधी जोशी हंसिका अनूपपुर मध्य प्रदेश से हैं और जयवंती कैलेट भी यहीं से हैं। साथ ही शनिवार पेट बीड शहर महाराष्ट्र से पोपट राव कुलथे, हनुमान प्रथमेश और साथ ही राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, सुशांत और चुलबुल रानी हैं। यवतमाल विदर महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे, मालवा रेडियो संघ तहसील आलोड जिला रतलाम एमपी से कुंवर पाल सिंह, विक्रम दिलीप, नरेंद्र और इनका पूरा परिवार, कोल सिटी बरकाना से अफजाल ताज, शाहीन, सोनू तस्नीम, निप्पी, मोहम्मद अफजल मलिक और ममता बामर कांडे और संजय मारकंडे, बेबी किट्टू बड़ा बम चौक खंडवा एमपी से हैं। रावर करनाल से विनोद लखन पाल, विमल ठाकुर, सरिता, शुभ, लव, गुनगुन, अमर सिंह, नीलू, अमन, रिया, सेजर, सूर्य, सोना, रीना, नीरज और मीना बक्सेना दातागंज बदायूं से, हरदेव मिका, बरविंदर विरक, जयतेग विरक, मीका विरक गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, सनावत से शेख मुसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना, जितेंद्र सिंह ये हैं आनंदपुर मीरगंज से, माया देवी ऋतिक, आदित्य कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से और यहीं से अजीत कसाना भी, नलेश्वर नरवेड महाराष्ट्र से हैं, PS नवारकर, निर्मला विशाल और सुपान, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद अफजल और नफीसा प्रवीण, ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील प्यानी की टंकी के पास से हैं, फरीदपुर से मास्टर सुनील बाबू, शिवम, सर्वेश, अभयमीत, भगवान देव, स्वाति, तान्या और इनका पूरा परिवार, ग्राम बाकरगंज से मास्टर अख्तर अली, शाहरुख अली, साहिबा, मोबीन और मोहम्मद आसिफ, अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखनवाल वर्मा, चांदनी और गोपी वर्मा के अलावा राहुल भी यहीं से हैं, ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता, सत्यम और सुंदरम, छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से प्रकाश राय, उषा अमित हैप्पी, दुबिया निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल, पंचकुला सेक्टर 9 से आशोक चुग, अश्विनी, गोविंद, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक ठिंगरा इस गाने को सुनना चाहते हैं। मुगलपुरा बागपत से अब्दुल अत्तार सत्तार अब्बासी, बरेली ग्राम करेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहिनूर, नसरीन, समा अंसारी, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण साहू और चंपा, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका, जामनिया गाजीपुर से सुरेश, उर्मिला, दीपक और स्वाति, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश, चंदन और अंकुश, अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और निहान, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राजनाथ पैलेस, मऊनाथ

जनु यूपी से राजेश कुमार, प्रीति कार्तिक और आर्यन, शिवमंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू, हर्षित प्रज्ञा, रक्षित सुनील कुमार, लाल फाटक बरेली से हैं, गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मोताराव पंचाल, ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बास से निघत शाहनवाज, सरफराज परदीन, सुहान अर्जुआन अब्बास और इनका पूरा परिवार, बेड़ी एमपी से हुकुम करकर और सुनीता करमकर, मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन शाहनवाज, नवेद रसीद, अनम यशव, सुहेल हसन अब्बासी, साथी चोरेवाल जिला नवाशहर पंजाब से हैं तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, वामिका और वाड़ी, अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल दीपिका गाव्या, सुच्चा सिंह, विनोदपुरी जयपाल और इनके परिवार के सदस्य, तिलक राणा, मीना, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन राणा नेपाल पैलेस सागर से है, लगान पंड्रिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी और भारती, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार यूपी से है, उत्तराखंड से गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश योगेश और ये है मनकारा मंदिर बीजे कॉलोनी बरेली से, बेनी सिंह सागर, पन्नी लाल, आशीष अमर, हितेश, राजेश, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती, खनक, शकुन, सारांश, आयांश, अदिति, शिवांश और पृथ्वी सिंह, बुलढाणा महाराष्ट्र से राजू माठे, गजानन संजय, ज्ञानेश्वर, प्रकाश दांडगे और संतोष काले, गजानन सालोकर, सुभाष भिषे पाटिल, मानीवाडा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर इस गाने को सुनना चाहते हैं, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश बिल्लू निषाद, तरुण, श्रीनिका और श्रीनिजा, सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है केसरी, आवाज है अरिजीत सिंह और एश्विस कौर की।

और प्रोग्राम में आप सुनेंगे ये गाना, लेकिन उससे पहले बता दें कि हमारी कौन सी श्रोता इस गाने को सुनना चाहते हैं। ये है महाराष्ट्र के पूर्णा से है, विलेज देगांव तहसील से हैं, सदाशिव प्रेम और श्रेया बंटी थोराट। साथ ही वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश और इनके परिवार के सदस्य। विष्णु मस्कीन, रितिका, वाणी, आरव, इनके मम्मी पापा, काशीनाथ, गणेश, सोनी, आरोही, प्रियांशी, दयानंद कॉलेज भवानीपेट महाराष्ट्र से हैं, रावत करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया, आकोट से विनायक बेंडे, मंगला, विजय, पवन और शुभम के अलावा संजीव डाबेराव, संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव, पीलीभीत ढकिया केसरपुर से एके राजपूत, अनिल कुमार, कैलाश भगवान दास, मदन लाल, रवि कुमार, नवनीत, किरण, खुशी, संतोषी, प्रिया, गुड़िया और चंचल कुमारी भी इसे सुनना चाहते हैं। गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद, राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार, गणेश कार्तिक खट से, वंदना खट से ललिता, आशा रानी, संजना, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से है नारायण भाऊ, इसे सुनना चाहते हैं इस गाने को। कुड़ी सेक्टर 5 सूरी नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी कल्पित, गर्वी और हिमांश, नई बस्ती गंजुंडवारा से मोहम्मद यासीन, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी, फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, लाडी खेड़ा, शालिनी, दिवानशी, वाणी, बी खेड़ा और इनके परिवार के सभी सदस्य, जैन मंदिर गली कुरावली से राशिद हुसैन, नसरीन और नौरीन, जिला रामपुर गांव खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषि, सिद्धार्थ और यश, गजानन गेले, नवदीप, विश्वदीप और कैलाश, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से होली चौक, उत्तम नगर से जयराम, सचिन, अमन, दीपांशु खोरवाल, सेक्टर 18 जगाधरी, जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानकचंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का, गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना अक्सा, नाजिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब, गांव शर्की जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से तेज बहादुर यादव, ममता, रोनित और बेबी वानिका। ये है टाउन करनाल मॉडल टाउन से सुधीर, नूतन, किरण ठाकुर, शशि बाला, किरण गुप्ता, संदीप गगलानी, जगमोहन प्रजापति, ईशप्रीत शर्मा और हरिपाल कौर भी इसे सुनना चाहते हैं। चौकड़ा ग्राम कॉलोनी सनावत से कृष्णपाल सिंह चौहान, तारा देवी, नव उदित चौहान, वैभवपाल सिंह चौहान, ध्रुवी, प्रद्युम सिंह चौहान। और सुनते हैं अब ये गाना, फिल्म का नाम याद रखेगी दुनिया, मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज।

और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी पसंद में। और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से हैं सईद, सूफिया, आजिया, अल्फिया और हसनैन, और ये हैं नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। सौंगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री, मोहित, देविका, गजेंद्र कुमार चंदन और हेयांश, सोहरा जला बिजनौर और यूपी से आसिफ चौधरी, अराफात अदीब और कादिर चौधरी, ग्राम पंजवानिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक, रामपुर रोड किला छावनी बरेली से प्रदीप कुमार पाल, नमन माही, पिंकी और गौरी, राधा, नेहा, आरती, और साथ ही ये हैं हमारे श्रोता राम राठौर, इनका पूरा परिवार भी इस गाने को सुन

ना चाहते हैं। ये हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बनी, आरुष, शौर्य और दिनेश। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से हैं। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणी पारसमणी, पुष्पेंद्र नोखेलाल नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से, वेद मिड्ढा अलका मिड्ढा भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। अरुण चंद्र शर्मा, रेणुका और इनके परिवार के सदस्य विराटनगर नेपाल से हैं। ये हैं रिजवान खान, आरिफ, फाजिया, नाजिया जो कि जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से हैं। साथ ही एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव खुराना और एसके पप्पी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। स्टेट आसाम से हैं हितेंद्र दास और ये हैं काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से आजन कुमार, वंदना, विनती, विनायक, मोहित, मोहिनी और कोको रानी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल और निशा, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन एमपी से विनोद, नेहा, दीपक, मयंक, चेतन, नाहटा, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। मस्जिद गली सिराजपुर जिला सुपौल बिहार से मोहम्मद वकील अहमद, नाजनी बेगम, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद कासिफ, मोहम्मद कामरान, मोहम्मद शाहबाज, अहमद नाज, प्रवीण नाजिज, प्रवीण रूही, खुशबू, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद जैद, चमनपुरा उदयपुर से नजीब खान, साहिबा जबार, मोहम्मद अशरफ खान और मंजू निम्मी, जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजक और मयंक इस गाने को सुनना चाहते हैं। प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा, प्रथम सलूजा जनकपुरी नई दिल्ली से हैं और साथ ही ये हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेश, ट्विंकल, डिम्पल, निशा, तुलसी गोस्वामी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं।

अंजलि कारवा, बाला साहेब जयश्री, रामनिवास, धनंजय पीबी कुलते बीर चेयर महाराष्ट्र से हैं, रामगंज खंडवा एमपी से विजय सिंह और कविता के अलावा कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से इस गाने को सुनना चाहते हैं। कोलासर नादुरा महाराष्ट्र से प्रमोद बागडे, वर्षा प्रतीक बागडे और संकेत बगाडे। तो चलिए सुनते हैं ये गाना। फिल्म का नाम है भूत बंगला, अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज़ में।

छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले, राजदीप राशि और शीतल भी से सुनना चाहते हैं गाने को। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशव रधान और तुलसी, जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभनी, महाराष्ट्र से रूपेश, महेश, प्रग्रेश, प्रतेश, इनका पूरा परिवार, एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बहारी कॉलोनी, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन।

0: अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद ये आकाशवाणी बरेली है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और अब समय है सब रंग का। तो चलिए सुनते हैं सब रंग।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: और सबसे पहले जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाज में ये भजन।

मोहब्बत का सफर है।

सोनू निगम की आवाज में आपने सुना ये गाना सब रंग में, और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम झुमका गिरारे। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम झुमका गिरा रे में। दोस्तों, 1966 में आई फिल्म मेरा साया में साधना जी पर फिल्माया गया एक गाना आया था झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। इस गाने ने बरेली को पूरी दुनिया में वो पहचान दी जो शायद ही किसी और शहर को मिली हो। लेकिन सालों साल हर किसी और हर की जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर वो झुमका गिरा कहाँ था, कुतुब खाना या बड़ा बाजार में। तो भाई, आपकी इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज आपको सीधे लेकर आई हूँ NH 24 पर बने झुमका चौराहे पर। जी हाँ, वही नया और आलिशान झुमका चौराहा जो आज हमारे बरेली की आन बान और शान बन चुका है। आज के 15 मिनट के सफर में हम जानेंगे इस नए झुमके बनने की दिलचस्प कहानी के बारे में। लेकिन उससे पहले मूड को बनाते हैं थोड़ा संगीतमय और सुनते हैं ये एवरग्रीन।

इस समय आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है झुमका किरारे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं शहर के नए सेल्फी पॉइंट यानी झुमका चौराहे पर। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि जिस खूबसूरत झुमके को आज हम देखते हैं उसे वहां तक पहुंचने में पूरे 54 साल लग गए। जी हाँ, साल 2020 में फरवरी के महीने में इसी चौराहे का उद्घाटन हुआ था। बरेली विकास प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट को

आपने फोटो खिंचवाई है तो उसे हमारे प्रोग्राम में ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजिए और हम जानेंगे कि आप यहाँ पर आ चुके हैं। साथ ही ये चौराहा युवाओं के लिए भी एक बहुत मायने रखता है क्योंकि यहाँ पर लगातार लोग सेल्फी के लिए जो पहुँचते हैं।

0: झुमका
1: पर मौजूद है। चलिए जानते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से कि उन्हें ये झुमका कितना पसंद आ रहा है। जी आपका नाम?
2: जहीरुद्दीन
1: जी। आप पहले भी आ चुके हैं आप यहाँ पर, जब पुराना झुमका था
2: जी
1: वो कैसा लगता था?
2: वो से थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता था, अभी अच्छा लग रहा है
1: जी, अब ज्यादा अच्छा है
2: जी।
1: और ये इसकी रख रखाव की जो जिम्मेदारी है वो भी अब अच्छी हो गई है, क्योंकि धूप बारिश मौसम का भी काफी असर होता है
2: जी। जी जी।
1: तो ये पहले से ज्यादा बेटर है?
2: पहले से अच्छा है
1: जी। तो पुराने वाले में और अब में आप कितना अंतर देख पाते हैं?
2: पहले से डिजाइनिंग काफी चेंज हो गई है, पहले तो सादा सिंपल था, अभी डिजाइन वगैरह हुआ है।
1: अच्छा, आप सुबह किस समय आने काम करते हैं या फिर शाम को?
2: शाम को अच्छा लगता है,
1: शाम को रोशनी में जी। शुक्रिया।
3: Dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta din

मौजूद हैं झुमका तिराहे पर और यहाँ पर लोग लगातार सेल्फी लेने के लिए पहुँच रहे हैं। आज ये जगह बरेली का सबसे बड़ा सेल्फी पॉइंट बन चुकी है। सुबह हो या फिर शाम, यहाँ रील्स बनाने वालों और तस्वीरें खींचने वालों का मेला सा लगा रहता है। बरेली आने वाला हर मुसाफिर यहाँ पर एक बार ज़रूर रुकता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। दोस्तों, ये नया झुमका चौराहा सिर्फ एक सरकारी प्रोजेक्ट नहीं रह गया है, बल्कि बरेली की धड़कन बन चुका है। सुबह की ताजी हवा हो या शाम की रंगीन रोशनी, यहाँ हर वक्त युवाओं का, परिवारों का और बाहर से आने वाले मुसाफिरों का मेला सा लगा रहता है। लोग गाड़ियों से उतरते हैं और 14 फीट ऊंचे विशाल झुमके के साथ मुस्कुराते हुए सेल्फी लेते हैं और अपनी यादों को डायरी में बरेली का एक पन्ना जोड़ लेते हैं। सच कहें तो इस नए झुमके ने हमारी पुरानी कहावत को नया और बेहद खूबसूरत वजूद दे दिया है। तो अगर आप भी बरेली में रहते हो और अब तक यहाँ नहीं आए हैं, तो वीकेंड पर अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ झुमका चौराहे का चक्कर जरूर लगाइए।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। साथ ही आज के विशेष सफर में बस इतना ही, हम फिर आपसे मिलेंगे कुछ नए किस्से और बेहतरीन गानों के साथ इसी समय आपके अपने स्टेशन 100.4 FM पर। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे झुमका गिरा रे। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं और अब लीजिए सुनिए एफएम रेनबो के कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: आकाश जी, मुरारपुर, रिंकी पिंकी, गुलफसा और सभी लिसनर्स का नाम लिया है। ओके, तो इसी के साथ एक और ले लेते हैं। राजकोट, गुजरात, कौशिक अस्मिता वढवाड़ा परिवार लिखा, हेलो नमस्ते आयुषी मैम, केम छो, मजा मा, आप कैसे हैं? चलिए, अच्छा लगा आपने एक मेल किया है और एक इमेज भी लगाई है जिस पर अपना संदेश लिखा है और बेसिकली ये बताया कि बीमारी क्यों होती है। लिखा है, बीमारी होना असामान्य है। बीमारी का ये अर्थ है कि आप जीवन की धारा के विपरीत जा रहे हैं और नकारात्मक सोच रहे हैं, इसलिए बीमारी उत्पन्न हो रही है। ये बात सही है कि अक्सर ये पाया गया है कि बीमारी का जो एक सोर्स मेजर तरीके से उभर कर आता है वो मेंटल स्ट्रेस या फिर हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से आता है। यानी कि अगर आपने चिंता कम कर दी तो थोड़ा स्वास्थ्य बेहतर होगा और इसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। भाई, बहुत सारी बातें हो गई, अब आप कहेंगे बस आयुषी अब प्यारा सा गाना भी तो सुना दो, तो मैं कौन होती हूँ आपकी बात न मानने वाली। ये रहा आपके लिए बहुत प्यारा सा ट्रैक।

0: 11:35 और आप सुन रहे हैं संदेश आपके गीत हमारे आयुषी के साथ। और ये सिलसिला भाई मजेदार पे मजेदार होता जा रहा है। गाने इतने बढ़िया बज रहे हैं और उस पे सोने पे सुहागा, प्यारे प्यारे आपके मैसेजेस आते जा रहे हैं। अब भाई इससे कौन दूर रह पाएगा? आपको तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे लगता है कि अगर हम सारे संदेश आपके गीत हमारे में एक एक डायरी और एक पेन लेकर बैठ जाए और ये सारे हम जितने भी मैसेजेस आते हैं, जितने भी संदेश आते हैं, अगर इसे नोट डाउन कर ले तो सोचिए हम लेखक भी बन जाएंगे, किताब भी छप जाएगी और हमारी जिंदगी कितनी सुधर जाएगी, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें होंगी उस किताब में, उसको जितना पढ़ो मन नहीं भरेगा। वैसे ही जितने मेल्स आते हैं, जितनी बार पढ़ो मन नहीं भरता, और जितनी कॉल्स आती हैं उससे भी मन नहीं भरता। फिलहाल देखते हैं हमारे पास किसकी कॉल जुड़ चुकी है। हेलो हेलो
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम। साहिबा
0: जी, किससे बात हो रही है?
1: अंसारी मेहरागंज जिला लखीमपुर खीरी से बोल रहे हैं
0: लखीमपुर खीरी से। गर्मी है वहां पर?
1: जी मैम, बहुत गर्मी पड़ रही है यहाँ पर।
0: अच्छा, तो क्या कर रही है गर्मी में फिर आप?
1: बस आराम से लेते हैं, आपका प्रोग्राम सुन रहे थे।
0: चलिए तो अच्छी बात है। तो ये बताइए कि गर्मी की छुट्टियां पड़ी कि नहीं, क्या करती हैं आप पहले ये बताइए।
1: मैम हम तो सिलाई करते हैं घर पर रहकर।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम है भाई। इसी से तो पूरे फैशन डिजाइनिंग जगत की शुरुआत हुई थी, सिलाई ही तो उसका एक आधार है। क्या बात है, तो बताइए क्या संदेश लाई है।
1: हम संदेश ये लाए जैसे कि गर्मी बहुत पड़ रही है और उसके बाद में जब पंखा या कूलर एसी चलाते हैं तो
0: हाँ
1: जब
0: हाँ
1: कमरे से बाहर निकले तब तक उसे बंद कर दें, बिजली बचाएं।
0: अच्छा, बिल्कुल, ये बात तो आप
1: जी
0: बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि गर्मी में खपत भी होने लगती है और हम अक्सर,
1: मैम, जब सब कुछ चला देते हैं उसके बाद में बहुत गर्म हो जाता है इस टाइम।
0: हाँ, और हम छोड़ भी जाते हैं अक्सर, कोई काम आया
1: जी
0: और
1: मैम,
0: चलता
1: कभी
0: हुआ।
1: कभी इससे नुकसान भी हो जाता है।
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। थैंक यू, आपने
1: जी
0: इतना प्यारा मैसेज दिया, बहुत
1: जी मैम,
0: अच्छा
1: नाम भी
0: मैसेज है।
1: लेना चाहती
0: हाँ
1: थी।
0: हाँ जरूर जरूर।
1: मोहम्मद आसिफ भाई, मोहम्मद शेख भाई हैं, सत्यम कुमार भाई हैं, राशिद अंसारी भाई हैं, समाप्ति हैं, बिलकती हैं, साजिद अंसारी हैं, रोशनी दीदी हैं, प्रीति दीदी हैं, रक्षा दीदी हैं, वकील अहमद मंसूरी भाई हैं, जो कि पूछ रहे थे हमारा घर है मेहरागंज हुसैनी मस्जिद के पीछे बालाजी स्कूल के पास, और हमारे अब्बू का नाम है इदरीस अहमद।
0: चलिए थैंक यू, आपने कॉल किया, और इसी तरह
1: जी
0: आप लोग अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं, तो आप भी बाकियों के मैसेजेस
1: मैम,
0: सुनकर।
1: जल्दी जल्दी आया करें आप।
0: अच्छा जरूर।
1: जी क्योंकि
0: बिल्कुल,
1: आप लोग कॉल भी उठा देते हैं और कुछ आज आते हैं कहते हैं नहीं, हम पुराने कॉलर
0: नहीं
1: से बात
0: नहीं
1: नहीं
0: ऐसा नहीं
1: करते
0: है।
1: हैं।
0: चलिए, हम जरूर आपसे फिर बात होगी और अच्छे से बात होगी। अभी तो आप गाने सुनेंगे ना प्यारे प्यारे,
1: जी मैम, गाने
0: तो
1: सुनाइए।
0: अगली बार फिर
1: जी
0: आपके
1: जी
0: गाने, आपके
1: मैम,
0: मैसेजेस का भी इंतजार रहेगा। और अभी फिलहाल आपके लिए प्यारा सा ट्रैक भाई। वैसे मैंने सोचा कि ट्रैक चलाने से पहले हमारे कुछ जो मेल्स आ रहे हैं उन्होंने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया और कहा कि अगर मैंने एक दो मेल्स नहीं लिए तो कहीं छूट ना जाए, तो एक दो मेल ले लेती हूँ। गाना तो कहीं नहीं जा रहा, प्यारा सा गाना वेट कर लेगा 2 मिनट, लेकिन अरविंद कुमार बुद्ध जी का मेल मैं फटाफट पढ़ दूंगी। देखिए अरविंद कुमार बुद्ध जी क्या कह रहे हैं कि रसूलपुर से बात कर रहे हैं, सुनवाती डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। कह रहे लाइफ में ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे कि दूसरों को कष्ट हो। और मैं संसार को देख रहे हैं, प्राकृतिक है सब लोगों को, प्रकृति सबको देख रही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। चलिए हम बिल्कुल आपकी बात मानते हैं, और ये बात है, मुझे ये लगता है कि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। और प्रकृति बहुत बलवान है, और समय समय पर प्रकृति ये जता भी देती है कि जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है तो उसका जो गुस्सा होता है वो हम सब के अंदर सहने की कुवत ही नहीं है। तो कहीं भी जाएं प्रकृति का ख्याल रखें। आप बाहर जाएं, आपको मालूम है ना प्लास्टिक डिग्रेड होने में कितना समय लेता है, डिकम्पोज होने में कितना समय लेता है। यहाँ तक कि आप जो कपड़े पहनते हैं, हम कपड़ों का अंबार लगाते जाते हैं, पर वो कपड़े जब पुराने हो जाते हैं, थोड़े फट जाते हैं, या आप उसे फेंक देते हैं, या किसी को दे देते हैं, या इधर उधर रख देते हैं, आप जानते हैं कि वो कपड़ों से लैंडफिल भर रही है, और कपड़े भी एक तरह का पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, और वो भी डिग्रेड नहीं हो रहे, डिकम्पोज नहीं हो रहे। तो इससे हमारी जो धरती है उसमें कितना

कचरा जमा हो रहा है, यहाँ तक कि यूनिवर्स में भी बहुत सारा कचरा जमा है। आप देखिएगा और मुझे बताइएगा अगली बार कि कैसे जमा हो रहा है यूनिवर्स में कचरा। फिलहाल के लिए हम देखते हैं अगला मेल किसका आया है। वारिस अली खान जी कह रहे हैं, पिछला शो अच्छा किया, सॉन्ग प्लेलिस्ट लाजवाब थी। कह रहे, अर्जे मेरी फितरत में नहीं है उन परिंदों से दोस्ती करना जिन्हें हर किसी के साथ उड़ने का शौक है। संदेश है अपनों के साथ चले या ना चले, लेकिन अपनों के साथ कभी चाल ना चले। एडवोकेट वारिस अली खान संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से बात कर रहे हैं। थैंक यू, आपने लिखा इतना प्यारा मेल और इतनी प्यारी बात कही, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब मुझे लगता है कि अब ज्यादा वेट नहीं कराना चाहिए और फटाफट एक प्यारा सा गाना सुना देना चाहिए आपके लिए, आपके रेडियो सेट्स पर। फटाफट ये गाना

11:44 और आप सुन रहे हैं संदेश आपके गीत हमारे 100.7 FM पर आयुषी के साथ। और देखिए बहुत प्यारे प्यारे हमारे पास मेल्स आ रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आई अच्छी अच्छी। फिलहाल मैं मेल ले रही हूँ नजीम रायन का। बस इन्होंने यही लिखा है, मेरा नाम नजीम रायन है, तो हमने दो बार आपका नाम ले दिया क्योंकि आपने दो बार अपना नाम यही लिखा। पर अगर आप कुछ संदेश देते तो हमें बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि हमारे जो भी श्रोता हैं, जो भी लिसनर्स हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं। और यही कुछ मौके होते हैं जब ये डुअल इंटरेक्शन होता है, आप कुछ लिख के कहते हैं और हम अपनी बात कहते हैं, और इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। यही तो बातें हैं ना। अच्छा, विवेक शर्मा क्या कह रहे हैं देखते हैं। सचिन विवेक शर्मा नाम है इनका, और केशव नगर नेरा आशीष मिष्ठान भंडार दुदौली मार्ग लखनऊ कह रहे संदेश है कि गर्मी बहुत हो रही है, कृपया करके अपने बच्चों को ज्यादा ध्यान दे, और भांजा है उसको गर्मी की वजह से घमोरिया बहुत हो जाती है, उसका नाम है आर्यन शर्मा। तो हम मनाएंगे कि भाई आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो स्वस्थ रहे। और यहाँ पे अच्छा नजीम रायन जी ने ये भी लिखा कि वो दिल्ली से बात कर रहे हैं, तो अच्छा लगा हमें जानकर। ब्रिजेश सिंह जी क्या कह रहे हैं, कह रहे गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सी क्यूट सी आयुषी मैम, और सुपरहिट सॉन्ग्स के सारे गाने अच्छे लगे और सुनकर मन एकदम मस्त मलंग हो गया। संदेश कह रहे हैं कि इस गर्मी में अपना और अपनों का खास ख्याल रखें, जैसे बेजुबान जानवर को भी उसके लिए पानी की व्यवस्था करें। हम तीसरे दिन नलकूप चलाकर पानी भर देते हैं जानवरों के पीने के लिए। इसी के साथ राज स्टूडियो का भी मेल आया है। राजेश यदुवंशी हथरौना अमेठी, ड्राइविंग करते समय गति सीमा की टेस्टिंग ना करें, चाहे दो व्हीलर हो या चार व्हीलर, या आपके लिए घातक साबित हो सकता है। भाई देखिए, ट्रैफिक रूल्स और यातायात के जितने भी रूल्स हैं उसके लिए बहुत सारी हमारे पास मेल्स आती है जो हमें याद दिलाती रहती हैं कि हमें किस तरह से अपनी सेफ्टी का ख्याल खुद रखना है। और जब आप कोई भी गाड़ी चला रहे हैं तो ना सिर्फ उस गाड़ी की स्टीयरिंग या उसकी जो भी चलाने के हैंडल है वो आपके हाथ में है, नहीं, आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग आपके हाथ में है। आप जैसे चलाएंगे आप वैसे अपनी जिंदगी को मोड़ दे पाएंगे, वैसे ही बचा पाएंगे, उसकी रक्षा कर पाएंगे। तेज बहादुर यादव क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इनको कार्यक्रम, ये कह रहे हैं थैंक यू, और गाने अच्छे लगे सुपरहिट सॉन्ग्स में, थैंक यू सो मच। संदेश है, मेल थोड़ा बड़ा है। अच्छा, कह रहे कि एक अच्छा ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत से लोग हैं, अच्छा कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गई आपकी बात कि कभी कभी इनका नाम, इनकी कॉल नहीं लगती और कुछ ऐसी दिक्कत, पर हम समझते हैं, पर उम्मीद करते हैं कि अगली बार आप कॉल करें तो आपसे बात हो हमारी। और ये मुझे पता चलता है कि बहुत सारे लोग हमें एक साथ कॉल करते हैं, सबकी कॉल ले पाना भी मुश्किल नहीं हो पाता, सबकी कॉल लग भी नहीं पाती, और ऐसा लगता है हमें कि इस बात से थोड़ा सा परेशान है, पर कोई बात नहीं। हम उम्मीद करते हैं तेज बहादुर जी कि अगली बार आपकी कॉल लग जाए और हमारी आपसे बात हो, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। नाम लिया है तेज बहादुर यादव, ममता यादव का, गांव मऊ शर्की, जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से, और गुरुग्राम हरियाणा से सुन रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ ही अब मैं अगला मेल जो ले रही हूँ वो है विश्वास खंड से, पीयूष शर्मा के, विभा शर्मा, देवान शर्मा, किरण। अच्छा, तो इन्होंने क्या लिखा है, सेकंड, ओके, तो ये जो व्हाट्सएप वाली भाषा होती है ना, जिसे हम रोमन भाषा कहते हैं, जब इसमें कोई मेल आता है तो एक मिनट के लिए हमें सोचना पड़ता है क्योंकि वो हिंदी में लिखा होता है लेकिन जो वर्ड्स होते हैं वो अंग्रेजी के होते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि भाई कोई भी OTP आए

आपके पास, तो यूं ही ना समझे कि ये ओटीपी उसी वक्त हमने खुद भी डाला है तो इसी का ही ओटीपी होगा। वो किसी का भी ओटीपी हो सकता है, गलत ओटीपी भी हो सकता है। तो बस इस गुमान में ना रहे कि आपने मान लीजिए किसी वेबसाइट पर गए और वहां पर ओटीपी डाला और फटाफट आपके फोन में ओटीपी आ गया, तो हम अक्सर अज्यूम कर लेते हैं कि ये ओटीपी उसी वेबसाइट का है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि ये किसी स्कैमर या फ्रॉड ने ओटीपी भेजा हो और आपने उसी वक्त ये समझा हो कि अरे ये ओटीपी तो मेरे द्वारा ही जनरेटेड है। तो ऐसी भूल ना करें, अक्सर सही बात है ऐसा हो जाता है। मैं इसी के साथ ये भी बोलूंगी कि कई कई बार हम कहते हैं कि अच्छा 9 बजे है, इस वक्त तो हमारे घर पे हमारे हेल्प का आने का टाइम होता है, और इस वक्त तो हमारे लिए हमारी दोस्त इसी वक्त आती है या हमारा ऑटो इसी वक्त आता है, और हम फटाफट दरवाजा खोल देते कि 9 बज गए वही होंगे। पर मान लीजिए किसी एक दिन वो ही नहीं है, तो आप अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखिए और दरवाजा खोलते वक्त हमेशा सावधान रहिए। अज्यूम मत करिए, जैसे ये ओटीपी वाली बात थी ना, ऐसे ही आप अज्यूम मत करिए कि दरवाजे के उस पार भी वो ही इंसान होगा जो रोज आता है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। फिलहाल बहुत प्यारा सा गाना सुनाना अभी मेरे हाथ में है, और ये जो प्यारा सा गाना सुनाने की जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है उसे मैं निभाना चाहती हूँ फटाफट।

अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था और जनता की आवाज को दबाया गया था। उन्होंने कहा कि अतीत की गलतियों का सुधार और उससे वर्तमान पीढ़ी सबक ले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोनभद्र में चौपन थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर किनारे खड़े अज्ञात वाहन में पीछे से एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसमें उसमें सवार दो लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चौपन थाना के उपनिरीक्षक

0: कहां से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
1: शत्रुपा से।
2: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
1: शत्रुपा से।
3: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: 12:04 का समय, और ये समय कह रहा है कि भाई ये शत्रुपा का टाइम हो गया, और शत्रुपा लेकर हाजिर हो चुकी है आपकी अपनी दोस्त शिल्पी 100.7 FM रेनबो पर। 100.7 FM रेनबो बोले तो धड़कन लखनऊ की, और क्योंकि धड़कन है लखनऊ की, इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी धड़कन, हमारी धड़कन और हमारे स्टेशन की धड़कन सब एक दूसरे से कनेक्ट रहे, और हम कंटिन्यूसली आपको एंटरटेन करने का ये सफर यूं ही जारी रखें। सो आज शत्रुपा में हम आपसे क्या बात करेंगे भाई? आज इंटीरियर्स की बात होती है, आज के दिन यानी थर्सडे को हम बात करते हैं इंटीरियर की, और आज इंटीरियर में हम लेकर आए कुछ खास। जानने के लिए बस जुड़े रहिए हमसे कि आज हम खास क्या लेकर आए हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, तौल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: नेचुरल कूलेंट यानी वो इंडोर प्लांट्स जिन्हें आप अपने घर में रख के कुछ अच्छा महसूस कर सकते हैं, यानी कि जो कमरे की हवा है उसको प्योरीफाई महसूस कर सकते हैं और साथ ही कुछ ठंडक एहसास करते हैं। मनी प्लांट की बात करते हैं तो ये एक ऐसी बेल होती है जो बहुत तेजी से बढ़ती है। इसे आप पानी की बॉटल या मिट्टी कहीं भी लगा सकते हैं और मनी प्लांट जो होता है वो हवा को तेजी से फिल्टर करता है। इसकी जो हरी हरी पत्तियां होती हैं वो आंखों को तो सुकून देती हैं, साथ ही कमरे के अंदर जो भी मौजूद पॉल्यूटेड एयर होती है उसको ये बिल्कुल साफ कर देती है। और जब हवा क्लीन होती है तो कमरा बंद होने पर भी आपको घुटन महसूस नहीं होती और थोड़ा थोड़ा ठंडक बनी रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मनी प्लांट आए तो जरूर आप इसे अपने घर में लगाइए। नेचुरल कूलेंट यानी वो इंडोर प्लांट्स जिन्हें आप अपने घर में रख के कुछ अच्छा महसूस कर सकते हैं, यानी कि जो कमरे की हवा है उसको प्योरीफाई महसूस कर सकते हैं और साथ ही कुछ ठंडक एहसास करते हैं। मनी प्लांट की बात करते हैं तो ये एक ऐसी बेल होती है जो बहुत तेजी से बढ़ती है। इसे आप पानी की बॉटल या मिट्टी कहीं भी लगा सकते हैं और मनी प्लांट जो होता है वो हवा को तेजी से फिल्टर करता है। इसकी जो हरी हरी पत्तियां होती हैं वो आंखों को तो सुकून देती हैं, साथ ही कमरे के अंदर जो भी मौजूद पॉल्यूटेड एयर होती है उसको ये बिल्कुल साफ कर देती है। और जब हवा क्लीन होती है तो कमरा बंद होने पर भी आपको घुटन महसूस नहीं होती और थोड़ा थोड़ा ठंडक बनी रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मनी प्लांट आए तो जरूर आप इसे अपने घर में लगाइए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
3: ओ 870-00। समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे?
4: देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
3: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ, 870-001-4242 पर।
5: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

जी दिल धक धक डोल रहा है क्योंकि भाई अब इस प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल समाप्ति की ओर यानी 12:48 हो गए हैं और 48 मिनट यानी कि कुछ ही पल हमारे पास है शत्रुपा प्रोग्राम में आपके पास, लेकिन हमारे पास है आपके पास

जी भाई 12:54 हो गए हैं और आपको बता दें कि भाई ये वक्त अब हमें इजाजत लेने का है क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम भी आपके लिए हमें लेकर आना है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि बोस्टन फर्न जो होता है अपनी घनी और बारीक पत्तियों के लिए जाना जाता है और बोस्टन फर्न से पौधा जो होता है ये वो हवा से गंदगी को एब्जॉर्व करने और नमी को बढ़ाने में बहुत कारगर है और गर्मियों में जब हवा रूखी हो जाती है तो फर्न इसे मॉइस्चराइज करता है, इसे क्लीन करके आपके हर कमरे के कोने में जो है वो क्या कर सकते हैं, आप इसको रख सकते हैं यानी टांग सकते हैं, आपका मन हो बास्केट में टांग लीजिए तो भी बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल अभी तो हम आपसे टाटा बाय बाय कह दें क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम बस कुछ ही पलों में आप इंजॉय करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

चार्मिका हर्ट्स पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और अब समय है आपके अपने कार्यक्रम अनुरोध गीत का। तो चलिए सुनते हैं अनुरोध गीत।

मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति। मॉडल टाउन करनाल से सुधीरान, किरण, संदीप, जगमोहन, प्रजापति भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। मोहल्ला हलवायान श्वेतकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी हिरा कौसर और बरेली से लक्ष्मी देवी, रीता, विनोद, सोनू, अनु और राम प्रसाद शर्मा। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना। आवाज लता मंगेशकर, कुमार शानू की, फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है।

0: और ये गाना आपने सुना फिल्म सोल्जर से। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM।
1: जी का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: और इस समय आपने ट्यून इन किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। प्रोग्राम का नाम है अनुरोध गीत। और ये गाना है फिल्म सलाम नमस्ते से सोनू निगम महालक्ष्मी अय्यर की आवाज। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। ये हमारे श्रोता जो कि संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, अनीता, संजना भारती, पूर्वी रूही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लवकुश नामदेव और इनका पूरा परिवार ललितपुर उत्तर प्रदेश से, नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण मुनीश और राहुल, रिंगने छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा इस गाने को सुनना चाहते हैं। गणेशपुर, गंज, डुंडवारा, एटा, यूपी से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज, गुलफराज और मुस्कान भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। शनि बाजार कस्बा उघैती से प्रभाकर गुप्ता, अवधेश, सचिन, देव, परियाल, कायरव भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल विनीत और

को आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं। ये है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी जोगेशपुरी ट्विंकल डिम्पल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी खुर्जा उत्तर प्रदेश से। तिलक राज अरोड़ा चंदन प्रकाश अंकुश भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। रामगंज खंडवा एमपी से विजय सिंह महोबिया कविता कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती और पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता केशु रधान और तुलसी मस्कीन भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। राजेंद्र गंगवार प्रेमपाल धनवीर सचिन अनुज अनमोल कमलेश तुलाराम गंगवार अंकुश मौर्य राजू चंद्रपाल उल्फत शर्मा बबलू गंगवार वेदपाल संस्वाति और हमारे सभी श्रोता इस गाने को सुनना चाहते हैं जो कि है आपको बता दें वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से पूजा रघुवंशी रेखा नंदिनी रघुवंशी स्वाति देविका चौधरी मालती चौधरी। सुनते हैं आप सभी के अनुरोध का ये गाना फिल्म का नाम तुमको ना भूल पाएंगे अलका याग्निक सोनू निगम की आवाज में।

0: रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। मोहम्मद अली की गाई इस नज्म को सुन रहे थे आप। ट्यून किया है आपने 100.4 एफएम और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम रसरंग। प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, आपका अपना रेडियो दोस्त ब्रजेश। श्रोताओं, आज प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में का विषय है अंत भला तो सब भला। तो अपने जीवन से जुड़ी कोई ऐसा प्रसंग जो इस वाक्य को सार्थक करता हो, इन सब बातों के साथ जुड़िएगा हमारे साथ फोन लाइन पर दोपहर के 2:30 पर। हमारा फोन नंबर है 2517200।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर

0: पर अब नया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
0: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
0: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: 100.4 FM ट्यून किया है आपने। और एक बार आपको फिर से याद दिलाते चलें कि शाम को 4 बजे से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आज का विषय है अंत भला तो सब भला। इस विषय पर आप अपने विचार हमसे साझा कीजिए। दोपहर 2:30 से फोन नंबर है 2571720251720 बरेली के बाहर से फोन करने वाले श्रोता और मोबाइल फोन से कॉल करने वाले श्रोता बरेली का एसटीडी कोड 0581 लगाना ना भूलिएगा।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
0: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
0: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
0: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रोग्राम में लेकर आ रहे हैं ये अमृता कोटलकर के मधुर स्वर में गाई ये गैर फिल्मी गीत।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रसरंग, ट्यून किया है 100.4 FM। श्रोताओं, आपको बताते चले हैं कि शाम को 4 बजे से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में, आज का विषय है अंत भला तो सब भला। और इस विषय में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें फोन करके या फिर हमारी फेसबुक पर की गई पोस्ट पर अपने अनुभव लिखकर

और बेहतर हो कि वो अनुभव कहीं से कॉपी पेस्ट ना हो बल्कि आपके जीवन के अपने अनुभव हो, तो निश्चित रूप से वो कनेक्ट करते हैं हमको और सभी श्रोताओं को। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा, 2:40 तक आप हमें कमेंट कीजिए और 2:30 से आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0581251700। लेकर आ रहे हैं प्रोग्राम में आपके लिए परेश पाहुजा के मधुर स्वर में ये गैर फिल्मी गीत।

0: वेल, अभी सारा के गाए इसी सॉन्ग के साथ प्रोग्राम रसरंग का समय लगभग संपन्न हो चुका है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

फिल्म बाबर का गीत था, आवाज सुधा मल्होत्रा की थी, गीत को साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज बनाई थी रोशन ने।

ये स्वर है मुकेश और सुमन कल्याणपुर की फिल्म का नाम है मेरा घर मेरे बच्चे। रचनाकार हजरत जयपुरी, संगीतकार सरदार मलिक।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से

0: सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम में अब सुनिए प्रेम धवन का लिखा गीत, हंसराज बहल का संगीत, आवाज मुकेश की, और ये फिल्म है मुड़ मुड़ के नातिक।

कार्यक्रम का अगला गीत कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में शमीम जयपुरी का लिखा हुआ, आवाज एक बार फिर मुकेश की, और ये फिल्म का नाम है दिल भी तेरा हम भी तेरे।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वल्लाह क्या बात है। जी हाँ, यह है फिल्म का नाम जिसका दो गाना अब आप सुनेंगे, स्वर आशा भोसले और मोहम्मद रफी के। इस गीत को प्रेम धवन ने लिखा है और संगीत रोशन का है।

0: एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने.
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
2: रवि के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन की रचना, स्वर हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के. फिल्म का नाम है अपना घर.

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन।

0: उसके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी आपको और सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: हाल बहुत अच्छे हैं।
1: देखिए बारिश की बूंदें पड़ गई है मुंबई के सरजमी पर और
2: मुंबई के अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहाँ छुटपुट बारिश की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन बारिश के बाद जब फिर से धूप निकलती है ना तो बारिश का मजा किरकिरा कर देती है क्योंकि उमस बहुत ज्यादा हो जाती है।
1: बस जब बारिश होती है तो हमें इंतजार रहता है कि नदियां भर जाएं, तालाब झरने और कलकल बहने लगे, मतलब ये लगता है कि पानी पानी चारों तरफ दिखाई पड़े। और जब ज्यादा बरसात होती है तो हम परेशान भी होने लगते हैं, तो बस यही उम्मीद करते हैं कि इस बार संतुलित बारिश हो। और आज विशेष तौर पर हम अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाह रहे हैं कि आज एक विशेष दिन है, नाविक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस।
2: जी,
1: तो ये वैसे हमें रोज इस बात का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इस दिवस के बहाने हम लोगों को आगाह करते हैं कि जो हमारे मछुआरे हैं नदियों में जाते हैं, समंदर में जाते हैं, मछलियां पकड़ने जाते हैं
2: जी,
1: तो उनकी सुरक्षा कितनी जरूरी है, कितनी सबकी क्या जिम्मेदारी बनती है, घर परिवार वालों की, समाज की। और दूसरा कि जब आप इस नौका विहार के लिए जाएं और नाविक का काम, मतलब मछुआरों का काम करने जाते हैं, तो पहली शर्त यह है कि तैरना आना चाहिए, कि बिना तैरे नदी में छलांग न लगाएं कि हम
2: वैसे भी जब हम किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं जहां नदी, झील, झरने ऐसी चीजें होती हैं, और वहां पर जब हम नाव की सैर के लिए जाते हैं तो सुरक्षा के तौर पर हमें एक जैकेट दिया जाता है पहनने के लिए कि अगर कभी कुछ दुर्घटना हो तो वहां आप सुरक्षित रहें। लेकिन उसके अलावा एक नाविक इस तरह का मौजूद हमेशा रहता है कि अगर कोई दुर्घटना हो तो अधिकतम लोगों को वो बचा कर ला सके। और बहुत ही उनकी कठिन जिंदगी होती है, उनके बारे में लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए जागरूकता हो, इसीलिए इस तरह के खास दिन जो है वो हम मनाते हैं।
1: और कई बार क्या होता है कि जब नौका विहार के लिए लोग निकलते हैं तो बहुत सारे जो नाविक होते हैं वो नाव पर जहां पर ये सुरक्षा जैकेट नहीं देते हैं, कम होते, दो चार होते हैं और 15-20 लोगों को बिठा देते हैं, तो ये बहुत खतरनाक होता है। जो लोग बैठते हैं कहीं पैसों की बचत के चलते, कहीं समय की बचत के चलते बैठ जाते हैं, उनको ख्याल रखना चाहिए कि आपकी जिंदगी ज्यादा कीमती है, न कि आपके धन की धन। तो ये ध्यान रखें। अक्सर किसी जगह पर जब जहां पर कहीं भीड़ भाड़ इकट्ठी होती तो अमूमन ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि फला जगह पर नौका डूब गई, तो ये ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि इस तरह की आपदाएं अब कम हो रही हैं क्योंकि सरकार की ओर से भी मुहिम चलाई जा रही है कि एक तो सुरक्षा जैकेट बहुत जरूरी कर दिया है और जगह जगह पर उनकी टीम काम करती है, नदियों में जाती रहती है कि कहीं ऐसी दुर्घटना हो तो उन्हें बचाया जा सके।
2: तो इससे जुड़े कोई अगर अनुभव है हमारे सुनने वालों के तो वो हमें लिखकर अवश्य भेजें। इसके अलावा आज जिन विषयों पर बातचीत हम करने वाले हैं, हम बता दें कि अगर आपने घर में कुछ पौधे लगाने के आप शौकीन हैं या आप कोई खेती भी करते हैं तो कीट जो लग जाते हैं, जो कुछ कीड़े हैं ना जो लग जाते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके घरेलू पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो आज तो हम सिर्फ

0: घरेलू पौधों के बारे में बात करने वाले हैं। आपने घर में अपने गार्डन छोटा सा बगीचा बनाया, छत पर एक बगिया बनाई है, तो उनको बचाने के लिए क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे सुनने वाले जरूर हमसे साझा करें। और शादी ब्याह एक ऐसा बहाना होता है जब बहुत सारे सगे संबंधियों से मुलाकात हो जाती है हमारी। कई बार तो हमें शादी में जाते ही इसलिए हैं कि अरे वो मौसी आएंगी, वो मामा आएंगे, वो ताऊ आएंगे, या उनके बच्चों से मुलाकात नहीं हुई होती है तो उनसे मिलना जुलना भी हो
1: और
0: जाएगा।
1: बहुत सारे दोस्त मित्र मिलेंगे तो चलते हैं, और वो जो इकट्ठे टीम बना के
0: जी
1: दल बना के जाना वो एक अलग अनुभव होता है, क्योंकि अमूमन अकेले अकेले ही जाना होता है। लेकिन शादी ब्याह में कई टीम बन जाती है भाई, दफ्तरों से भी जब लोग किसी की
0: जी
1: शादी में जाते हैं तो कहाँ मिले, फला जगह पे मिलते हैं और सब झुंड बना के जाते हैं, तो उसका एक अलग अनुभव होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं के इस मामले में क्या अनुभव है कि वो जब शादी ब्याह में जाते हैं तो उन्हें किस तरह की फीलिंग होती है, कौन सा एहसास होता है, उन एहसासात को यहाँ पर साझा करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
0: और आज होगी कहानी पद्मश्री की। इसके अंतर्गत जिनका परिचय हम करा रहे हैं ये हैं रमीला बेन राय सिंह भाई। तो बातें विस्तार से होंगी, लेकिन ममता जी एक गीत पहले सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: की कहानी की बात कर रहे हैं पद्मश्री के अंतर्गत। ये हैं रमीला बेन राय सिंह भाई, जिनको साल 2022 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा जा चुका है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार बिना स्वार्थ के ये अपनी सेवाएं देती आ रही हैं।
1: और बता दें कि सामाजिक कार्यों में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया और 1 जून 1969 को गुजरात में उनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा 10वीं कक्षा के आगे तो नहीं हो पाई और उनका जहां जन्म हुआ था समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए तो लोग जाने जाते हैं वहां के, लेकिन संसाधनों तक उसकी पहुंच सीमित है, इसलिए उनकी औपचारिक शिक्षा जल्दी ही समाप्त हो गई। ऐसा समुदाय जहां लड़कियों के लिए शिक्षा अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों और कृषि कार्यों के आगे उपेक्षित थी।
0: बिल्कुल, और रमीला बेन ज्ञान की प्यास उनमें थी और कुछ कर दिखाने का जुनून ये भी उनका कम नहीं हुआ। मतलब जिस जहां वो जन्मी पली बड़ी, माहौल चाहे जैसा भी था, लेकिन उनके जुनून को वो रोक नहीं पाया और इसी बात ने उनके जीवन को उद्देश्य दिया और दिशा भी थी। भले ही वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन उनके जीवन के जो अनुभव थे उन्होंने उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बनाया, एक दयालु और दृढ़ निश्चय और परिवर्तन लाने वाली महिला के रूप में उन्हें ढाल दिया। रमीला बेन के जीवन जो था वो बहुत सारी बाधाओं से भरा हुआ था। उनके गांव में उचित शौचालयों का अभाव था, खुले में शौच करने जाना दैनिक जीवन की एक वास्तविकता थी और खास तौर पे अगर महिलाओं की बात करें तो बच्चों के लिए भी बात करें, जो छोटी बच्चियां थीं उनके लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते थे इस चीज से। महिलाओं को शौच के लिए रात होने का इंतजार करना पड़ता था और इससे उनकी सुरक्षा और गरिमा ये भी खतरे में पड़ जाती थी।
1: और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं थी ग्रामीणों को, जो सदियों पुरानी प्रथाओं को छोड़ने के लिए मनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो प्रथाओं में इतने जकड़े होते हैं कि उसे निकालना मुश्किल काम होता है। सबके विरोध का सामना करते हुए उन्हें एक एक परिवार का विश्वास भी जीतना था। उस पर उनकी आर्थिक तंगी ने उनकी चुनौतियों को और बढ़ा दिया, जिससे सामग्री जुटाना और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, जो वो कर रही थी।
0: और वो अपने इस काम के लिए सरकारी सहायता भी चाहती थी, लेकिन यहाँ भी बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, क्योंकि कुछ लोग कई बार ऐसे होते हैं ना जो नहीं चाहते हैं कि ये महिला काम करे। और ये सारी जटिलताएं, इनसे निपटने के लिए बहुत सारा धैर्य और दृढ़ता की जरूरत उन्हें थी। कितनी भी उनकी यात्रा जो चल रही थी उसमें बाधाएं आती गईं, लेकिन वो अडिग रहीं और अपने अटूट हौसले के साथ में आगे बढ़ती रहीं।
1: और रमीला बेन के गांव में परिवर्तन लाने के लक्ष्य की शुरुआत हो चुकी थी। अपने गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले स्वच्छता की समस्या को सुलझाने का प्रयास शुरू किया। अपनी कोशिशों से उन्होंने लोगों को एकजुट किया और 700 से ज्यादा स्वच्छता इकाइयां बनवाई, जिससे कुछ गांव खुले में मुक्त हो गए।
0: लेकिन उन्हें बुनियादी ढांचा तैयार करने के साथ साथ लोगों में जागरूकता भी बढ़ानी थी। जैसा आपने कहा ना कि भाई अपनी पुरानी जो प्रथाएं या रूढ़ियां हैं लोग उनको छोड़ने को तैयार नहीं होते, तो उन्हें खुले में शौच के संबंध में जो जोखिम होते हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए बहुत सारे शैक्षिक अभियान उन्होंने चलाए, जिनमें बहुत सरल और प्रभावशाली संदेश होते थे जिनके जरिए वो ग्रामीणों को समझाती थी तो बात उनके समझ में भी आ जाती थी।
1: और यही नहीं, उन्होंने सामुदायिक बैठकें आयोजित की, स्थानीय नेताओं से संपर्क किया और घर घर जाकर लोगों से निजी तौर पर बातचीत की इस संदर्भ में। और उनका काम केवल स्वच्छता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण में आर्थिक स्वतंत्रता की शक्ति को पहचानते हुए बहुत से स्वयं सहायता समूह स्थापित किए, जिनमें महिलाओं को एक साथ लाकर सामूहिक रूप से बचत करने और छोटे छोटे ऋण लेने और छोटे व्यवसाय शुरू करने में सहायता दी। और ये सहायता समूह ग्रामीण आबादी और सरकारी योजनाओं को सीधे पहुंचाने का माध्यम भी बने।
0: इन सहायता समूहों ने महिलाओं को सिलाई और हस्तशिल्प से लेकर लघु कृषि तक सूक्ष्म उद्योग चलाने के ज्ञान भी दिया। और रमीला बेन ने विधवा कल्याण के लिए भी बहुत सारा काम किया, जिससे महिलाओं को सहायता मिली और वित्तीय सहायता भी मिलती रही। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्होंने घरेलू आय में सुधार किया और महिलाओं में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को भाव जो ये भाव था उसको बढ़ावा दिया।
1: रमीला बेन के प्रयास से गांव में जो स्वच्छता की कमी थी, स्वच्छता की ओर लोग जागरूक हुए और जिससे स्वास्थ्य समस्याएं जो बहुत ज्यादा थी कम हुई, और जो धन का अभाव था वो भी बढ़ा, क्योंकि निजी रूप से उन्होंने आर्थिक संपन्नता की ओर उन्मुख किया लोगों को, ग्रामीण लोगों को, और उनके अथक प्रयास के

0: से आसपास के गांव भी जैसे खुले शौच में जाने की जो प्रथा थी उससे
1: जी
0: मुक्त हुए, और जो बीमारियां थी निश्चित रूप से उससे कमतर हुई बीमारियां, और महिलाओं को सम्मान और निजता का अधिकार भी वापस मिला क्योंकि अब उन्हें अंधेरे में खेतों में जाने की जरूरत नहीं थी।
1: और पहले घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रहने वाली जो महिलाएं थीं, अब वो खुद को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यमी और वित्तीय निर्णय लेने वाली वो बन रही थीं। सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ रही थी, परिवारों तक उनके लाभ भी पहुंचने लगे थे। ये वो लाभ थे जो पहले इनके बारे में जानकारी भी नहीं थी उन लोगों को, और इन गाँवों में नए सिरे से सम्मान और आशा की भावना जागृत हुई। इन गाँवों के बच्चे, खासतौर पर लड़कियाँ, अब बिना डर के अपनी शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित कर पा रही थी।
0: बिल्कुल सही बात है। रमीलाबेन गुजरात में एक समाज सेविका के रूप में उभरी और उनका कहना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, और उनकी सेवा भाव और मेहनत को देखते हुए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। 2002 में पद्मश्री के अलावा उन्हें स्वच्छ भारत अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए
1: ममता जी, मैं यहाँ करेक्शन
0: मिला।
1: करना चाहूंगी, 2022 में उन्हें मिला।
0: 2022, बिल्कुल सही कहा आपने, और 2017 में भी उन्हें पुरस्कृत किया गया स्वच्छ शक्ति पुरस्कार से, और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें नारी तू नारायणी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और उनका नाम दृढ़ता और बदलाव का पर्याय बन गया।
1: और उनकी ये जो कहानी थी, जो कार्य उन्होंने किए, वो बहुत सारी महिलाओं को के लिए आगे बढ़कर अपने जीवन की बागडोर संभालने के लिए प्रेरित करते थे। बहुत सारे गांवों को स्वच्छ और सशक्त बनाने के लिए जो उनका जुनून था, इसने उन्हें पहचान भी दिलाई और सम्मान भी दिलाया। और रमीला बेन अब तक गुजरात के करीब करीब 700 से ज्यादा शौचालय वहां पर वो बनवा चुकी हैं या मदद की है उन्होंने, हम ऐसा कह सकते हैं। और उनकी कहानी अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है और ये साबित करती है कि एक बदलाव छोटा से छोटा कदम भी अगर है, अगर अटूट संकल्प है, तो वो उसी से शुरुआत उसकी होती है।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर एक गाना सुनवाते हैं सखियों और सखाओं को।

0: चंचल जी, देखिए शादी ब्याह केवल दो लोगों का मिलना नहीं होता, मिलन नहीं होता, बल्कि बिछड़े हुए रिश्तों और परिवारों को फिर से जोड़ने का सुंदर अवसर भी होता है। कहा जाता है कि समाज के दो परिवार का मिलन होता है। घर में जब शादी का माहौल होता है तो चारों तरफ रोशनी, संगीत और खुशियों की गूंज छाई रहती है। ऐसे में जब रिश्तेदारों का आगमन होता है, जब झुंड के झुंड
1: जी
0: रिश्तेदार आते हैं कि वो फलाने वाली बुआ आ रही
1: हाँ।
0: हैं, फलानी चाची आ रही हैं,
1: और
0: फलानी जगह
1: कोई
0: की
1: मतवाला
0: भाभी
1: आया
0: आ
1: मेरे द्वारे ही तो होता है
0: और ये भी कहा जाता है कि वो जैसे मड़वा वाली भाभी,
1: हाँ
0: पुरवा वाली भाभी और वो प्रतापगढ़ वाली, ऐसे ऐसे जगह
1: हाँ
0: जयपुर वाली, तो ये बड़ा
1: जयपुर वाली
0: लग,
1: चाची,
0: हाँ।
1: आगरा वाले
0: और
1: ताऊ
0: कई बार
1: जी
0: तो भाभी और चाची का वो न कह के बल्कि सीधे सीधे वो जयपुर वाली आ रही हैं, देखिए
1: हाँ
0: ना राजस्थान वाली आ रही है, तो उससे भी क्लियर हो जाता है कि कौन आ रहे हैं। तो ये जो शादी ब्याह में जमावड़ा होता है, इसी का आनंद अलग होता है।
1: और एक बात और ममता जी, आजकल सिर्फ शादी ब्याह ही रह गए हैं जहां हम अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलते हैं। यूं ऑनलाइन बात करना, फोन पर बात करना, और एक जब इस तरह से हम मिलते हैं बहुत लंबे समय के बाद, आमने सामने से एक दूसरे को देखते हैं, तब उस मुलाकात का मजा बहुत कहते हैं कि अलग होता है। और इसके अलावा पहले हम अपने बहुत दूर दूर के रिश्तेदारों को भी जाना करते थे, लेकिन आजकल ये चीजें बड़ी संकुचित होती जा रही हैं। हमारे बच्चे कई बार तो हमारी जो हमारी सगे बहनों को तो जानेंगे, लेकिन अगर मेरी चाचा की लड़की है या मेरे ताऊ जी के लड़के हैं तो वो उनको नहीं पहचानते, क्योंकि उनका मिलना जुलना ही बहुत सीमित हो गया है। जब कोई शादी ब्याह में जाने की बात आती है तो हम भाई बच्चों की परीक्षाएं हैं, अभी उनके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनका असाइनमेंट है, इनके चलते बच्चे जा ही नहीं पाते, या बच्चों का भी सोच जिस तरह से हो रही है वो एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से बड़े लोग हर माहौल में एकजुट होकर रह जाते हैं, बच्चे इस बहाने से भी जाना थोड़ा सा
0: उनको अपना कमरा चाहिए, उनको अपना
1: जी
0: बाथरूम चाहिए और उनको अपने खाने पीने की जो टाइमिंग्स है उसी
1: जी
0: टाइम पे नाश्ता चाहिए। वही दायरा, उसी दायरे में सिमट कर रह गए। और बच्चे पूछते भी हैं कि कौन से वाले मामा, कौन सी वाली मामी, कौन सी
1: हाँ
0: वाली चाची, कौन सी वाली बुआ, तो उनको पता ही नहीं है कि फोन पर क्योंकि बात होती है, मिलना जुलना हो ही नहीं पाता। तो शादी के बहाने बच्चों को भी ले जाना चाहिए शादी समारोह में। और पढ़ाई की जहां तक बात है कि पढ़ाई पे
1: जी
0: विघ्न आता तो किताब कॉपी लेकर जा सकते हैं, अगर दूसरे शहर में
1: अगर
0: शादी है
1: कोई
0: तो।
1: बहुत जरूरी ही ऐसा है कि परीक्षाएं ही चल रही हैं जिन्हें आप बिल्कुल अनसुना अनदेखा नहीं कर सकते हैं, तब आप नहीं ले जा रहे हैं बच्चों को तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है फिर भी अपनी सहूलियत या सुविधाओं के वजह से बच्चे मना कर रहे हैं, तो थोड़ा जिद करके बच्चों को जरूर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि एक समय पर आकर बच्चे रिश्तेदारों को पहचानेंगे ही नहीं और वो रिश्ते कहीं आकर सिमट कर रह जाएंगे। उनके लिए रिश्ते का मतलब होगा सिर्फ उनके स्कूल कॉलेज के दोस्त या जहां उनके सहकर्मी हैं वो।
0: अच्छा, अब जरा ये देख लें कि हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं इस बारे
1: जी
0: में। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि शादी ब्याह त्योहार किसी पारिवारिक आयोजन के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात का अवसर मिलता है। ऐसी मुलाकातें रिश्तों में अपनापन और मधुरता बढ़ाती हैं। परिवार के लोग एक दूसरे का हालचाल जान पाते हैं, सुख दुख साझा करते हैं और पुराने दिनों की यादें ताजा करते हैं। आज की व्यस्त जीवन शैली में जब सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तब ऐसे अवसर रिश्तों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। जब इकट्ठे होते हैं फोन पर वो चर्चा कैसे हो सकती है?
1: बिल्कुल सही बात है
0: हालांकि कई बार ये होता है कि एक साथ कन्वर्सेशन के लिए कई लोग फोन, मतलब कई फोन एक साथ मिला लिए जाते हैं और बात करते हैं, ग्रुप कॉल होता है, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं आता जो आमने सामने बैठ के छेड़छाड़ करके एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, धौल धप्पा करते हैं। उसमें जो आनंद आता है, पुरानी बातें ताजा करते हैं कि फलानी भाभी ने एक बार ये कहा था, और फिर उस पे जो ठहाके लगते हैं जोरदार, और वो ठहाके कमरे में ही नहीं आंगन तक, बरांडे तक गूंजते हैं,
1: बिल्कुल,
0: उसकी
1: बहुत सारी
0: बात अलग
1: छेड़छाड़
0: होती है।
1: होती है और बहुत लंबे लंबे समय के बाद जब अब पुराने रिश्तेदारों से हमारी मुलाकात होती है और जब हम उनसे मिलते हैं ना, तो एक बात तो बड़ी कॉमन सी होती है जो हर कोई कहेगा, अरे तुम तो बड़े दिन बाद मिले हो, कितना छोटा सा

0: देखा था तुमको, कितने
1: बड़ा हो
0: बड़े हो
1: गया,
0: गए हो।
1: बड़ा हो गया हमारा बेटा,
0: जी
1: बड़ी हो गई हमारी बिटिया। तो ये सब होता है, और समय का अंतराल कई बार कुछ चीजों को विस्मृत कर देता है, जो जब आप मेलजोल के साथ वो बातें ताजा हो
0: कई बार
1: जाती
0: कुछ
1: हैं।
0: कटाक्ष भी होते हैं, अरे बड़ी दुबली हो गई हो, क्या ससुराल वाले खाने को नहीं देते, अगर थोड़ा वजन बढ़ गया कितना खाती हो भाई, ज्यादा खिलाते हैं ससुराल वाले, तो इस तरह के कटाक्ष
1: ज्यादा अमीर हो
0: छेड़छाड़।
1: गई हो, ये भी
0: हाँ
1: होता है। अब ज्यादा बातें ना हो जाए इसका ख्याल रखते हैं, एक
0: जी
1: गाना सुनवाते हैं।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है और ट्यून किया है आपने 100.4 एफएम। सुन रहे थे आप विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे थे। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 3:30 हो रहे हैं और श्रोताओं आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रोल, नारायणी सिंह रोल, नोमेश सिंह रोल, नेहा और वान्या सिंह रोल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहां पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियाँ इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई। ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की।

0: 8800044559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधे का जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि, भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
1: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुईं, जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
2: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधे का।
1: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
2: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: मास्टर जी।
1: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। गिजू, तुम सुनाओ।
2: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
1: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
2: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
1: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
2: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
1: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ, सामने।
2: जी।

0: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
1: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
2: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
3: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा, समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
1: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
2: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
1: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
2: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
1: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
2: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
4: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।

0: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
1: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
2: शिक्षक बंधु कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं हैं।

0: से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं हैं। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
1: अपनी साहित्य कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जितेश जी नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो जितेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
2: जी,
1: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं।
2: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियाँ हैं
1: जी,
2: लेकिन कुछ खास है जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
1: जी।
2: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
1: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
2: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
1: युगल और सहभागिता पद्धति
2: जी। इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
1: जी,
2: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
2: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
1: हाँ हाँ, बताइए।
2: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति
2: जी। इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
1: अच्छा।
2: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
1: जी,
2: वो बहुत ही शानदार है।
1: अच्छा
2: जी।
1: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
3: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
1: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
3: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
1: गिजू भाई के अनुसार,
0: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
1: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो।

0: हो गया।
1: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं शाम के ठीक 4 और श्रोताओं अब समय हो गया है प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र, और श्रोताओं हमारा आज का कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ लेकर हाजिर हूं मैं, आपका अपना रेडियो दोस्त ब्रजेश। और कार्यक्रम में आज का विषय है अंत भला तो सब भला। वैसे श्रोताओं कहते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मुलिया कोई, जो मैं आप देखा मुझसे बुरा ना कोई, यानी कि इसमें मुझसे का जो संदर्भ कवि ने लेखक ने रखा है वो स्वयं के अहंकार ईगो और इन सारी चीजों को लेकर रखा है कि

0: हम कई बार दूसरे में जो कमियां देखने का प्रयास करते हैं वो कहीं ना कहीं अगर हम स्वमंथन करें, आत्ममंथन करें, तो वो कमियां हम खुद में पाएंगे। और कहा भी जाता है ना कि जैसी नजर वैसे नजारे, जिस रंग का हम आंखों पर चश्मा लगाएंगे हमको समाज और बाहर वैसा ही दिखाई देगा। तो सदैव इस सुविचार के साथ आगे बढ़ें कि सब में अच्छाइयां देखें, सब में पॉजिटिविटी देखें। और आज का हमारा जो विषय है अंत भला तो सब भला, इसका अर्थ ये है कि हम सबके जीवन में न जाने कितनी ही ऐसी अड़चने आती हैं, कितने ही ऐसे कृत्य होते हैं, कार्य होते हैं जो हम लोग बड़ी मेहनत से, जीतोड़ लगन से करते हैं और कई बार उसमें बाधाएं आती हैं और फाइनली कई बार वो हो भी जाता है और कई बार नहीं भी होता है, लेकिन फाइनली अंत में हम लोग यही कह के दिलासा देते हैं खुद को कि अंत भला तो सब भला। तो इसी सूत्र के साथ शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और इन सब बातों पर हम जानेंगे आपके और हम सबके जीवन से जुड़े कुछ प्रसंगों को। तो आइए देखते हैं फोन लाइन पर हमारे साथ कौन से हैं श्रोता। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, आपकी बात आकाशवाणी के साथ में, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ सर, हम जिला बदायूं ग्राम नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कचेरिया बोल रहे हैं।
0: मुन्ना सिंह जी, आपका एक बार फिर से स्वागत, क्योंकि आपका फोन लग गया है फिर से। रोज प्रतिदिन नियम अनुसार आपका फोन लग रहा है और ये भी अपने आप में एक लगन को प्रदर्शित करता है कि कितनी लगन से आप सुनते हैं हमें। तो मुन्ना सिंह जी, कार्यक्रम में आज का विषय है अंत भला तो सब भला, यानी कि इस बात के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन अगर आपके भी जीवन में ऐसा कुछ, कोई घटना, कोई बात हुई हो कि लगा आपको कि चलो यार अंत तो भला तो सब भला, तो हमारे साथ या हमारे श्रोताओं के साथ आप साझा करें अपने विचार।
1: हम तो यही चाहते हैं कि सबका भला हो, उसके बाद में अपना भला हो।
0: अच्छा, बहुत अच्छी सोच है आपकी।
1: परोपकार से बढ़कर कार्य किया, मनुष्य का कर्तव्य परोपकार है, वैसे बता रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परहित सरिस धर्म नहीं कोई।
1: जी हाँ, तो यही चाहते हैं कि सबका भला, उसके बाद में अपना भला हो।
0: लेकिन मुन्ना सिंह जी, ये तो आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन विषय तो इससे कुछ और है। विषय है अंत भला तो सब भला।
1: जी हाँ।
0: तो इसका क्या अर्थ समझते हैं, क्या लगता है आपको?
1: इसका अर्थ ये लगता है कि शांत से बैठ जाओ तो उसके बाद में उसका फल, बहुत अच्छा फल मिलेगा।
0: अच्छा, हालांकि अभी भी इसका ये अर्थ नहीं हुआ।
1: अपनी बीती बात आपको बताऊं मैं।
0: हाँ।
1: मैंने ट्रैक्टर लिया था सर।
0: जी।
1: और उनके 10 ट्रैक्टर बिक जाने के बाद इनाम आता है सिर्फ एक ट्रैक्टर के लिए।
0: अच्छा।
1: तो मुझे बुलाया गया, 10 ग्राहक भी गई थी, तो उन्होंने 10 लिफाफे डाल दिए थे, बोले कि नंबर से उठाते रहो।
0: हाँ।
1: तो मैंने कहा सबसे बाद में मैं उठाऊंगा, सबको उठा लेने दूँ।
0: अच्छा।
1: तो सबने उठा लिया, यानी 9 लिफाफे उठ गए, 10वां लिफाफा उठाया, बुम, हमने उठाया।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने ये कहा कि सर, ये उन्होंने पूछा जो इनाम निकलेगा 51,000 का, इसका तुम क्या करोगे? तो किसी ने कहा हम रोटा बेटर लेंगे, किसी ने कहा कि हम ट्राली देंगे, किसी ने कहा कि तुम्हें क्या मतलब कुछ भी दें। हमसे पूछा तुम क्या करो, हमने भाई पहले तो हम इसका 10वां भाग दान करेंगे, सबका भला करेंगे।
0: क्या बात है।
1: और जो शेष पैसा बचा उसका हम लेंगे रोटा बेटर। ठीक है। तो जब लिफाफे खोलो सब, जब सबने लिफाफे खोले गए तो हमारे लिफाफे में ही इनाम निकला 51,000 का सर।
0: आहा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
1: तो हम शांत से बैठे हैं, 10वां लिफाफा हमने उठाया, आज हमने तो उठा लेने दो पहले सबके लिए।
0: हाँ, तो अंत भला तो सब भला,
1: सब भला है।
0: तो मुन्ना सिंह जी, आपने हमें फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: गीत एक है बहुत पुराना, हजार बातें कहे जमाना, मेरी वफा पे यकीन रखना।
0: हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो,
1: हेलो
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। हमारे किस श्रोता से बात हो रही है?
1: जी भैया, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेसरा छत्तीसगढ़।
0: योगेश जांगड़े जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया है भैया, काफी दिनों के बाद जुड़ रहे हैं।
0: अरे अरे, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो योगेश जी, कार्यक्रम में आज का विषय है अंत भला तो सब भला। क्या समझते हैं योगेश जी, या इस विषय से जुड़ी आपकी कोई निजी बात हो, कोई प्रसंग हो तो आप हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ साझा कीजिए।
1: अब इसका सार तो यही कह सकते हैं भैया, काफी हद तक ये हमारे प्रयत्न और मेहनत से जुड़ा हुआ है। हम जितना भी प्रयास करते हैं, चाहे जैसे हमारा मूल काम खेती बाड़ी का है, तो
0: जी
1: जब तक हम फसल को काट नहीं लेंगे, अपने घर ला नहीं लेंगे,
0: जी
1: तब तक हम मतलब उस क्षेत्र में अधूरे रहेंगे।
0: जी
1: बीच में हम जितना मेहनत करें, शुरुआत में जितना मेहनत करें, अंत में भी उस मेहनत को उसी रूप में बरकरार रखना होगा।
0: बिल्कुल
1: और यह बात जीवन के हर क्षेत्र में मतलब लागू होता है।
0: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि जीवन के
1: और
0: हर
1: अगर
0: क्षेत्र
1: बीच
0: में,
1: में हम किसी भी कार्य को छोड़ देते हैं तो फिर उस कार्य का भरोसा ही नहीं
0: बिल्कुल
1: करते।
0: सही बात है, हर क्षेत्र में हमें अंत तक मेहनत करते रहने होता है। और कई बार अपनी सारी मेहनत करने के बाद भी, अपना सब कुछ करने के, सारा 100% देने के बाद भी हमें वैसे परिणाम नहीं मिल पाते जैसा हम सोचते हैं, या फिर लगता है कि वैसे परिणाम नहीं मिलेंगे जैसे हम सोच रहे हैं, और तब तक अंत में
1: जी
0: मिल भी जाते हैं। तो कह भी देता है आदमी कि चलो अंत भला तो
1: सब
0: सब भला।
1: भला।
0: तो योगेश जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। फिलहाल आपने हमें आज फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: गाना आप सुनवा देंगे भैया, फिल्म है साजन का घर और गीत के बोल है नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: जी नमस्कार, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहां से?
1: ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी बोल रहा हूँ।
0: लाल मोहम्मद अंसारी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी शुक्रिया सर।
0: बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: बस एकदम फर्स्ट बढ़िया है।
0: तो लाल मोहम्मद जी, आज का हमारा विषय है अंत भला तो सब भला। तो इस वाक्य से सबसे पहले तो आप क्या समझते हैं, और दूसरी बात कि आपके जीवन में ऐसा कोई प्रसंग हो, आपके जीवन में जुड़ी कोई बात हो ऐसी जिसके निपटने के बाद, जिसके संपन्न होने के बाद आपने कहा हो चलो यार अंत भला तो सब भला?
1: जी सर, क्योंकि आज का विषय बहुत अच्छा है जी। क्योंकि कहा जाता है कि किसी चीज का जो अंत होता है, अगर सुखदायी होता है, अच्छा होता है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। क्योंकि इस काफी संघर्ष के बाद, काफी परेशानियों के बाद अगर उसको राहत मिलती है तो अपने आप में बहुत अच्छा महसूस करता है। और रही जीवन की घटनाओं के बारे में, तो बहुत सारी घटनाएं सर होती रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम कर रहा है आदमी, और पूरा काम करते करते करते करते अंत तक वो ये समझ लेता है कि शायद अब उसको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जब उसको सफलता मिलती है, जब उसका अंत होता है, अब वो उस काम में सफल होता है व्यक्ति, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो तो उस खुशी को वही महसूस कर सकता है जिसने हारी हुई जिंदगी को जीता हो।
0: मतलब कोई काम एकदम अटकते अटकते हो जाए, या अटक ही जाए, फिर निकल जाए समय, लेकिन फिर हो जाए, या फिर ना भी हो तो भी, कहते हैं आदमी अपने मन को समझाने के लिए कई बार आदमी कह देता है कि अंत भला तो सब।
1: हाँ, कि चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। हाँ। मतलब हो सकता है हमारे हित में अच्छा हुआ। हाँ। अगर उसके हित में काम ना भी हुआ हो तो वो व्यक्ति ये कह देता है मन को बहलाने के लिए, चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, मतलब
0: जी जी
1: भला तो ठीक हुआ। लेकिन मतलब कहने का मतलब है, जीवन में किसी के मतलब बहुत सारे लोग हैं।

0: और मतलब संघर्ष करने के बाद जब जीत हासिल करते हैं तो उसकी बात ही निराली होती है।
1: बिल्कुल सही बात है। तो लाल मोहम्मद जी, अच्छी बात की आपने, आज आपने हमें फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे?
0: ये गाना सुनवा दीजिए, फिल्म का नाम है मोहब्बतें, इसका गाना है हमको हमी से चुरा लो, ये जी सुनवा दीजिए।
1: हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता हमसे जुड़े हैं?
1: जी प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम पछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: जी थैंक यू सो मच सर, कैसे हैं आप?
0: हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: प्रेम जी, आपसे बात करके हमें भी बहुत खुशी हो रही है। प्रेम जी, उज्जैन के मौसम के क्या मिजाज है?
1: जी काफी अच्छा मौसम हो चुका है, कल भी बारिश हुई थी, परसों भी बारिश हुई है यहाँ पे।
0: अच्छा, और प्रेम
1: जी ठंडा माहौल हो गया है पूरा और किसानों में काफी उत्साह है सर यहाँ पर।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो प्रेम जी क्या करते हैं आप?
1: सर मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और एक भजन गायक भी हूँ।
0: आहा, क्या बात है, क्या बात है। तो दो लाइनें अगर किसी भजन की हो जाए तो आनंद आ जाए।
1: जी बिल्कुल, सुना दो सर मैं आपको दो लाइन भगवान हनुमान जी का।
0: जी
1: भजन।
0: जी जी

0: बहुत सुंदर,
1: जी सर।
0: बहुत सुंदर प्रेम जी, अच्छी बड़ा ही सुंदर भजन आपने गाया। और प्रेम जी, आज का विषय हमारा है अंत भला तो सब भला। क्या समझते हैं प्रेम जी इस विषय से?
1: जी बिल्कुल बताना चाहेंगे सर। अंत भला तो सब भला, लेकिन कुछ समस्या होती है और समस्या के साथ में कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन जब मुश्किल आती है, समस्या आती है, तो ठंडे दिमाग से उसका निराकरण करे, गुस्सा ना करे और सामने वालों को समझाए और उनकी बातें भी समझाए। जैसे जैसे समय निकल जाएगा और अपना जब आएगा ना समय, अंत आएगा, तो वो अपना अच्छा ही रहेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला।
0: बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि हम अपने बहुत सारे श्रोताओं से आज बात कर रहे हैं और वो इन सब बातों पे एथिकल बातें कर रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ अपने जीवन से जुड़ी एक घटना। इस विषय से हमको और हम सभी श्रोताओं को क्या समझना चाहिए कि एक बार की बात है कि मेरे को ट्रेन पकड़नी थी और मैं अपने घर से निकला, थोड़ा सा लेट हो गया मेरे को। अब जब मैं निकला तो एक बहुत लंबा जाम लगा था, करीब 100 मीटर का, लगभग लगभग 50 मीटर से ज्यादा का था। तो मैं अपने जो सबसे पीछे वाले ऑटो में था, फिर मुझे लगा जो ऑटो मैंने रिजर्व किया था, मुझे लगा कि ये तो जाम जब तक वहां पहुंचेगा जहां से वो दूसरे तरफ है तब तक तो काफी देर हो जाएगा, मेरी ट्रेन छूट सकती है। मैं उतरा, अपने ऑटो को छोड़ दिया और मैं निकला और पैदल पैदल पैदल पैदल जो जाम का दूसरा छोर था वहां पहुंच गया। वहां एक शेयरिंग ऑटो में बैठ गया और रेलवे स्टेशन पहुंचा, भागते दौड़ते दौड़ते पहुंचा और देखा कि मेरी ट्रेन जो है वो स्टेशन पे खड़ी थी और सिग्नल हो गया था, उसका हॉर्न हो गया था और वो ट्रेन चल भी दी थी।

0: और मैं दौड़ते दौड़ते एक डिब्बे में चढ़ गया। तो मेरे को लगा, तब मैं जैसे ही उस डिब्बे में चढ़ा तो मैंने थैंक गॉड बोला, भगवान को शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा चलो अंत भला तो सब
1: भला।
0: तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हम सभी के जीवन में इस प्रकार की कोई ना कोई घटना है, न सिर्फ ट्रेन पकड़ने की बात हो बल्कि जीवन में हर क्षेत्र में। कोई किसान है तो वो बीज के लिए तड़पता है, इधर करता है उधर करता है, खाद के लिए लाइन लगा हुआ है, यहाँ गया वहां गया वहां गया नहीं मिला, लेकिन फाइनली आता है उसे किसी जगह से मिल गया तो कहता है अंत भला तो सब भला।
1: ऐसा होता है सर, कई बार जीवन में होता है
0: जी,
1: लेकिन समस्या आती है ना, तो मेरा कहना,
0: हाँ बिल्कुल सही बात है, आपका रुझान भी अपनी जगह ठीक था, बिल्कुल ठीक था। तो आपने हमें फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे
1: जी? आप कोई भी एक भक्ति रचना सुनवा दीजिएगा मुझे।
0: बिल्कुल सुनवाते हैं हम आपको, और हमारी हम सबकी पसंद का ये भक्ति गीत।

0: लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। सर
1: लोकेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी प्रेम जी से उज्जैन में बात हो रही थी और अभी लोकेंद्र जी से भी बात हो गई, क्या बात है।
0: बिल्कुल सर जी, ये तो एक रेडियो के माध्यम से एक दूसरे मित्र एक दूसरे के माध्यम से जुड़े हुए हैं और आपका प्रोग्राम सुनते हैं,
1: बहुत सुंदर
0: तो बात है। मित्रों से भी बात हो जाती है हमारी आपके प्रोग्राम के जरिए, क्योंकि वो भी हमारे पास के रहने वाले हैं।
1: जी जी जी, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, हम लोगों को भी कि आप इतनी दूर से हमें सुनते हैं, और आपका बहुत बहुत अनेक अनेक आभार। तो लोकेंद्र जी, कार्यक्रम में आज का विषय है अंत भला तो सब भला। लोकेंद्र जी के जीवन की एक कोई ऐसी घटना बताइए जो बड़ी मुश्किलों से हल हुई हो और फाइनली आपने कहा हो कि अंत भला तो सब भला।
0: सर जी देखिए, सर जी मैं हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है मेरा
1: जी।
0: मैं काफी सालों से मतलब दूसरे के यहाँ पर मेरा काम कर रहा था, खुद का व्यवसाय नहीं था मेरे पास में, मैं सेल्फ डिपेंड अपने पैरों पर नहीं खड़ा था।
1: अच्छा।
0: पर फिर मैंने अपने सैलून को नया मतलब ढूंढने के लिए, दुकान ढूंढने के लिए मैंने काफी प्रयास करे, शहर के अंदर काफी जगह में घुमा। मैंने एक मेरे दोस्त भी थे साथ में इस प्रयास के साथ में, तो हम दोनों मिलकर दुकान ढूंढने की कोशिश करते थे कि मुझे मेरे पैरों पर खड़े होने के लिए एक अच्छी सी दुकान मिल जाए। और साथ में मेरे वो भाई का भी बहुत सहयोग रहा जिन्होंने मुझे ये काम के लिए, हम दोनों साथ में निकलते थे तो वो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है मेरे साथ में। और मेरा आज 20 साल से इसी बिजनेस को कर रहा हूँ, मेरे पैरों पर मैं खड़ा हूँ और अपना घर परिवार चला रहा हूँ सर।
1: अच्छा, तो कुल मिलाकर के अंत भला तो सब भला, यानी इतनी मेहनत के बाद जो कुछ भी आपने पाया वो उसका नतीजा ही है, है ना।
0: बिल्कुल नतीजा भी है। और सर जी अभी आपने देखा था कुछ वर्षों से कोरोना महामारी आई
1: जी, जी,
0: जी। अंदर बहुत से जितने भी जो डॉक्टर हैं, बस की सेवा देने वाले हैं, पुलिस विभाग है, जितने भी हैं सभी ने बहुत ही मतलब लोगों का भला किया है उस समय के अंदर, क्योंकि वो स्थिति ऐसी थी कि उसको हम भूल नहीं सकते कभी भी जिंदगी के अंदर। तो वो उन सभी भाइयों का बहुत सहयोग रहा है जितने भी इस कार्यरत में लगे हुए थे, उनको भी मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ सर जी।
1: बहुत सुंदर विचार आपके लोकेंद्र जी, आपने हमें फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे
0: सर जी? एक प्रदीप जी का गीत है, बड़नगर के रहने वाले हैं, दुखसुरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम।
1: बिल्कुल, हम सुनवाते हैं आपको और हम सभी श्रोताओं को ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहां से?
1: रोजाना आपका नियमित श्रोता धीरज जबारी बात कर रहा है गुजरात।
0: जी धीरज जी, कहां से फोन किया आपने हमें?
1: गुजरात से।
0: गुजरात, क्या बात है! तो कैसा मिजाज है गुजरात का इस समय?
1: मिजाज तो अभी हम बारिश का इंतजार कर रहे हैं लेकिन बारिश आती नहीं सर।
0: अच्छा,
1: महाराष्ट्र में दस्तक दिया है, अभी यहाँ कब देता है पता नहीं सर।
0: चलिए, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही आपके यहाँ भी दस्तक दे मॉनसून और सब सकुशल रहे। तो धीरज जी, क्या करते हैं?
1: मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और समय मिलने पर आकाशवाणी बरेली से कभी कभार जुटता हूँ, चाहे आपकी पसंद कार्यक्रम हो या फिर आपकी बात कार्यक्रम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी, इतनी दूर से हमें सुनने के लिए, इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। धीरज जी, आज का हमारा विषय है अंत भला तो सब भला। तो धीरज जी के जीवन में जुड़ी एक ऐसी कोई घटना जिसके बाद बड़ी मुश्किलों से जो हल हुई हो या आपने हल करने की कोशिश की हो और अंत में हल हो भी गई हो और अंत में आपने आके कहा हो चलो भाई अंत भला तो सब भला।
1: बिल्कुल सर, ऐसे तो कई वाक्य बन गए हैं
0: जी,
1: लेकिन एक जगह पर अगर पानी की किल्लत थी तो हमने थोड़ा, हमारी एक थोड़ी भूल थी तो हमने हाथ भी धोया था, फिर हमको एहसास हुआ कि जहाँ पीने का पानी है वहाँ हाथ नहीं धोना चाहिए। फिर उसके बाद के हमने तय कर लिया है जहाँ भी जाए तो हम जहाँ पीने का पानी वहाँ हाथ नहीं धोते, वहाँ ग्लास होता है तो ग्लास से पानी पीना चाहिए। और फिर उसके बाद प्रण कर लिया कि ऐसी कोई ऐसा काम नहीं करना है किसी को, किसी को आहत रूप हो। तो ऐसे तो कई वाक्य होते हैं सर जीवन में, लेकिन ऐसे वाक्य एक आध दो होते हैं जो जीवन को कुछ प्रेरक बनते हैं सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, अंत भला तो सब भला। आपने एक बार गलती से धो लिया हाथ और उसके बाद ये प्रण किया कि भाई अब आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे। और देखिए, हम सब 140 करोड़ का देश है, आप हाथ धोने की बात कर रहे हैं धीरज जी, हम यहाँ अपने कार्यक्रमों के माध्यम से बताते हैं लोग वो पानी जो पीने योग्य है उससे लाइव मोटर चला करके घंटों अपनी गाड़ियां धोते हैं, आप तो सिर्फ हाथ धोते हैं। कितनी दुख की बात है कि भारत के ऐसे विभिन्न प्रांत हैं जो तरसते हैं पानी से, जिनके पास पीने को पानी नहीं है, जिस साल में मानसून के पानी को सहेज के रखते हैं, बस बारिश के जल को सहेज के रखते हैं तब वो उसका उपयोग करते हैं, और वहीं कुछ प्रांत ऐसे हैं जो बिल्कुल भी लापरवाही से जल को जो है उसका दोहन करते हैं। तो एक बहुत सुंदर संदेश भी छिपा है आपकी जीवन से जुड़ी।
1: इसमें आपकी बात से मैं एक बात और जोड़ दूं कि पहले एक डोया रखते थे मटके के बाजू में, तो वो डोए से ग्लास में पानी
0: निकालते थे,
1: तो ये ग्लास कभी अछूता नहीं रहता था
0: बिल्कुल,
1: और आराम से इंसान पानी पी सकता था। लेकिन समय बदलता है, इंसान भी बदलता है, लेकिन अभी तक गाँव में अभी प्यार पानी की कीमत है ग्रामजनों को,
0: बिल्कुल
1: शहरों में थोड़ी कम है सर।
0: बिल्कुल सही बात है, उनके पास साधन संपन्न है, मोटर है, पाइपलाइन है, तो लोग उसको, लेकिन हाँ हमें जल की कीमत बहुत जल्दी पहचाननी होगी, नहीं तो जल ने अगर अपनी कीमत हमको पहचानने पर मजबूर किया तो वो हमारे लिए बहुत भयानक होगा। ये सुंदर संदेश के साथ हमें बताइए धीरज जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: गीत सुनना है कुर्बानी फिल्म का, वो गाना है ना आप जैसा कोई नहीं, मेरे ख्याल से
0: आपको सुनवाते हैं हम आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओ, आइए अब कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। ये कमेंट हमें भेजा है शादुल सर राजस्थान से, राम कुमार रिवाल्ड और चंद्रकला रिवाल्ड ने। और आप कहते हैं अंत भला तो सब भला, यदि किसी काम का आखिरी परिणाम या अंजाम अच्छा निकलता है तो फिर बीच में आई परेशानियां, गलतियां या संघर्ष मायने नहीं रखता। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। संकट कष्ट आते हैं लेकिन हिम्मत रखनी चाहिए, और हिम्मत रखेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। हमें ये बात हमसे साझा की है प्रवीण चौहान जी ने, और कहते हैं शुरुआत अच्छी रही नहीं तो अगर अंत में सब अच्छा हो जाए तो शुरुआती असफलता कोई मायने नहीं रखती, और अंत भला तो सब भला। ये इन्हीं बात के साथ इन्होंने अपनी बात की है, और आइए हम सब सुनते हैं आपकी और हम सबकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो,
1: हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहां से?
0: आपका शुभ चिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से संवाद कर रहा हूँ। बोलिए।
1: बाहुबली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बाहुबली जी, आज कार्यक्रम का विषय है अंत भला तो सब भला। तो बाहुबली जी के जीवन में ऐसी कोई घटना का जिक्र हमारे साथ कीजिए कि उससे हमें और हमारे श्रोताओं को ये कुछ सीख मिले, या उससे प्रदर्शित हो कि बाहुबली ने उसके बाद कहा हो अंत भला तो सब भला।
0: जी, जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं कि जिससे छुटकारा पाने के लिए हमें बहुत प्रयास और कोशिश करना पड़ता है। जब उसका अंत में सफलता प्राप्त होती है तो बहुत ही सुकून और एक मन में आनंद की लहर उमड़ पड़ती है। मगर यह विधि का नियम है कि हर बार तुम कोशिश करने के उपरांत भी सफल नहीं हुए तो मगर कोशिश जारी रखना चाहिए, ताकि अंत में तुम्हारा जो ध्येय है, जो उद्दिष्ट है, जहाँ तुमको सफलता हासिल करना है, उसमें सफल हो सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया। कौन सा गीत सुनेंगे बाहुबली जी?
0: तो गीत मेरे नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम।
1: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: जी, हमारे कौन से श्रोता ने हमें फोन किया है और कहां से?
1: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ। मैं ग्राम अकबरपुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश से।
0: विदिशा से तो तोड़ मेहनत की हो या बहुत परिश्रम किया हो और अंत में कहा हो कि चलो भाई अंत भला तो सब भला।
1: सब भला, अंत भला तो सब भला।
0: जी, तो हारून जी कुछ ऐसी बात बताइए इस प्रसंग से जुड़ी कि हम आपने कहा हो उस काम को करने के लिए और अंत में कहा हो आपने कि चलो भाई अंत भला तो सब भला।
1: जी, देर होती है जी, हम जो करना चाह रहे थे वो नहीं हो सका हमारे
0: साथ। अच्छा, तो फाइनली आप आज तक ये कह नहीं पाए कि अंत भला तो सब भला।
1: जी जी,
0: तो खैर ईश्वर आपका भला करे।
1: जी, हम सोच रहे थे मोटरसाइकिल सीख ले, लेकिन हम मोटरसाइकिल न सीख पाए।
0: अच्छा
1: जी, चलिए, साइकिल साइकिल नहीं चला पाते थे बचपन में, तो लेकिन बचपन में साइकिल चला लेते होते तो हमें दिक्कत नहीं आती मोटरसाइकिल का।
0: अच्छा,
1: जो मोटरसाइकिल नहीं चला पाते तो ये सब भला तो अंत भला क्या कर सकते हैं आप।
0: हाँ, बात तो सही है कि किसी, लेकिन हाँ अगर आप मेहनत करते रहेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ी बहुत परिश्रम लगेगा, हो सकता है एक आध बार गिरे भी तो कहा जा सकता है।
1: हमने तो बहुत कोशिश करी सीखने की, लेकिन 5-6 महीने बहुत कोशिश करी, साल भर भी हो गया था चलाना जी, लेकिन गिरे भी उठे।
0: ईश्वर आपकी मदद करे और आप जो चाहें वो आपको मिले भाई, ऐसा हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं। आपने हमें फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे हारून जी?
1: फिल्म है दिलवाले का, मिल जाएगा।
0: बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं फिल्म दिलवाले का ये गीत।

किसी काम को हम जीतोड़ मेहनत से, जीतोड़ लगन से करते हैं, मन में एक इच्छा रख के कि इसका परिणाम ये होगा, और बहुत संघर्षों के बाद कई बार लगता है कि वो परिणाम नहीं मिल पाएगा हमें, एक बार तो ऐसा ही लगता है, कई बार कि लगता है गया हाथ से, और तभी बाजी पलटती है और अंत में गिरते पड़ते हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। तो उसके बाद जब मुख से निकलता है कि अंत भला तो सब भला, इसी बात के साथ आज के हमारे कार्यक्रम का समय लगभग संपन्न हो चला है। श्रोताओं, कार्यक्रम से मुझे यानी कि ब्रजेश को अनुमति दीजिए। इस कार्यक्रम में आप रोज जुड़ सकते हैं हमें फोन करके, हमारा फोन नंबर है 0581251700, और हमें उस दिन की हमारी पोस्ट पर कमेंट करके, हाँ याद रहेगी वो कमेंट आपने खुद से लिखा हो, अपने मन की बात लिखी हो, न कि कॉपी पेस्ट किया हो। तो आप कार्यक्रम से मुझे अनुमति दीजिए। श्रोताओं नमस्कार।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं और श्रोताओ, आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और रिले होने वाले प्रोग्राम्स के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद ही आप सुनेंगे भजन संध्या कार्यक्रम, नारी संसार आप सुनेंगे नूर फातिमा के साथ शाम को 5:30 पर, जिसमें होगी चर्चा जीवन चलने का नाम हेल्थ टिप्स और से होगा सेगमेंट इनसे मिलिए। प्रोग्राम युवाणी सुन सकेंगे आप शाम को 6:00, 6:30 पर कार्यक्रम किसान वाणी का समय रहेगा, जिसमें आज की बात के अंतर्गत चर्चा का विषय है खेत बजाओ अभियान, साथ ही होगी कृषक गोष्ठी और होगा आज का सवाल, आज की नसीहत, मौसम और कृषि समाचार। श्रोताओं, सुनना न भूलिएगा शाम को 7:00 से ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत बनाम बांग्लादेश के मध्य खेले जाने वाले मैच का ऑफ ट्यूब कमेंट्री का सीधा प्रसारण, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।

तो श्रोताओं, ये तो था विवरण हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का। अब विवरण हमारी कल की सभा में प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का। सुबह 8:15 पर लेकर हाजिर होंगे प्रोग्राम फिल्मी फ्राइडे। कार्यक्रम लोक गीतों का सुन सकेंगे आप 8:45 पर। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुबह 9:00। सुनना न भूलिएगा आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद सुबह 10:00। 11:00 समय रहेगा सब रंग का। 11:30 पर रिले करेंगे FM रेनबो के प्रोग्राम्स आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। और दोपहर 1:00 लेकर हाजिर होंगे आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम अनुरोध गीत।

का समय रहेगा 5:30 पर। शाम को 5:45 पर सुनेंगे आप कहानी। युवाणी प्रोग्राम का समय रहेगा शाम को 6:00 से। कार्यक्रम ग्राम जगत में होगी चर्चा मुहर्रम विषय पर, साथ ही साथ होगी वार्ता इमाम हुसैन का पैगाम। वार्ताकार हैं मोबीन हसन जैदी। और होगा प्रोग्राम में लोकगीत। शाम को 6:30 पर सुनेंगे आप ये प्रोग्राम ग्राम जगत। कृषि पाठशाला के अंतर्गत खेती संघ पशुपालन को लाभकारी बनाए विषय के साथ होंगे श्री तनवीर, श्री करण सिंह और जिनसे बातचीत करेंगे रविंद्र कुमार। ये कार्यक्रम सुनेंगे आप शाम को 7:00 से। और 7:31 पर लेकर हाजिर होंगे अनुरोध गीत। रात्रि 8:00 से रिले करेंगे आकाशवाणी लखनऊ के प्रोग्राम। तो श्रोताओं, ये तो था विवरण हमारी कल की सभा में प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का। ट्यून किया है आपने 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भजन संध्या।

श्रोताओं, इसी भजन के साथ भजन संध्या अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर, और श्रोताओं स्टूडियो में दाखिल हो गए हैं अगले कार्यक्रम को करने के लिए नूर फातिमा जी, और हम सब मिलकर आइए सुनते हैं कार्यक्रम नारी संसार।

एक नया सबक लेकर आता है, कभी हमें कामयाबी से रूबरू करवाता है तो कभी सब्र और हिम्मत का इम्तिहान लेता है। लेकिन जो लोग हालात से घबरा कर बैठ जाते हैं वो अपनी मंजिल से दूर रह जाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक वादा करते हैं, चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल हों, हालात हमारे मुताबिक हों या ना हों, मंजिल भले ही धुंधली नजर आए फिर भी हम अपने कदम नहीं रोकेंगे, क्योंकि ठहर जाना जिंदगी की पहचान नहीं, चलते रहना ही उसका एक पैगाम है। और हमारी सखियाँ जो लगातार अपनी मेहनत और अपनी लगन से काम करती हैं तो वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचती हैं। और हमने पूछा है आपसे एक ऐसा ही सवाल, हमारा सवाल है, हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित की गई अलका याग्निक किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? आपको अपना जवाब हम तक भेजना है, तब तक आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत और जिसकी फरमाइश हमारे पास आई है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से शाजिया अंसारी, शगुफ्ता अंसारी, मोबीन जहां अंसारी और लाल मोहम्मद अंसारी की तरफ से। इसी गीत को सुनना चाहा है मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी, यशव सुहेल हसन अब्बासी ने। तो आइए सुनते हैं आप सबके साथ मिलकर ये प्यारा सा गीत।

0: आज की फास्ट लाइफ में हम सब इतने बिजी हो गए हैं कि अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं। बाकी सबका ख्याल रख लेते हैं लेकिन खुद को इग्नोर कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि अपनी बॉडी का ख्याल रख भी लेते हैं लेकिन माइंड को रिलैक्स करना भूल जाते हैं। रोज का स्ट्रेस, टेंशन और ओवरथिंकिंग हमारे मन को थका देती है। सखियो, ऐसे में मेडिटेशन एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है जो हमें अंदर से शांति प्रदान करता है। सखियो, मेडिटेशन का मतलब थॉट्स को जबरदस्ती रोकना नहीं होता बल्कि उन्हें बिना जज के ऑब्जर्व करना होता है। ये ऐसी प्रैक्टिस है जिसे हम अपने हाल के मोमेंट में रहना सीखते हैं और अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। इसीलिए सखियो, हम और अधिक जानकारी लेने के लिए पहुंच गए रुचि जी के पास। रुचि जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
1: धन्यवाद। थैंक यू मैम।
0: रुचि जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सबकी जिंदगी आजकल बहुत ज्यादा बिजी हो गई है, हर कोई भाग दौड़ में है, तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मेडिटेशन क्यों जरूरी हो गया है?
1: मैम, मेडिटेशन जो है हमारे को एकाग्रता और तनाव को काफी कम करता है। इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में मेडिटेशन एक तरीके से हमें बहुत अच्छा महसूस कराता है, हमारे स्ट्रेस को एकदम कम कर देता है। इसलिए मेडिटेशन काफी जरूरी है हमारी लाइफ के लिए।
0: आपने कहा है मेडिटेशन हमारे स्ट्रेस को कम कर देता है, तो जो लोग कहते हैं कि उनका माइंड बहुत बेचैन रहता है तो उन्हें मेडिटेशन की शुरुआत कैसे करना चाहिए?
1: मैम, उन्हें मेडिटेशन की शुरुआत करने के लिए मन को अपनी सांसों पे लगाना है, बस ध्यान में जाना है और अपनी सांसों पे ध्यान देना है। सांस अंदर लेते समय महसूस करना है कि सांस अंदर जा रही है और सांस

0: को छोड़ते समय महसूस करना है कि सांस बाहर आ रही है। ये शुरुआती दौर में व्यक्ति को काफी मदद करता है कि वह ध्यान को किस तरीके से कर सकता है।
1: सबसे आसान मेडिटेशन टेक्निक कौन सी है?
0: मैम, सबसे आसान मेडिटेशन टेक्निक यही है कि आप अपने मन को एकाग्र करके एक जगह, आरामदायक जगह बैठ जाएं और अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करें कि सांस अंदर जा रही है और तो अंदर महसूस करें, बाहर आ रही है तो बाहर महसूस करें। अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करना है, बाकी ओम का उच्चारण करना है पारंपरिक तरीके से, और दिन में 5 से 10 मिनट इसके लिए आप करें शुरुआती दौर में। बहुत ही स्ट्रेस कम होगा और एकाग्रता बढ़ेगी।
1: रुचि जी, मेता या लविंग काइंडनेस मेडिटेशन से लाइफ में क्या बदलाव है?
0: मैम, लाइफ में जो है, सबसे पहले तो जो हम भाग दौड़ भरी स्ट्रेस में हैं, नींद नहीं आ पा रही या बहुत सी चीजें हैं, उनको मेडिटेशन करने से हम बहुत ही अलग तरीके से महसूस करते हैं। और ये जो तनाव से लोग जूझ रहे हैं वो बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। ध्यान एक प्राकृतिक तरीका है इससे निकलने का।
1: रुचि जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि चक्र मेडिटेशन क्या होता है और इसे कौन कौन लोग कर सकते हैं?
0: मैम, चक्र मेडिटेशन ये है, शुरुआती दौर में तो नहीं किया जा सकता है। जो साधक थोड़े पुराने हो जाते हैं या जिनको आसन प्राणायाम अच्छे से आता है वो लोग इस मेडिटेशन को करते हैं। और जो है थोड़ा सा समय बीतने के बाद, क्योंकि चक्रास हमारे जो है एक्टिव होते हैं तो उसके लिए समय लगता है। नए साधकों के लिए ये एकदम से नहीं किया जा सकता है। जो लोग कुछ समय ध्यान कर चुके होते हैं वही करते हैं इसे।
1: आपने नए साधकों की बात कही, तो रोज कितनी देर मेडिटेशन करना पर्याप्त माना जाता है?
0: मैम, वैसे तो शुरुआती दौर में पर डे की दिनचर्या में हमें 5 मिनट करना ही करना चाहिए, बाकी 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा मेडिटेशन यानी 30 मिनट पर्याप्त।
1: आजकल जब हम किसी से बात करते हैं तो अक्सर लोगों से हमें यही सुनने को मिलता है, क्या करें नींद नहीं आती, तो क्या मेडिटेशन जो है वो स्लीप प्रॉब्लम में भी मदद करता है?
0: जी मैम, बिल्कुल करता है। ये बहुत ही आरामदायक नींद आती है मेडिटेशन करने के बाद। हमारे शरीर में जितना भी तनाव होता है वह दूर हो जाता है, बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं, तो नींद भी अच्छी आती है। अनिद्रा को दूर करने का सबसे आसान तरीका है ध्यान।
1: तो मेडिटेशन करते समय कौन सी कॉमन मिस्टेक्स से बचना चाहिए?
0: मैम, सबसे पहले तो बैठने का तरीका, मेडिटेशन कम्फर्ट एकदम आरामदायक होना चाहिए। जब आप कंफर्ट फील करेंगे तभी आप मेडिटेशन प्रॉपर कर सकते हैं। जैसे कोई चेयर पे बैठना उचित समझ रहा है, किसी भी तरह का पेशेंट है वो चेयर पे बैठ के कर सकता है, और जो व्यक्ति आराम से पलाथी मार के शुकासन में बैठ सकता है वह आराम से उसमें बैठ के कर सकता है। यानी कि कंफर्ट जोन में बैठना है जिससे आपको ध्यान में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो।
1: रुचि जी, बच्चे और युवा मेडिटेशन करते हैं तो उनके लिए ये कितना फायदेमंद रहता है?
0: मैम, बच्चे अगर करते हैं तो उनकी स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है, और युवाओं के लिए अगर कहा जाए तो जो आजकल लोग स्ट्रेस में हैं, इस तरीके से भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, ऑफिस वर्क में जो स्ट्रेस है, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल चीज है मेडिटेशन।
1: यानी मेडिटेशन को हमें अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए।
0: जी मैम, जिस तरीके से हमारी डाइट हमारे लिए जरूरी है उसी तरीके से हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए और भावनात्मक जो मतलब चीजें हैं उनको फिट करने के लिए मेडिटेशन बहुत ही जरूरी है।
1: आप हमारी सखियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैम, मेरे हिसाब से तो हर किसी को मेडिटेशन करना चाहिए, चाहे भले ही टाइम कम है तो 5 से 10 मिनट दें मॉर्निंग में या इवनिंग में, जिस समय आपको समय मिले मेडिटेशन करना ही चाहिए, और खासकर आज की युवा जनरेशन को, क्योंकि इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति खुद के लिए समय नहीं निकाल पाता है, तो मेडिटेशन के जरिए वह अपने आप का स्वाध्याय भी कर सकता है और जो है अपने स्ट्रेस को, अनिद्रा को, काफी हद तक हेल्थ को बहुत अच्छे से सुधार सकता है मेडिटेशन के जरिए।
1: सखियों, रुचि रानी जी से बात करके हमें मालूम हुआ कि शांति हम जो बाहर ढूंढते हैं, बाहर तलाश करते हैं, शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है। जब दुनिया की आवाजें ज्यादा शोर करने लगे तब कुछ पल अपने लिए निकालना ही असली समझदारी है, और मेडिटेशन हमें खुद से मिलने का मौका देता है, अपने मन को समझने की ताकत देता है और जिंदगी को संतुलन में जीना सिखाता है। रुचि जी ने हमें यही बताया, आज नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, आज से ही रोज कुछ मिनट मेडिटेशन को दीजिए, क्योंकि जब सही

0: क्यों मन शांत होता है तभी जीवन सच में मुस्कुराता है। रुचि जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते चलते हम आपसे पूछना चाहेंगे आपकी पसंद का एक गीत।
1: आज से मेरी गलियां तेरी हो गई।

सखियो, जून की ये गर्मी, चिलचिलाती धूप, ऐसे में जरा सी लापरवाही से थकान, डिहाइड्रेशन और लू जैसी समस्याओं से हम ग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए हमें अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। सेहतमंद रहने के लिए अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो हम आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। करना बस ये है कि दिन में इस बात का ख्याल रखें कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीती रहें। नींबू पानी, छाछ, लस्सी और नारियल पानी खूब पिएं। तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी जैसे मौसमी फलों और सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें। अगर आप बाहर जा रही हैं तो बाहर जाते समय सूती और हल्के रंग के कपड़े पहनें और सर को दुपट्टे, कैप या फिर छाते से ढक लें। और हाँ, याद रखें, ये छोटी छोटी रोज की सावधानियाँ हमें सेहतमंद रख सकती हैं। और जब हम सेहतमंद रहेंगे तो हमारा हर काम बहुत अच्छी तरह होगा। और इस वक्त हम बहुत अच्छी तरह से सुनवाने जा रहे हैं आपको आपकी पसंद का एक गीत, जिसे सुनने की फरमाइश हमारे पास आई है सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक और हर्षित शर्मा की तरफ से। इसी गीत को

सुनना चाहा है। जिला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, पट्टी, कैप या फिर छाते से ढक लें। और हाँ, याद रखें, ये छोटी छोटी रोज़ की सावधानियाँ हमें सेहतमंद रख सकती हैं। और जब हम सेहतमंद रहेंगे तो हमारा हर काम बहुत अच्छी तरह होगा। और इस वक्त हम बहुत अच्छी तरह से सुनवाने जा रहे हैं आपको आपकी पसंद का एक गीत, जिसे सुनने की फरमाइश हमारे पास आई है। सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक और हर्षित शर्मा की तरफ से इसी गीत को सुनना चाहा है। जिला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, तन्वी, सीमा, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह ने इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास आई है। कटरा चांद खां, पुराना शहर, बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य और मानवी मौर्य की तरफ से इसी गीत को सुनना चाहे हैं। कटरा चांद खां से ही वार्ड नंबर 11 से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी पसंद का ये गीत।

सखियों, अलका याग्निक एक जाना पहचाना नाम, हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सफल पार्श्व गायिकाओं में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर में हजारों गीतों को अपनी मधुर आवाज दी। रोमांटिक गीत हो, भजन हो या भावनाओं से भरे नगमे, उनकी गायकी हर रंग में श्रोताओं के दिलों को छू

सखियों, अलका याग्निक एक जाना पहचाना नाम, हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सफल पार्श्व गायिकाओं में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर में हजारों गीतों को अपनी मधुर आवाज दी। रोमांटिक गीत हो, भजन हो या भावनाओं से भरे नगमे, उनकी गायकी हर रंग में श्रोताओं के दिलों को छू जाती है। अलका याग्निक ने बहुत कम उम्र में संगीत की दुनिया में कदम रखा और अपनी मेहनत, प्रतिभा और समर्पण के बल पर एक विशेष पहचान बनाई। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है और हाल ही में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, जो कला और संगीत के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान का सम्मान है।

जैसे कि हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित की गई अलका याग्निक किस क्षेत्र से जुड़ी हैं, और इसका सही जवाब हमारे पास भेजा है राधा नामदेव ने, प्रवीण चौहान ने और अनोखेलाल मौर्य जी ने। सखियों, आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपने पत्रों के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, और आज का कार्यक्रम का सफ़र बस यहीं तक। दीजिए अपनी सखी नूर फातिमा को इजाज़त।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम नारी संसार। ट्यून किया है आपने 100.4 एफएम आकाशवाणी का। बरेली केंद्र स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं शाम के ठीक 6। आइए सुनते हैं प्रोग्राम युवाणी।

श्रोताओं ट्यून किया है आपने 100.4 FM लेकर हाजिर हूं मैं ब्रजेश, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम युवाणी। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। वतन के आजादी के कारण हमें, हमसे, हमारे न जाने कितने ही वीर क्रांतिकारियों, शहीदों, अमर बलिदानियों से रुखसत होना पड़ा। ऐसे लोग जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को निछावर कर दिया इस देश की आजादी पर। और ऐसे ही परिदृश्य में बात करेंगे प्रोग्राम में हम आपसे। और फ्रेंड्स, आपसे वो बताते चलें कि आज हम प्रोग्राम में ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन शुरुआत में ही आपको बताते चलें कि आज का हमारा प्रश्न क्या है। आप लोग गौर से सुनिएगा, आज प्रोग्राम में हमारा प्रश्न है, टुसू फेस्टिवल मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए हमारा आज का प्रश्न, टुसू

25 जून 1975 को ही देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल के याद में आज के दिन को यानी कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन यानी कि 25 जून 1975 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया था। इसके तहत मौलिक अधिकारों का हनन कर लिया गया था, यानी कि इस अवधि के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, इन सारी चीजों के जो भी मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के अंतर्गत किया गया है उन सब पर रोक लगा दी गई थी। प्रेस के ऊपर सेंसरशिप हो गई थी, मीडिया और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर जो है वो सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए थे, सभी को अपने प्रकाशन से पहले सरकार से अनुमति लेना आवश्यक था और सरकार अपनी सुविधानुसारूप उन लेखों को प्रकाशित तो होने और रोकने की अनुमति देती थी। और साथ ही साथ विपक्षी नेताओं या जिन लोगों ने भी सरकार के इस कदम के विरुद्ध आवाज उठाई उनको राजनीतिक बंदी बना लिया गया। तो हम आज के इस काले दिन के दिन आपात काल के दौरान उन सभी वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उन लोकतंत्र सेनानियों को यहां से प्रणाम समर्पित करते हैं जिन्होंने उस काले दिवस के विरुद्ध आवाज उठाई और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हेतु अपने प्राणों को न्योछावर किया या फिर जेल गए। इस कदम के

2010 में मनीला में आयोजित एक सम्मेलन में इस दिवस की स्थापना की गई थी और पहला नाविक दिवस 25 जून 2011 को मनाया गया था। तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी।

तो फ्रेंड्स, प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था आज एक प्रश्न। वो प्रश्न ये था कि टुसु महोत्सव या जो त्योहार है ये मुख्यतः किन राज्यों में मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है, मिलान कर लीजिए, ये मुख्यतः झारखंड और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। साथ ही ये पर्व उड़ीसा के भी कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। साथ ही साथ असम के चाय बागानों में भी इसको बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये एक मुख्यतः फसल उत्सव है जो फसल के संबंध में मनाया जाता है। स्थानीय समुदाय इसे पौष महीने के अंतिम दिन यानी कि मकर संक्रांति के अवसर पर मनाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने मिलाया होगा। प्रोग्राम आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। फिलहाल प्रोग्राम से मुझे यानी ब्रजेश को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। 6:30 हो रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में और स्टूडियो में दाखिल हो गए हैं रघु भैया और क्षमा बहन, कार्यक्रम किसान वाणी लेकर। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: कार्यक्रम किसान वाणी सुनन बारे सब भैया और बहनन को आपके भैया रघु
2: और आपकी बहन क्षमा की
1: राम राम।
2: रघु भैया आपको भी राम राम और हमारे साथियों को भी हमारी राम राम। और देखो रघु भैया अभी हम आए रहे तो रास्ते भर शरबत पानी और जाने मटके पंखे बहुत लोग जो बांट रहे, क्योंकि भैया देखो जा अषाढ़ को महीनों चल रहा है तो जा महीने में बहुत बड़ा पुण्य होता है प्यासे को पानी पिलाना। और
1: हाँ सही कह रही हूँ क्षमा बहन, आज हम सवेरे चले तो हम देख रहे हैं कि टेबलें लग रही उन पे तिरपाल बिछ रहे और लोग तैयारी कर रहे, कहूं तो जाए पूड़ी बन रही छोले बन रहे, तो जाए कि दान पुण्य कर्म को महीना है दिन है तो लोग अपने अपने स्तर से दान पुण्य आज कर रहे हैं।
2: और देखो रघु भैया बात करें हम इसका, एक जो लोग कहते हैं कि आषाढ़ के महीने में दान पुण्य जल को बहुत महत्व होता है, जल को दान करने को महत्व होता है, तो भैया इतनी भीषण गर्मी पड़ती है जहाँ महीना में तो लोग जो होते हैं वो राहगीरों को शरबत पिलाते हैं छबील बांटते हैं और शरीर को ठंडक पहुँचे उसके लिए मटके को पानी और पंखे को वितरण करते हैं। और भैया और देखो जहाँ महीने में तभी तो खरबूजा तरबूज ककड़ी खीरा जा सब हम लोग खाते हैं क्योंकि इससे हमारे शरीर में जो होता है वो पानी की कमी नहीं हो पाती।
1: कतई सही कह रही हूँ क्षमा बहन। अब हम कार्तिक स्वामी मंदिर गए तो वहाँ तो जल यात्रा निकाली जा रही।
2: अच्छा भैया
1: बड़ो महत्व है जहाँ महीना में जल की सेवा को, तो हमने देखी बड़ी धूमधाम से यात्रा निकल रही है और बड़ो अच्छो लागो। अरे राहगीर को पानी पिवा रहे हैं, जल यात्रा निकाल रहे हैं और देवी देवताओं को खुश कर रहे हैं, मतलब अपने अपने स्तर से अपनी अपनी मनोकामना मांग रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं लोगों ने।
2: बिल्कुल रघु भैया, और देखो हम जल तो वितरित कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम अपने कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं से यही कहेंगे कि जल को बचाएं। जल को हमारे जीवन में बहुत महत्व है और जल की बर्बादी ना करें, जल को संरक्षित करके रखें और जहां तक हो सके तो अपने घर में अपने बच्चों को अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उन सबको जल के महत्व के बारे में समझाएं और उस पर अमल करें।
1: देखो सही कह रही हूँ क्षमा बहन कि बालकन को अभी से समझावेंगे तो भी जानेंगे कि जाको का महत्व है का उपयोगिता है और जब भी जल बचानो सीख जाएंगे। देखो बालकन को हमने देखी है कि सवेरे बुरुस करते हैं तो पतो चली बास बेसिन की टोटी खोले ही है।
2: हाँ
1: या पतो चली गांव में, अब तो देखो गांव गांव
2: को अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उन सबको जल के महत्व के बारे में समझाएं और उस पर अमल करें।
1: देखो सही कह रही हूँ क्षमा बहन तो भी जानेंगे कि जाको का महत्व है

0: का उपयोगिता है और जब वे जल बचानो सीख जाएंगे। देखो बालकन को हमने देख लिया कि सुबह
1: और घर परिवार में सब कैसे हैं।
0: खेती बाड़ी की बात बतावे छमावें तो 2 एकड़ धान लगा दे हमने और 1 एकड़ धान ले गए लगन को।
1: अच्छा।
0: तो वो अभी जो हमने बा खेत के लिए पौध डाली बा को 5-7 दिन लगेंगे तैयार होने में, तई पौध लगावेंगे और जय काम है गन्ना की देखभाल चली। आप सुनाओ धान उन की क्या स्थिति है, लग गए का?
1: हाँ रघु भैया, हमने धान की रोपाई कराई दी और अब देखो बस साथ ही साथ हम भी बस गन्ने की देखभाल कर रहे हैं भैया।
0: बिल्कुल, तो चलो देखभाल तो हम लोग करिए रहे हैं। भैया जो कलम पेंसिल लाए बैठे हैं, कॉपी को पन्ना सवाल लिखन को, उनको सवाल लिखवा दो पहले।
1: तो भैया नोट कर लो आज को सवाल है धान की पौध की रोपाई कितने दिनों बाद करनी चाहिए। और भैया जा सवाल को जवाब को मिलान हम कार्यक्रम के आखिर में करवा देंगे।
0: बहुत सही सवाल पूछू है क्षमा बहन, क्योंकि इस समय कुछ भैया धान लगा रहे हैं, कुछ भैया की पौध तैयार हो रही है, तो ऐसे में भी जान जाएंगे कि कब रोपाई करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और देखो क्षमा बहन की सरकार योजना चला रही है 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाई रही है सरकार।
1: हाँ रघु भैया, देखो खेत बचाओ अभियान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जाको उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य, टिकाऊ कृषि और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है।
0: बिल्कुल, अब जा है कि जाकी जरूरत इसलिए पड़ी क्षमा बहन की जो हम रासायनिक उर्वरक है ना उनको बहुत अंधाधुंध प्रयोग करने लागे।
1: हाँ भैया,
0: वासे कहा है कि मिट्टी में जो हमारे मित्र कीट है बेउ मरन लागे और हमारी जो मिट्टी है बाकी उर्वरता कम होने लगी।

0: की गई एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जाको उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य, टिकाऊ कृषि और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है।
1: बिल्कुल, अब जा है कि जाकी जरूरत इसलिए पड़ी क्षमा बहन की जो हम रासायनिक उर्वरक है ना उनको बहुत अंधाधुंध प्रयोग करने लागे।
0: हाँ भैया,
1: वहां से कहा है कि मिट्टी में जो हमारे मित्र कीट है बेऊ मरण लागे और हमारी जो मिट्टी है बाकी उर्वरता कम होने लागी
0: और संतुलित प्रयोग करें।
1: बिल्कुल, और अगर रासायनिक खादन को संतुलित प्रयोग करने की वो ना ही रही है तो जाए कि मट्टी की जांच कराई लें।
0: हाँ,
1: और बाव में पता चल जाए कि हमारे खेत में कौन से पोषक तत्व की कमी है।
0: बिल्कुल,
1: बाई की पूर्ति कर देंगे तो जय रासायनिक उर्वरकन को संतुलित प्रयोग है। तो भैया हमें उम्मीद है कि ध्यान रखेंगे और जो खेत बचाओ अभियान मुहिम जो सरकार ने चलाई है जाको सार्थक करेंगे।
0: बिल्कुल रघु भैया, और देखो रघु भैया आज हम कार्यक्रम में लेकर आए विशेषज्ञ की राय, और विशेषज्ञ की राय के अंतर्गत हम जो विषय चुना है हमने वो है धान की खेती, और जाए विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राकेश पांडे और आपसे बातचीत कर रहे हैं भैया कृष्ण पाल मौर्य। तो आओ भैया बहनों सुन लेते हैं जा विशेषज्ञ की राय।

0: झटका खाता है, उस तरह की समस्याएं भी कम आएंगी और बकाने रोग को रोकने में ये विधि जो है भरे पानी में पौध निकालने की, ये काफी कारगर है। और अभी पौध निकालते समय कई बार किसान भाइयों को लगेगा कि घास भी आ रही है पौध के साथ, या पौध में घास भी हो रही है, तो एक बिस्पायरी बैग सोडियम नाम का एक रसायन आता है खरपतवार नाशी, इसका प्रयोग वो लगभग 16 दिन की जैसे ही पौध हो जाती है तो मुख्य पौध में कर सकते हैं, जिससे कि जब खेत पे लेके जाए पौध के साथ घास न जाए, तो इन बातों का विशेष ध्यान।
1: जी, आप विशेषज्ञ लोग हमारे किसान साथियों को ये सलाह देते हैं कि जो धान की पौध है वो 21 से 25 दिन के बीच की जब हो जाए तो उसकी रोपाई कर दें। डॉक्टर साहब, इसके पीछे क्या कारण है?
0: जितनी कम उम्र की पौध होती है उतना ज्यादा कर ले देती है। अगर हम देखें तो SRI विधि या श्री विधि जो हमारी रोपाई की है, इसमें 8 से 12 दिन के पौध की रोपाई की संस्तुति की जाती है, तो उसमें कल्ले और ज्यादा आते हैं। तो जितने कम समय की पौध होगी उतना ही ज्यादा कल्ले देगी। आमतौर पर क्षेत्र में ये देखा जाता है किसान भाई पौध जल्दी डाल देते हैं, उसके बाद बारिश का इंतजार करते हैं, और बारिश का इंतजार करने तक आमतौर पर पौध 30 दिन की, 35 दिन की भी कई बार हो जाती है, और जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर खेत में कल्ले कम आते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अब एक बात यहाँ पर निकलकर ये आती है कि जो किसान साथी हमारे पौध तैयार करते हैं, पौध तैयार करने के बाद कई बार हम देखते हैं कि जो पानी भरते हैं कंधेड़ बनाने के लिए खेत में, और कंधेड़ किसी कारणवश नहीं मिल पाता है, लेकिन हम पौध छील कर रोपाई के लिए रख लेते हैं, और किसी कारणवश 2-2, 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं और कंधेड़ नहीं मिल पाता, और जो पौध हमने निकाली है खेत से नर्सरी से वो पीली पड़ जाती है, और उसे ही किसान भाई अपने खेत में ले जाकर रोप लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे?

0: रखें।
1: अब डॉक्टर साहब, एक समस्या हमारे किसान साथियों के बीच में और आती है कि रोपाई कर दी और कभी कभी देखते हैं कि दीमक का प्रकोप होता है जिससे कि हमारी फसल को काफी नुकसान होता है, तो दीमक के विषय में क्या कहना चाहेंगे कि रोपाई से पहले
2: जी
1: किसान भाई हमारे क्या ध्यान रखें?
2: देखिए, रोपाई से पहले किसान भाई, एक जय फफूंद आती है बवेरिया बेसियाना और दूसरी है मेटारिजियम, इनमें से कोई जय फफूंद प्राप्त कर लें, आमतौर पे जो कृषि रक्षा इकाई है वहां पे ये छूट पे भी मिल जाती है, तो वहां से इसको ले आए और लगभग 50 से 60 किलो अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जो है उसमें इसको मिला दें, और जब पहली जुताई कर रहे हो उस समय इसको बिखेर के और जुताई करके मिलान कर दें। इसकी जो जैव फफूंद है ये दीमक के शरीर पे चिपक जाती है और उसमें बीमारी ला देती है जिसके कारण दीमक जो है वो नष्ट हो जाती है। चूंकि दीमक की बांबी खेत में ही कहीं अंदर जमीन के अंदर है, 1.5 मीटर 2 मीटर नीचे, तो वहां से दीमक के सैनिक आते रहते हैं और रसायन डाल के हम उन्हें मारते रहते हैं, रानी जो है वो और अंडे देती रहती है, उससे और श्रमिक आते रहते हैं। तो हम इस तरह से अगर दीमक को नियंत्रित करना चाहेंगे तो हमें बार बार रसायनों का प्रयोग, या हर फसल में रसायन का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हम जैविक फफूंद का इस्तेमाल करें तो शायद हम लंबे समय तक दीमक से छुटकारा पा सकते हैं।
1: जी,
2: कृषि रक्षा इकाई पे अपनी जाएं और वहां से ट्राइको कार्ड उपलब्ध है, तो ट्राइको कार्ड लाके, एक कार्ड प्रति एकड़ की दर से ये लगभग लगता है और 55-60 रुपए का करीब पड़ता है, जिसमें छूट भी होती है, तो किसान भाई कृषि रक्षा इकाई से इस ट्राइको कार्ड को ले आए और ट्राइको कार्ड के टुकड़े करके जगह जगह खेत में 1 एकड़ में लगा दें, जिससे कि ट्राइकोग्रामा कीट निकलेगा, तना छेदक के अंडों को नष्ट कर देगा, तो इस तरह से किसान भाई उसको नियंत्रित कर सकते हैं। यदि फिर भी खेत में लग गया है और कार्ड नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो एक बाइफेंथ्रिन दवा आती है 10% की, इसकी 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर, या एक फिप्रोनिल आती है 5% की, इसकी 2 से 2.5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर किसान भाई अगर छिड़काव कर देंगे तो इस कीट का नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन फिर भी ट्राइको कार्ड एक बेहतर उपाय है, क्योंकि धान में ऐसा कहते हैं कि 50 दिन तक अगर किसान भाइयों ने किसी कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया है तो वहां मित्र कीटों की संख्या बढ़ जाती है, तो किसान भाइयों को प्रयास करना चाहिए कि पहले जैविक उपाय का ही प्रयोग करने का प्रयास करें।
1: अब बात आती है डॉक्टर साहब खरपतवार की।
2: जी,
1: खरपतवार जो होते हैं फसलों के चोर कहे जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो खाद और पानी हम अपनी फसल को देते हैं और वो उसको चुरा लेते हैं, और हमारे किसान भाई भी जानते हैं कि जो फसल है उससे बढ़वार में ऊपर निकल जाते हैं, जिस पर कीट पतंगा भी अपनी शरण लेते हैं, तो खरपतवारों के नियंत्रण के लिए क्या करें हमारे किसान साथी धान की फसल में?
2: धान की फसल में आमतौर पर 2 बार हम खरपतवारों का प्रबंधन कर सकते हैं, एक तो रोपाई के तुरंत बाद
1: जी,
2: लेकिन इसके लिए किसान भाइयों को ध्यान रखना होगा कि जब हम रोपाई के तुरंत बाद खरपतवार नाशी का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमारा खेत जो है वो बढ़िया लेवल्ड होना चाहिए, कंधेर अच्छी तरह से होना चाहिए और उसमें पानी खड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो हम रसायन प्रयोग करते हैं वो रसायन का प्रयोग करने के बाद वो रसायन पूरे खेत में फैलता है और पानी के ऊपर एक परत बना लेता है, और उसके नीचे से जो भी खरपतवार जम के निकलता है वो उसको वहीं तुरंत नष्ट कर देता है। और दूसरा, करीब 16 दिन पे बिस्पायरीबैक सोडियम एक खरपतवार नाशी आता है, इसका भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए जब लगभग 16 से 18 दिन की फसल हो उस समय खेत का पानी बिल्कुल निकाल दें, और निकालने के बाद फिर दूसरे दिन इस रसायन का छिड़काव करें और लगभग 48 घंटे के आसपास इसमें फिर से पानी भर दें, तो ये जो भी खरपतवार हैं उस समय के वो नष्ट हो जाएंगे और फसल जो है वो तेज चलने लगेगी।
1: खरपतवारों के बाद में जो बहुत से रोग हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जब बाली बनती है, दूध अवस्था में होती है, उससे पहले भी रोग लगते हैं लेकिन उस समय जाके गंदी कीट लगता है, बहुत सी ऐसी बीमारियां
2: जी
1: हमारे किसान साथियों के धानों के खेतों में होती है और हमारे किसान साथी परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें
2: जी,
1: तो वो समस्याएं सामने ना हो, क्योंकि अभी हम धान की रोपाई करने ही जा रहे हैं
2: जी,
1: तो उसका समाधान पहले ही कर लें, जो सुझाव दिए जा रहे हैं उनको अपनाकर अगर हमारे किसान साथी खेती करेंगे तो वो समस्याएं सामने ना हो, इसके लिए हमारे किसान साथी क्या ध्यान रखें?
2: देखिए, कीट और बीमारी इसलिए ज्यादा पनपते हैं हमारे किसान भाई रोपाई करते हैं और रोपाई करने के बाद उसमें ज्यादा यूरिया का प्रयोग करते हैं। जब ज्यादा यूरिया का प्रयोग करते हैं तो लांक बहुत ज्यादा हो जाता है, और लांक बहुत ज्यादा हो जाता है पूरा खेत जो है वो भर जाता है, और नीचे जड़ के आसपास ऐसा माहौल बन जाता है जहाँ पे गर्मी और नमी है, इन दोनों भरपूर मात्रा में होती है, और वो माहौल ऐसा होता है जहाँ कीट और बीमारियां तेजी से पनपते हैं। तो किसान भाइयों को एक तो ध्यान ये रखना है कि यूरिया का एक सीमा में ही प्रयोग करना है, जब फसल यूरिया मांगती है तो अपने आप ही रंग बता देता है फसल का कि यूरिया के प्रयोग की आवश्यकता है। किसान भाई दूसरे साथियों के कंपटीशन में और ज्यादा यूरिया न डालें, पहला तो ये ध्यान रखें।
1: डॉक्टर साहब, कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं कि चाहे समय अभाव कहें या कोई उनके सामने और समस्या रहती है और पोवेरा बुवाई करना चाहते हैं
2: जी,
1: तो उसके लिए किसान

0: पति क्या करें, क्या ध्यान रखें, क्या सुझाव?
1: देखिए दो तरीके हैं, एक तो सीधी बुआई, धान की सीधी बुआई जिसको आप मल्टी क्रॉप सीड ड्रिल से कर सकते हैं
0: जी।
1: और इसमें खेत में बुआई करने के बाद अगर पर्याप्त नमी है तो पेंडी मेथालिन खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है, और अगर रोपाई के बाद पानी भरते हैं तो उसके बाद फिर बिस्पायरी बैग का लगभग 16 दिन के अवस्था पे, जब खरपतवार 3 पत्ती 4 पत्ती की अवस्था पे हो उस समय बिस्पायरी बैग सोडियम का स्प्रे करके खरपतवार प्रबंधन किया जाता है, क्योंकि रोपाई विधि हम आमतौर पर खरपतवार रोकने के लिए ही अपनाते हैं। तो एक बार हम इससे खरपतवार का नियंत्रण कर लेते हैं, उसके बाद नीचे के खेत होते हैं तो उन्हें बारिश का पानी आमतौर पर भरा रहता है और आगे खरपतवार कम होते हैं या नहीं होते हैं। तो एक तो इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं ड्रम सीडर, यानी एक डमरू जैसे 4 ड्रम एक मशीन में लगे होते हैं, एक यंत्र में लगे।

0: द्वार का नियंत्रण कर लेते हैं, उसके बाद नीचे के खेत होते हैं तो उन्हें बारिश का पानी आमतौर पर भरा रहता है और आगे खरपतवार कम होते हैं या नहीं होते हैं। तो एक तो इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं और दूसरा एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं ड्रम सीडर, यानी एक डमरू जैसे चार ड्रम एक मशीन में लगे होते हैं, एक यंत्र में लगे होते हैं और इसको हाथ से खींच के चलाते हैं। तो इसके लिए जो बीज की जवाई करते हैं वो इतना भिगो के और इतनी जवाई करते हैं कि उसमें सफेदी बस झांकने लगे
1: जी।
0: जैसे ही सारे दानों में सफेदी बाहर आ गई वैसे ही उसके बुआई का सही समय हो गया
1: जी।
0: अब इस यंत्र में जो डमरू बने हुए हैं चार, ये प्लास्टिक के डमरू होते हैं और इनमें जगह जगह छेद होते हैं, तो इनमें उस बीज को भर के और हम कंधेर किए हुए खेत में चलाते हैं इस यंत्र को, और कंधेर किए हुए खेत में चलाने के बाद वो दाने उस छेदों में से गिरते रहते हैं और लाइनों में धान की बुआई हो जाती है। चूंकि इसमें बीज ज्यादा गहराई पे नहीं जाता है इसलिए इसमें कल्ला बहुत ज्यादा आता है। तो किसान भाई अगर पॉट डालने में देर हो गई है या कुछ नया प्रयोग करके उपज बढ़ाना चाहते हैं तो इस विधि से भी बुआई कर सकते हैं। और ये यंत्र जो है बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 3,500-4,500 ऐसे ही आ जाएगा और हो सकता है कि कृषि विभाग द्वारा अनुदान पे भी उपलब्ध कराया जा रहा हो। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि चिड़िया जो है वो दाने को नुकसान पहुंचाती क्योंकि दाना ज्यादा गहराई में नहीं जाता है, तो उससे बचने के लिए नीम आधारित कोई भी कीटनाशक जैसे एजाडायरेक्टिन है
1: जी,
0: इससे शोधित कर लेंगे बीज को, बीज में कड़वापन आ जाएगा तो चिड़िया एक दो दाने खाने के बाद शायद ना खाए उसको। तो इस तरह से कर सकते हैं या चिड़िया रखानी पड़ेगी, लेकिन इसमें कल्ला सामान्य रोपाई विधि की अपेक्षा लगभग दो गुना आता है। तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि विधि अच्छी है, बस एक चिड़िया की समस्या है जिसका प्रबंधन करना है
1: जी। तो डॉक्टर साहब ये तो रही धान की खेती की बात कि क्या क्या समस्याएं हमारे किसान साथियों के आती हैं, और आपने उनका समाधान भी बता दिया है कि किस तरीके से समाधान हमें करना है। चलते चलते हमारे किसान साथियों के लिए आप और क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: देखिए किसान भाइयों, हम चूंकि सही जमीन में सही फसल का चुनाव नहीं कर रहे हैं, धान अगर क्षेत्र में हो रहा है तो हम सब धान बोने में लगे हुए हैं, धान लगाने में लगे हुए हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा जल संसाधन है भूमिगत जल संसाधन उस पर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है और हमारी खेती की लागत भी बहुत ज्यादा हो रही है। अगर हम बलुई दोमट मिट्टी में धान कर रहे हैं तो उसमें पानी तो रुकता ही नहीं है, तो लगातार पानी भरे रहने के लिए हमें बहुत ज्यादा पानी लगाना पड़ता है और उसके बाद भी खरपतवार और कीट बीमारियां बहुत ज्यादा आते हैं तो हमारी लागत बढ़ती चली जाती है। तो पहला तो हम ध्यान रखें कि हम जमीन का सही चुनाव करें जिसमें कि हम धान करना है। यदि जमीन हमारी धान के योग्य नहीं है तो उसमें तिल कर सकते हैं, उड़द कर सकते हैं, और आजकल तो देखें तो श्री अन्न का
1: जी
0: वर्ष चल रहा है, तो श्री अन्न में आप बाजरा तो कर ही सकते हैं, क्षेत्र में ज्वार कर सकते हैं, तो इन फसलों को करके आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं क्योंकि इस वर्ष श्री अन्न की बहुत ज्यादा मांग होने वाली है, तो उसका भी चयन कर सकते हैं, तो उनमें से कोई फसल कर लें। अन्यथा धान में आप सीधी बुआई की विधि को या ड्रम सीडर को अपनाएं जिससे नर्सरी पे पौधरोपाई पे इन सब पे आने वाली आपकी लागत भी कम हो और जल संसाधन का भी बहुत अच्छा उपयोग हो। बस ये ध्यान रखें कि ड्रम सीडर से और सीधी बुआई वाले यंत्र से जब आप बुआई करेंगे तो बुआई आप उसी समय करें

0: समस्याएं और समाधान इस विषय पर ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपका स्टूडियो में आने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अब हमारे साथियों ने सुनी विशेषज्ञ की राय के अंतर्गत जानकारी धान की खेती, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राकेश पांडे और आपसे बातचीत कर रहे थे भैया कृष्ण पाल मौर्य।
2: और क्षमा बहन देखो आज है बृहस्पति का दिन, और बृहस्पति के दिन हम सुनवाते हैं महिला कृषक अनुभव। तो आज हम अपने कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं महिला कृषक कलावती के अनुभव, और आपसे बातचीत कर रही हैं बहन क्षमा सक्सेना।
1: आपका नाम क्या?
3: कलावती।
1: आप कहाँ की रहने वाली हैं?
3: मठ कमल लाइन पर के।
1: अच्छा कलावती जी, आप सबसे पहले ये बताइए आपने पढ़ाई लिखाई की है?
3: नहीं साहब, खेती में पढ़ते हैं।
1: खेती में पढ़ती हैं, बहुत अच्छी बात है।
3: खेती की जानकारी हुई जो हमसे तो
1: सही है, और खेती के बारे में पूछेंगे। तो आप ये खेती बाड़ी कब से कर रही हैं?
3: काफी साल ही गोभी लगा है और लौकी तुरई लगा है।
1: अच्छा।
3: और चुकंदर है।
1: अच्छा अच्छा।
3: गाजर ये सब कुछ
1: मतलब। अच्छा आप सब्जी फसलें करते हैं?
3: हाँ, हाँ,
1: हाँ, अच्छा अच्छा। तो कलावती जी ये बताइए कि आप जब ये सब सब्जियों की जब फसल लगाती हैं तो आप क्या तैयारी करती हैं? उसके लिए खेत कैसा होना चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए?
3: पहले खूब महीन करके गोड़ाई करने पर रहेगी।
1: जी जी जी।
3: गोड़ाई करके एक साल खेत करके बरा काट कर, बरा जैसे बरन पर मूली लगाते हैं चुकंदर लगाते हैं उसके बरा तैयारी करके उसके बाद लगा कर।
1: अच्छा।
3: जब बड़े हो जाए थोड़े बड़े हो जाते पानी चाहते पानी लगाया जाता है और वो खाद मारी जाती है।
1: अच्छा अच्छा।
3: हाँ फिर उसकी दवाइयाँ चलती निराई पताई के सभी काम है वो। तो
1: कलावती जी ये बताइए कि आप ये जो अभी ये जो कर रही है क्या काम कर रही है आपने?
3: निराई कर रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा।
3: हाँ निराई करके खाद लगाएंगे।
1: अच्छा।
3: खाद लगा कर फिर से गुड़ाई करेंगे महीन मट्टी करेंगे।
1: अच्छा अच्छा।
3: महीन मट्टी करके तुरई जब इतनी बड़ी हो जाती है तो उसे बांध कर ऐसे कर जहीन तुनका में बांधा पेड़ के।
1: हाँ।
3: ऐसे ऊपर पौड़ा रहेंगे।
1: अच्छा अच्छा।
3: ऐसे अब ऊपर पौड़ा कर डारा सही करके अब साफ तुरई आयल करेगी।
1: अच्छा अच्छा।
3: हाँ अब तुरई आने के अब तुरई भी तोड़ेंगे और इसके साथ साथ दवाइयाँ भी चलेंगी।
1: अच्छा तो कौन कौन सी दवाई लगाती हैं
3: आप? वो दवाई का नाम का तो मुझे नहीं पता, वो तो पढ़े लिखे लाते हैं खेत पर।
1: अच्छा अच्छा।
3: हाँ, आदमी करते हैं।
1: अच्छा तो आपने ये तो अभी यहाँ पे तो मैं देख रही हूँ सब तुरई लगी है, बाकी आपकी फसलें कहाँ लगा रखी हैं आपने?
3: तो अभी तो तुरई लौकी चल रही है
1: इस समय, लौकी तुरई कर रही है।
3: हाँ।
1: मतलब आप सीजन की और जब सीजन होता होगा तो और सब्जियाँ करती
3: हैं? सेम है।
1: सेम करती हैं जाड़ों के मौसम में?
3: हाँ, सेम
1: सेम करती हैं। तो सेम भी इसी तरीके से लगाती हैं। कलावती जी ये बताइए कि आप जैसे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ये नाली जैसी बनी है तो ये किस लिए बनी है?
3: जी नाले का पानी आता है।
1: अच्छा अच्छा।
3: जब हमारा जब हम सोचते हैं कि मतलब हमें खाद के चक्कर में नाले का पानी निकालना तो एक नाला बना लिया भीतर भीतर।
1: अच्छा अच्छा।
3: तो वो नाले को पानी हम लगा दिया थे।
1: अच्छा। और वैसे अगर नहीं होता है?
3: नहीं होता है तो सावंजन चलता है बोरिंग का।
1: अच्छा समरसेबल लगा हुआ।
3: हाँ, हाँ, हाँ।
1: अच्छा उससे सिंचाई होती है।
3: हाँ, हाँ, हाँ।
1: तो कितने दिन बाद सिंचाई करनी पड़ती है?
3: अरे जैसे बाइट अब जो गर्मी का मौसम है तीसरे दिन आए।
1: अच्छा।
3: एक दिन छोड़ के एक दिन लगता है पानी।
1: एक दिन छोड़ के?
3: हाँ गर्मी में।
1: और निराई गुड़ाई तो समय समय पर करनी पड़ती है?
3: समय पर होती है।
1: तो ये कितने दिन में आपकी फसल तैयार हो जाती है?
3: जी ऐसी हो जाती है। हाँ 3 महीना में तैयार हो जाती है लौकी तुरई।
1: तो तुरई कितने दिनों तक चलती है? 4 महीने। अच्छा अच्छा।
3: तो इसी के थौरे में सेमी लग जाएगी।
1: अच्छा अच्छा।
3: जब सेमी इतनी हो जाएगी तो इसे हम निकाल देंगे ब्लेड से।
1: अच्छा।
3: या छुरी से चाकू से।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
3: तो जो जहाँ में पुरो आएगा ऐसे जो और जो एक एक डार सब निकाल के अलग कर देंगे और उसकी हम पौड़ा देंगे सेम की
1: पौड़ा देंगे।
3: हाँ
1: सेम शुरू हो जाएगी।
3: जैसे कुंवर में सेम फूल जाएगी।
1: हाँ हाँ।
3: कुंवर में आराम से अपने हालिक रही सेम।
1: बहुत अच्छी बात है। आप इतनी मेहनत कर रही हैं। तो आप ये बताइए कि आपके घर परिवार में कौन कौन है?
3: हम 3 अब लड़कियों की शादी कर दी, एक लड़का है और 2 मियाँ बीवी हैं, 3 लोग हैं घर के अंदर।
1: अच्छा अच्छा। तो आप सुबह घर पे काम करके आती होंगी?
3: सारे और खाना भी बनाते हैं, खाना भी खाते हैं, जरा मुँह हाथ धोते हैं, नहाना धोना था ही भैया तब आते हैं। 7 बजे आप फ्री हुई कर 7 बजे खेत पे आ जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
3: खानों बना के देते हैं घर वालों को, वो काम करते हैं राजमिस्त्रियों में।
1: अच्छा।
3: और लला पढ़न जाता।
1: अच्छा अच्छा।
3: हाँ एक लड़का है, 3 लड़की लड़कियों की शादी कर दी और लड़का पढ़ाई कर रहा है 10वीं में।
1: बहुत बढ़िया बात है, आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा रही है। तो आप शाम को कितने बजे लौटती हैं अपने घर?
3: घर हम 6 बजे आएंगे।
1: 6 बजे जाते हैं।
3: हाँ और 2:30 बजे लगते हैं।
1: 2:30 बजे लगते हैं।
3: अच्छा।

0: और सुबह के लगभग 7 बजे आकर 11 बजे घर से हिंस जाते, 11 बजे 11:30 बजे कोई खास घड़ी नहीं बांधते कि हम लोग सत्तायु लेते हैं। इसके मारे खेतवारी जे ना कहा कि मतलब इतना काम हमारा कम कैसा होगा।
1: अच्छा,
0: सत्ताते भी हैं जरा कि नराते ही रहो नराते रहो तो हम थक गए तो फिर बाद में कल कौन आवा।
1: सही बात है।
0: हाँ,
1: और ये बताइए कि कितनी पैदावार हो जाती होगी?
0: 50-60 हज़ार 6 महीने में।
1: अच्छा अच्छा,
0: हाँ हो जाता
1: 50-60 हज़ार रुपए।
0: हाँ,
1: 6 महीने में पैदावार।
0: हाँ, जो दवाई दारू के और ये काम मानने के सबके लेकर कर।
1: हाँ,
0: हम लोगों को बचा।
1: कलावती जी, आप हमारे कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं से क्या कहना चाहती हैं? यानी आप हमारी बहुत सी, आपने देखा होगा बहुत सी महिलाएं काम नहीं करती हैं, वो सोचती हैं कि काम करने में उन्हें शर्म आती है या घर से नहीं निकलना चाहती हैं, घर में ही बैठती हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? महिलाओं का काम करना कितना जरूरी है?
0: अच्छा, जरूरी काम क्यों नहीं है? अगर काम नहीं करोगे बीमार पड़ोगे घर में हवा खा खा ऐसी की। और फिर भाई बताऊं, जिसके आदमी नौकर पेशा वाले बेबी काम करते
1: जी,
0: ऐसी बात नहीं है। और हम लोग तो मजबूर आदमी, तो हमें तो करना ही करना है, मगर घर वाली वो फैशन दिखाने वाली है, वे तो वही फैशन दिखावी है ना।
1: यानी कि आप ये कहना चाहती हैं कि सब महिलाओं को काम करना चाहिए। हाँ, अपने घर हाँ, वाले हाँ, के हाँ, साथ हाथ बटाना चाहिए।
0: हाँ, हाँ,
1: इससे क्या होता है कि हमारे घर की तरक्की भी होती है, है ना। हाँ, जब हाँ, दो कमाई आएंगी घर में तो अच्छे से हमारा अच्छा, परिवार चलेगा।
0: जी जी,
1: आपने हमारे कार्यक्रम सुनने वालों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अब हमारे भैया बहन सुन रहे महिला कृषक अनुभव के अंतर्गत बहन कलावती के खेतीबाड़ी के अनुभव, और आपसे बातचीत कर रही बहन क्षमा सक्सेना। और बहन क्षमा सक्सेना, अब बता दो सवाल को जवाब जो कार्यक्रम की शुरुआत में पूछो हो।
3: तो भैया आज को सवाल हो, धान की पौध की रोपाई कितने दिनों बाद करनी चाहिए? तो जाको सही जवाब है, धान की पौध की रोपाई 20 से 25 दिन बाद करनी चाहिए।
2: और आज के कार्यक्रम की नसीहत का है?
3: आज के कार्यक्रम से हमें जाहिर नसीहत मिलते हैं भैया, हमारे किसान साथी धान की फसल में होने वाले समसामयिक कार्यों का विशेष ध्यान रखें।
2: तो भैया बहनों जाई नसीहत के संग अपने भैया रघु
3: और अपनी बहन क्षमा को दे अनुमति।
2: भैया बहनों
3: राम राम।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम किसान वाणी, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे ICC वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज के मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

साहिबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

0: फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे।

0: वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल की 51वीं बरसी पर लखनऊ में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को किया संबोधित। कहा, सबका साथ सबका विकास का भाव है लोकतंत्र का आधार। मुख्यमंत्री ने संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप की समीक्षा। कहा, किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने वाराणसी एयरपोर्ट में पहली इजी कनेक्ट उड़ान का किया शुभ

0: शुभारंभ। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिविल एविएशन सेक्टर में आया है बड़ा बदलाव। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आपातकाल की 51वीं बरसी संविधान हत्या दिवस पर लखनऊ में आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश सरकार लोकतंत्र सेनानियों के लिए जल्द ही 5 लाख रूपये प्रतिवर्ष कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ समाज के हर वर्ग को योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, और यही लोकतंत्र का आधार है।
1: एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का वह अभियान जिसमें जनता ही सब कुछ है। लोकतंत्र का मतलब भी यही है, जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए योजना का लाभ, वो अंतिम पायदान पर बैठे हुए जनता जनार्दन के व्यक्ति को इस योजना के साथ जोड़ना। परिणाम 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त होकर के एक नए मध्यम वर्ग के रूप में उभर करके अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं और देश के विकास में अपना योगदान देते हुए दिखाई देते हैं।
0: वरिष्ठ भाजपा नेता और डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने आपातकाल की बरसी पर मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश को एक वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 139 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश के हर जनपद का विकास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पूर्वजों की विरासत को संरक्षित किया है। आज सुशासन और सुरक्षा के माहौल के साथ प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है।
2: ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। जो उत्तर प्रदेश कभी पहचान के लिए मोहताज था, आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं, बल्कि वह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप, कृषि क्षेत्र की विभिन्न केंद्रीय और राज्य की योजनाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन की संयुक्त समीक्षा की। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए समृद्ध उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान अलनीनो के प्रभाव से निपटने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में श्री चौहान ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा जिससे किसानों को बेहतर पौधे मिल सकें।
3: क्लीन प्लांट सेंटर यहाँ लगाएंगे जिसमें बागवानी के क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हैं उनको अच्छे पौधे मिल जाए। अगर पौधा खराब मिला, उनको प्लांट खराब मिला, तो 2 साल 3 साल या 4 साल बाद पता चलता है कि ये तो वैसा उत्पादन ही नहीं दे रहा। तो वो क्लीन प्लांट सेंटर भी हम खोलेंगे, लेकिन अच्छे बीज पर अच्छी रोपण सामग्री उसका इंतजाम करना, हम लोग भारत सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
0: इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीद की अवधि बढ़ाए जाने की मंजूरी भी प्रदान की। उन्होंने इस संबंध में स्वीकृति का आशय पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के अधिकाधिक किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का अवसर मिलेगा और उनके हितों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित होगा। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने अयोध्या पहुंचकर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में मखाने की खेती का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद भी किया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या

0: दोगुनी से अधिक हो गई है।
1: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं, और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर पूरा कर सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति वीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया है कि मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 8 महामंत्री, 19 उपाध्यक्ष और 19 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के नाम भी घोषित किए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने सभी वर्गों और क्षेत्रों को ध्यान में रखकर पदाधिकारियों की नियुक्ति की है।
2: देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है, युवाओं को भी लेकर, महिलाओं को भी लेकर के, और हम लोग ख्याल रखे हैं कि सभी का समायोजन उसमें हो जाए और सभी क्षेत्र का जो हमारे कार्यकर्ता है उनका सबका हर क्षेत्र से करीब करीब बराबर बराबर सबका समायोजन हो जाए, ऐसा प्रयास किया गया।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी नए पदाधिकारी संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने, राष्ट्र प्रथम की भावना को जन जन तक पहुंचाने और जनसेवा के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेशभर में कोचिंग सेंटरों और अन्य इमारतों में अग्निशमन व्यवस्था की जांच की जा रही है। इसी क्रम में गौतमबुद्ध नगर में पुलिस, जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने 7 और कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है। वहीं 2 कोचिंग संस्थानों में आग से बचाव के इंतजाम मानकों के अनुरूप न मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं प्रयागराज मंडल प्रशासन ने विशेष अभियान के तहत अब तक प्रयागराज और कौशाम्बी में कुल 10 कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों को सील किया है। मुहर्रम महीने की नवी तारीख पर आज लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में इमाम हुसैन की याद में मजलिसों और मातम का सिलसिला जारी है। लखनऊ में आज देर रात आलमे शबे आशूरा का जुलूस इमामबाड़ा नाजिम साहब से दरगाह हजरत अब्बास तक निकाला जाएगा। कल 10वीं मुहर्रम पर घरों में रखे ताजियों को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा, साथ ही आलमे आशूरा का जुलूस भी निकाला जाएगा। इन जुलूसों के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। प्रदेश के कुछ पूर्वी जनपदों में आज हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी जनपदों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल की 51वीं बरसी पर लखनऊ में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को किया संबोधित। कहा, सबका साथ सबका विकास का भाव है लोकतंत्र का आधार। मुख्यमंत्री ने संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप की समीक्षा। कहा, किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने वाराणसी एयरपोर्ट में पहली इजी कनेक्ट उड़ान का किया शुभारंभ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिविल एविएशन सेक्टर में आया है बड़ा बदलाव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं ICC वुमेन T20 वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंतर्गत भारत बनाम बांग्लादेश के मध्य खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: इस दुनिया से तुम आई हो।
1: किशोर कुमार की आवाज में ये कैफी आजमी का लिखा गीत था फिल्म परवाना से।
0: तुम आई,
1: संगीत मदन मोहन का था।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये कैफी आजमी का लिखा गाना था फिल्म हीर राजा से। संगीत मदन मोहन का था। आज मदन मोहन की याद का दिन है, हम नमन करते हैं उन्हें। जय माला कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग।

0: इनसे मिले कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मीडिया प्रोफेशनल और फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पहला भाग।
1: इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, फिल्मकार हैं, रेडियो से जुड़े हैं और दूरदर्शन के न्यूज चैनल से बतौर एडीपी अपनी सेवाएं देकर रिटायर्ड हुए हैं। आप हैं सुभाष जैन साहब। तो हम उनसे बातचीत करेंगे आज इन सभी विषयों पर। सुभाष जैन जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ
1: जी।
2: रेडियो पे इतने वर्षों के बाद आज मैं आया हूँ। वो बात दूसरी है कि रेडियो से एज ड्रामा आर्टिस्ट और एज कंपेयर मैं जुड़ा रहा हूँ, वर्षों तक जुड़ा रहा हूँ, लेकिन वर्षों के बाद आज आया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे श्रोताओं का भी आज बहुत शुक्रिया कि आज आपसे फिर बात करने का मुझे मौका मिला है।
1: जी, शुक्रिया तो आपका है कि आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला है। और सबसे पहले तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बड़ा मजा आ रहा है देश में। आज इस तरह की घटनाएं सुबह से शाम तक नए नए इवेंट्स सुनने को देखने को मिल रहे हैं और रेडियो जो है अब मैं देख रहा हूं, बीच में कुछ पहले थोड़ा सा स्लो हुआ था, आज फिर लोग जो हैं रेडियो की तरफ भाग रहे हैं और रेडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं।
1: जी, तो देखिए ना, आपने आकाशवाणी ने अपना 90 वर्ष का जो सफर है वो कितना खूबसूरती के साथ तय भी कर लिया है। और इस

0: 90 वर्ष के सफर पर हम सभी जश्न भी मना रहे हैं।
1: जी जी जी जी।
0: तो रेडियो से आप कैसे जुड़े और रेडियो से जो जुड़ाव था वो कैसे हुआ?
1: हुआ क्या कि मैं पहले कॉलेज में थिएटर करता था और थिएटर के साथ साथ रोहतक रेडियो स्टेशन पर जब वो पता चला कि वहां पर भी आर्टिस्टों को वो लेते हैं, उनका ऑडिशन होता है, तो हरेक की मर्जी होती है, हरेक का दिल करता है, क्योंकि हमारे लिए रेडियो उस वक्त पे बहुत बड़ी चीज थी
0: जी।
1: क्योंकि रेडियो को हम जो है सिर्फ सुनाई हमने जिंदगी भर, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, तो वो रेडियो की न्यूज डेली सुनते थे, तो हमें एक लगाव था और हम तो फिर हवा महल और ये यार वो बहुत सुनते थे, तो उससे हमें लगा कि हम भी कोशिश करें। और अगर शॉर्टकट बताऊं तो मैंने रेडियो स्टेशन पे ऑडिशन दिया और मैं फिर पहले बी ग्रेड मैंने पास किया, फिर बी हाई मैंने पास किया
0: ड्रामा में जी।
1: और ड्रामे के बाद फिर एज अनाउंसर भी मैंने वहां ऑडिशन पास किया और रेडियो के लिए बहुत प्ले भी मैंने लिखे।
0: तो अच्छा, लिखे भी आपने?
1: हाँ, लिखे भी मैंने
0: और किए भी
1: मैं, क्योंकि आर्टिस्ट था तो मैंने किया। तो रेडियो का मेरा सफर बहुत ही बढ़िया रहा। और मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं कि रेडियो हमारे पूरे देश में बहुत ही, अगर आप जाओगे अंदर, जैसे ही एंट्री लोगे रेडियो स्टेशन में, आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। तो ऐसा है हमारा रेडियो,
0: बिल्कुल जड़ों से जुड़ा है, हमारी जड़ों से, देश की जड़ों से जुड़ा है, हमारी संस्कृति से जुड़ा है, और आज भी रेडियो ने अपनी संस्कृति को छोड़ा नहीं
1: जी।
0: सर, आप रेडियो से जुड़े रहे, रेडियो से आपको इतना प्यार।

0: सर, आप रेडियो से जुड़े रहे, रेडियो से आपको इतना प्यार था, लेकिन आपने जीवन पर्यंत जो सेवाएं दी वो दूरदर्शन के लिए दी। तो ये कंट्रास्ट किस तरह से हुआ, कैसे रेडियो की दुनिया से दूरदर्शन की दुनिया में आप पहुंचे, और वहां जाकर चूंकि आप ड्रामा के आर्टिस्ट थे लेकिन आपने न्यूज चैनल को चुना और आपने पूरी सेवाएं दी, तो इसके बारे में बताइए हमें।
1: बहुत ही रोचक किस्म की कहानी है। मैं फिल्म की लाइन में चला गया था
0: अच्छा।
1: जी, और फिल्म मैंने बना ली थी। मेरी फिल्म का नाम था छन्नो, जो रीजनल लैंग्वेज में नहीं लेकिन डायलेक्ट में थी, हरियाणवी डायलेक्ट में।
0: हरियाणवी में।
1: तो उसके बाद क्योंकि सब कुछ खुद ही करना पड़ा था, एक तरह से कहा जाए तो मैं थक भी गया था, और
0: फिल्म
1: मुझे
0: बनाते हुए।
1: फिल्म बनाते हुए तो मुझे किसी ने कहा कि आप यूपीएससी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करो। तो मुझे एक बार तो लगा कि यार मतलब मैं कहाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं करो, आसान नहीं है। तो जब उन्होंने कहा आसान नहीं है, तो मुझे लगा अरे ये चैलेंज है, तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो खैर मैंने अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हो गया ड्रामे में। और जब ड्रामे में सिलेक्शन हुआ तो मेरी पहली पोस्टिंग लखनऊ थी, नवाबों का शहर लखनऊ।
0: जी
1: तो वहाँ
0: जी
1: मेरी डायरेक्टर से बात हुई तो डायरेक्टर ने कहा कि देखिए सुभाष जी, सिलेक्शन आपका ड्रामे में हुआ है एज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, लेकिन ड्रामे में तो हमारे दूसरे कर रहे हैं, तो आप ऐसे घूमिए कुछ दिन, उसके बाद देखते हैं। तो मैं घूमता घूमता न्यूज रूम था वहां पर, वहां चला गया, और वहां पर जब मैंने देखा तो मेरे लिए हर चीज नई थी, क्योंकि हम ड्रामे में हर चीज बहुत प्लान से और रिहर्सल के साथ
0: बिल्कुल
1: करते हैं,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन न्यूज में रिहर्सल का टाइम नहीं होता। तो मैं बड़ा शॉर्टकट आपको बताता हूँ, 2-4 दिन मैंने देखा जाकर पैनल पर, 3-4 हमारे कैमरे होते थे, वीएम अलग होता था, ऑडियो अलग होता था, ग्राफिक्स के अलग इनपुट्स होते थे, तो कुल मिलाकर शॉर्टकट 10-15 के करीब जो है लाइव इनपुट्स यूज होते थे एक बुलेटिन में, जो लाइव जाता था।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे बड़ा अच्छा लगता
0: हाँ
1: था।
0: हाँ
1: तो एक दिन वो जो प्रोड्यूसर करते थे वो आए नहीं, तो हमारे जो संपादक थे उन्होंने कहा कि सुभाष जी आप कीजिए। अरे मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप बुलेटिन खराब कर रहे हैं, ये मुझे
0: जी
1: कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बोला नहीं मैं आपको देख रहा हूँ 3-4-5 दिन से, आप बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेट्स ट्राई। मैंने कहा जिम्मेवारी आपकी होगी, अगर कुछ गलती हुई तो मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी। बोला नहीं नहीं मेरी होगी, आप कीजिए। तो खैर उन्होंने मुझे कहा और मैंने जाके किया, और वो बुलेटिन, न्यूज बुलेटिन लखनऊ से वाकई बहुत अच्छा चला गया।
0: जी
1: बस उससे मेरे न्यूज चिपक गया और
0: जी
1: वो लंबे वक्त तक चला मेरे साथ। तो मैं वैसे बीच बीच में दूरदर्शन के लिए ड्रामे करता रहा, और मैंने डांस प्रोग्राम भी किया। वो मुझे स्पेशल असाइनमेंट होती थी, जैसे सोनल मानसिंह जी का मैंने एक डांस का परफॉर्मेंस था उनका,
0: अच्छा।
1: वो मैंने स्टूडियो में किया, और मुझे जो हमारे चेयरमैन थे उन्होंने अप्रिसिएशन लेटर दिया और वो बहुत ही बढ़िया गया। ये मैं करता रहा, लेकिन स्पेशल असाइनमेंट की मैंने,
0: जी
1: मेन में जुड़ा रहा सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन न्यूज से।
0: जी तो हम चूंकि बात करने वाले हैं आपकी और भी जो फील्ड से उस पर भी, लेकिन अभी बात चल रही है आपकी दूरदर्शन की, उसके न्यूज चैनल से जुड़े रहने की। सुभाष जी, आजकल टीवी चैनल्स की अगर हम बात करें, प्राइवेट टीवी चैनल्स जितने भी हैं, वो अपने को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ में या टीआरपी के चक्कर में किसी भी खबर की सच्चाई जाने बिना बड़ा चढ़ाकर बात कहते हैं और एक अजीब किस्म की सनसनी फैला देते हैं। तो इस तरह की समाचारों की सार्थकता पर सवाल तो उठना ही चाहिए, आप क्या सोचते हैं? और आप जिस चैनल पे काम करके निकले, वहां सच्चाई को कितना रखा जाता था या सच्चाई कितनी खरी उतरती थी, इस पर हम जानना चाहते हैं।
1: देखिए अगर मैं आजकल के न्यूज़ चैनल की बात करूं तो मुझे, मैं पहले बहुत न्यूज़ देखता था,
0: जी
1: आज मैं न्यूज़ देखता हूं तो मुझे अंदर से दुख होता
0: जी
1: है।
0: फेडअप से हो जाते हैं हम।
1: फेड अप के अलावा मुझे लगता है कि यार ये न्यूज़ नहीं है, क्योंकि न्यूज़ का, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट भी रहा हूं,
0: जी
1: न्यूज़ में क्या होता है कि जो आपका एंकर होता है उसको अपने व्यूज जो है वो 10% मैक्सिमम 15-20% देने चाहिए, यानी 20% से ज्यादा उनको अपने व्यूज नहीं देने चाहिए, और बाकी जो आपके गेस्ट होते हैं या न्यूज होती है 80% जो है वो आपको वो बताना ही चाहिए, वो दिखाना चाहिए।
0: जी
1: लेकिन प्राइवेट न्यूज चैनल में बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये उल्टा हो गया है। एंकर जो

0: हैं वो अपने आप को गेस्ट भी समझते हैं, एक्सपर्ट भी समझते हैं, एंकर तो होते ही हैं, तो वो पता चल रहा है 80% यानी कि 80%
1: वो खुद ही बोल
0: वो
1: लेते हैं।
0: खुद ही बोल देते हैं हर चीज के, और जो गेस्ट होते हैं आपके जिनको आप बुलाते हैं
1: उन्हें बोलने भी नहीं
0: उन्हें
1: देते।
0: बोलने भी नहीं दिया जाता, तो ये अनफॉर्चुनेट है लेकिन है। और जहां तक हमारे दूरदर्शन की बात
1: जी,
0: रही,
1: आपने डीडी न्यूज और
0: मैंने
1: नेशनल न्यूज को कवर
0: जी
1: किया
0: मैंने
1: है।
0: डीडी न्यूज में किया, और मैं बहुत फख्र के साथ कह सकता हूं कि मैंने दूरदर्शन को छोड़ने से पहले 10 या 15 सालों तक मैं प्राइम मिनिस्टर्स की मोर देन 90% कवरेज मैं करता था
1: क्या बात है
0: जी।
1: जी।
0: और हमारे चाहे वो नरसिम्हा राव जी हों या मनमोहन सिंह जी हों या अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, और हमारे जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी हों, तो उनकी एक अलग चैलेंज होता है क्योंकि तो लाइव टेलीकास्ट होता है
1: जी
0: और आपके पास प्रेशर बहुत होता है,
1: जी
0: क्योंकि इस तरह की बड़ी रिकॉर्डिंग में आप चाहे प्रेसिडेंट की करें या प्राइम मिनिस्टर की, मैंने प्रेसिडेंट्स की बहुत रिकॉर्डिंग की और वीवीआईपीस की, वहां किसी को पता नहीं चलता है, बाहर वालों को, वहां प्रेशर ये होता है कि वहां जीरो एरर चाहिए, वहां गलती की कोई किसी तरह
1: गुंजाइश
0: की
1: नहीं होती
0: गुंजाइश नहीं
1: है।
0: होती।
1: जी बिल्कुल।
0: तो बड़ा मजा आता था लाइव वहां पे, तो अभी सोर्सेज बहुत हो गए थे हमारे पास, इतने ग्राफिक के सोर्सेज होते थे, पता चल रहा है कि फिर हम लाइव ओबी पे जाते थे और उसके बाद हमारे जो कॉरेस्पोंडेंट्स होते थे वो खड़े रहते थे चार चार पांच पांच छह छह जगह,
1: वो लगातार
0: और
1: सवाल जवाब करने के लिए।
0: सवाल जवाब
1: जी
0: करने
1: जी
0: के लिए। और
1: जी
0: मैंने जो सबसे बड़ी एक प्रोडक्शन की, मैंने नमस्ते ट्रंप जो अहमदाबाद से हुआ था, गांधीनगर से जब आए थे वो, तो हमने यूज किए थे तकरीबन मोर देन 100 कैमराज लाइव
1: क्या बात है
0: जी। तो
1: जी।
0: वो कवरेज जो है वो हमने की, और मैं वहाँ एज ए प्रोड्यूसर भी था और नेचुरली उस टाइम मैं हेड ऑफ द प्रोग्राम था डीडी न्यूज़ और डीडी इंडिया का, तो उसमें करके एक बड़ा मजा आया। और दूरदर्शन की न्यूज़ में हम कभी भी ऐसा नहीं करते थे कि जिसके अंदर आपको प्रॉपर न्यूज़ ना मिले,
1: केवल सनसनी फैला
0: सनसनी
1: दी
0: को,
1: जाए।
0: सनसनी को फैलाना कम से कम उस वक्त पे दूरदर्शन का काम नहीं
1: नहीं था।
0: था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूज लोग बाग सुनना चाहते हैं।
1: और इसीलिए सुभाष जी, रेडियो की न्यूज हो या दूरदर्शन की न्यूज हो, आज भी उनकी सत्यता पर आंच नहीं आई है।
0: जी
1: आज भी उन्हें ऑथेंटिक माना जाता है और
0: जी
1: लोग रेडियो की न्यूज सुनना या दूरदर्शन की न्यूज देखना पसंद करते
0: जी
1: हैं।
2: किसी की

आप सुन रहे थे मीडिया प्रोफेशनल और फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी का और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं आतिश की लिखी झलकी, लो कर लो दर्शन। निर्देशक हर्षवर्धन गवई।
1: अच्छा सीताराम जी, नहीं वो बात सही है आपकी, लेकिन
2: मैं भी वही कह रहा था आपको।
1: हाँ, आप तो सही कह रहे थे, लेकिन ये, अरे ये जोगिंदर सिंह जी कैसे अस्त व्यस्त से चले जा रहे हैं?
2: लगते तो वही है। एक मिनट। अरे जोगिंदर सिंह जी, ओ जोगिंदर सिंह जी, सरदार जी,
1: ओ जी,
2: अरे क्या क्या झटका खाया है क्या आपने? कहाँ चले जा रहे हैं घबराए से?
1: ओ क्या बताऊं सीताराम जी, शुक्र करो कि मैं जिंदा हूँ।
3: क्यों, क्या हो गया?
2: क्या हो गया?
1: अरे यार, खबर तो पढ़ी होगी आपने, टीवी पर देखी और सुनी भी होगी। हमारे पड़ोस में जो 6 मंजिला इमारत बनी थी ना, अचानक गिर पड़ी।
3: ओ जी, अरे रे रे, अरे रे रे,
1: हाँ जी।
3: अच्छा फिर तो उससे आपका क्या ताल्लुक?
1: ओ यार, हम लोग जहाँ चाय पीते हैं ना,
3: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ,
1: मैं उसी के नीचे खड़ा चाय की दुकान से चाय पी रहा था।
2: हुआ क्या?
1: बस सिर्फ 1 मिनट पहले चाय पीकर वहां से बमुश्किल 100 कदम आगे बढ़ा हूंगा कि पीछे से जोर से धड़ाम की आवाज आई। मुड़कर देखा तो बिल्डिंग गिर गई थी।
2: अच्छा अच्छा।
1: हाहाकार मच गई, मलबे के नीचे दबकर 30 लोगों की मौत हो गई। बस 1 मिनट का फर्क है, अगर मैं वहां से ना हटा होता ना, मैं भी ऊपर वाले के पास पहुंच गया होता।
2: ओ, ओ, ओ, ओ, बड़ी बुरी खबर है।
1: भला हो भाई गुरु का, उसने ऐन वक्त पर मुझे बचा लिया।
2: सचमुच जाको राखे साइया सरदार जी, मार सके ना कोई।
1: ओए जिसनू राखे रब, तो उसनू चखे कौन।
4: क्या रब ने बचा लिया है? और वो जो 30 बेगुनाह मलबे के नीचे दबकर मर गए, उन्होंने रब का क्या बिगाड़ा था?
2: लेकिन राम गोपाल जी,
4: अरे सच्चाई ये है सीताराम जी कि वो बिल्डिंग अनऑथराइज थी।
2: अच्छा।
4: उसकी कंस्ट्रक्शन में भी घटिया माल का इस्तेमाल किया गया था। सीमेंट की जगह रेत खूब ज्यादा इस्तेमाल की गई थी। जाहिर है कि अथॉरिटीज के साथ मिलकर रिश्वतखोरी की गई, मोटी मोटी रकम ऊपर से नीचे तक बहाई गई और बिल्डिंग बनने दी गई।
1: जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी।
2: क्या बताएं सरदार जी, क्या माहौल हो गया है। इस भ्रष्टाचार ने तो बेड़ा गरक कर दिया है पूरे माहौल का।
4: तो फिर रब ने इन भ्रष्टाचारियों को सजा क्यों नहीं दी? है? वो तो सब देख रहा है ना, सब जानता है ना। और यही नहीं है जो जोगिंदर सिंह जी के घर के बाजू में हुआ है।
2: तो
4: एक और बुरी खबर है।
2: वो क्या है?
4: एक अनऑथराइज रेस्टोरेंट में आग लगने से वहां जन्मदिन मना रही एक लड़की और उसके साथी जलकर मर गए। जानते हो 20-22 साल के 14 बच्चे मारे गए।
2: माय गॉड।
1: हाँ जी, ये सही कह रहे हैं।
2: बड़ी दिल दहलाने वाली खबर है सरदार जी।
4: अरे वहां भी तो बेचारे लोग खामखा ही मारे गए ना।

0: अब क्यों नहीं जला डाला उन सभी गुनाहगारों को तुम्हारे रब ने? क्यों नहीं मार दिया उनको? क्या अजीब मजाक है, जो बेगुनाह हादसों में मारे जाते हैं उनके बारे में बस एक ही राय, अजी साहब उनकी तो मौत आ गई थी, अजी साहब उनकी तो किस्मत में बस इतनी ही जिंदगी लिखी थी। और जो हमारे सरदाजी जैसे बच जाते हैं उसका सारा का सारा क्रेडिट भगवान को चला जाता है।
1: लेकिन यही तो कहा जाता
0: अरे
1: है।
0: अरे क्या कहा जाता है, आप सीताराम जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आप भगवान को क्रेडिट दे देते हैं, कभी रब को क्रेडिट दे देते हैं। एक और कमाल की सोच है, कमाल का विश्वास है, जो किया वो रब ने किया, जो दिया वो रब ने दिया। अरे साहब देखिए, हम भी पैदा हुए हैं, अपने माँ बाप की औलाद हैं, हमारी भी औलादे हैं, जिसको देखो वो सारा क्रेडिट रब को दिया जा रहा है।
1: हाँ?
0: सब क्या उसी की मेहरबानी है? बताइए सरदार जी, चुप क्यों हैं? क्या गलत कह रहा हूं मैं?
2: आप तो नास्तिक हो, आप तो ऐसा ही कहेंगे।
0: अरे सीताराम जी, भगवान ईश्वर गॉड रब सब एक विश्वास है, जो आस्था बन गया है। गॉड यानी रब ने इंसान को बनाया, बनाया या नहीं बनाया ये तो नहीं जानता मैं, लेकिन ये कभी ना झुठलाने वाला सच है कि ये इंसान है जिसने रब को बनाया। इंसान के बिना रब को जानता ही कौन है, बताइए आप। ये जो जानवर हैं, ये भी तो रब के बनाए हुए हैं ना। ये किसी भी धर्म स्थान के अंदर चले जाते हैं, आराम से लघु शंका से निवृत्त हो जाते हैं, गोबर कर देते हैं। भगवान होता तो ऐसा करते ये कभी?
3: यही तो फर्क है नास्तिक जी, इंसान और जानवर में। जानवर को दिमाग नहीं दिया भगवान ने, इंसान को दिया है सोचने और समझने के लिए।
2: ओए भगवान दास, बहुत देर के बाद आए हो, कितने सी तू?
3: मैं भगवान के साथ क्रिकेट खेल रहा था।
4: क्या बात कर रहे हैं भगवान दास जी, है कोई दूसरा भगवान भी तेरे नाम जैसा?
3: मेरे नाम जैसा नहीं, सचमुच का भगवान, जिसे तुम ईश्वर कहते हो, रब कहते हो, वो मेरा दोस्त है। मेरे साथ क्रिकेट भी खेलता है और शतरंज भी खेलता है।
0: फेंकू चंद है ये हमारा दोस्त जो है ना, ये भगवान दास नहीं, फेंकू चंद है, फेंक रहा है। अरे भला जो दिखता ही नहीं उसकी हकीकत क्या? ढकोसला है सब, रब गॉड। अरे तुम दिख रहे हो, मैं दिख रहा हूं, सीताराम जी दिख रहे हैं, सरदार जी दिख रहे हैं, कहां है तेरा रब बता दो, कहां? दिखा जरा मुझे, दिखा भाई।
3: वो सर्वव्यापक है ना, तुम्हारे सामने इसी वक्त मौजूद है, मगर तुम जैसे नास्तिक को दिखाई नहीं देगा।
0: चलो मैं मान लेता हूं मैं नास्तिक हूं, ये हमारे सरदार जी तो आस्तिक है ना, ये सीताराम जी तो आस्तिक है ना। भैया आपको दिख रहा है? तुमको दिख रहा है?
4: नहीं
0: दिख रहा है ना,
4: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: दो अब जवाब, है कोई जवाब?
3: ये हवा है ना, इसी में हम सब सांस ले रहे हैं, तुम भी। क्या दिखाई देती है किसी को जिंदगी क्या है? जब तक सांस लेते रहोगे जिंदा रहोगे, सांस बंद जिंदगी खत्म। मैं भगवान का दास हूं इसीलिए वो मेरा दोस्त है। मैं तो जब भी बुलाऊं वो ओब्लाइज करता है, दर्शन देने आ जाता है।
4: क्या बात कर रहे हैं भगवान दास, हमें भी दर्शन करवा दो भाई।
2: ओ हाँ यार, सानू भी करवा दे दर्शन।
3: चलो ठीक है, तो इस संडे को आ जाओ मेरे घर पे, मैं विनती करके बुला लूंगा रब जी को, आप दर्शन कर लीजिए।
4: ठीक है जी, आ जाएंगे। क्यों सरदार जी?
2: बिल्कुल आ जाएंगे जी।
0: भैया मुझे तो बख्श दो।
4: क्या बात कर रहे हो, चलिए आप भी चलिए।
0: नहीं,
3: ना ही आओ तो अच्छा है।
0: हाँ
3: भगवान की भी यही इच्छा है,
0: बस आप लोग दर्शन कर लो जी।
3: तो आ जाना आप दोनों, हाँ मेरे घर।
2: अच्छा जी, सत श्री अकाल।
4: राम राम भगवान दास, जरूर आएंगे।
2: ओ जी सत श्री अकाल जी।
4: भाई भगवान दास, राम राम।
3: आइए आइए, आ गए आप, मगर ये क्या साथ में इतनी भीड़ ले आए?
4: अब क्या करें, जिसने भी सुना दौड़ा चला आया, हमें भी दर्शन करवा दो, हमें भी दर्शन करने हैं, साथ ले चलो।
2: चलो भाई,
3: ओके, ऐसा करते हैं, वहाँ दूर एक लाइन में खड़े हो जाओ सब लोग, एक एक करके आना।
4: ठीक है
3: अंदर कमरे में भगवान जी हाजिर है, कर लो दर्शन।
4: और सरदार जी आप एक काम करो, आप लाइन लगवाओ, सबसे पहले मैं दर्शन करूंगा जी, और दूसरी बारी आपकी आ जाएगी, लाइन लगवाओ।
2: ओ अच्छा जी, ओ ठीक है जी, मैं जाता हूँ लाइन लगवाता हूँ, छेती छेती आप भी आ जाना, पहले दर्शन मेरे होंगे।
4: बिल्कुल।

0: बिल्कुल बिल्कुल, जाओ लाइन लगवाओ। तो भगवान दास जी, अब मैं जाऊं भीतर दर्शन करने?
1: हाँ हाँ, मगर एक शर्त है।
0: शर्त? वर्त यहाँ पर
1: भगवान सिर्फ उसी को दिखाई देंगे जिसने कभी झूठ ना बोला हो।
0: जी झूठ से मेरा क्या नाता, कोसों तक कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो केवल सच ही बोलता हूँ जब भी बोलता हूँ।
1: जिसने पाप ना किया हो।
0: ओहो हो, मैं तो पुण्य का भागी हूँ, और पुण्य भी ऐसे करता हूँ कि इस हाथ का उस हाथ को पता नहीं चलता।
1: और जिसने किसी को धोखा ना दिया।
0: हम क्यों धोखा धोखा देंगे, और भी कोई शर्तें हैं आपकी?
1: जिसने रिश्वत ना ली हो ना दी हो।
0: रिश्वत से अपना दूर दूर का कोई नाता ही नहीं है।
1: किसी लड़की पर बुरी नजर ना डाली हो।
0: हम क्यों नजर डालेंगे, आप बताइए कितनी शर्तें और बाकी हैं आपकी?
1: और जिसने किसी पराई स्त्री को कभी ताका झांका ना हो।
0: अरे भाई क्यों जागेंगे ताकेंगे किसी पराई स्त्री को, और भी कोई शर्त है? भीतर जाऊं दर्शन करने?
1: जाओ अंदर जाओ, दर्शन कर लो।
0: ठीक है, ये चला।
1: क्यों जी सीताराम जी, मिल लिए भगवान को? हो गए दर्शन रब के?
0: दर्शन? अरे भगवान दास जी, दर्शन की बात करते हो? हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। विराट प्रभु का स्वरूप, ओ हो, आत्मा प्रसन्न हो गई। क्या साक्षात दर्शन दिए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु।
1: इसी तरह सरदार जी ने भी दर्शन लिए, और जो भी आया था सभी ने यही कहा कि उसे भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों हंस रहा हूं। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि ऊपर बैठा भगवान भी हंस रहा है।
2: लो कर लो दर्शन। अभी आप सुन रहे थे आतिश की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे हर्षवर्धन गवई। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अमरकांत दुबे, अशोक सोनावने, राजेंद्र त्रिपाठी और जयंत पात्रिकर। ये थी विविध भारती मुंबई की प्रस्तुति।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन,
2: कौन लाया, कौन लाया।
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
5: एक टुकड़ा धूप का।
3: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैंने

0: सीख पाऊंगा। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे चित्रलोक।

बर्फी फिल्म का गाना निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज थी, स्वानंद किरकिरे के बोल प्रीतम की तर्ज थी, रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजें प्रसून जोशी के बोल, संगीत ए आर रहमान का, फिल्म का नाम दिल्ली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। आईसीसी क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: Partnership with UK is taking many more dimensions.
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए

2,500 रुपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत 6,000 रुपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000

वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपए का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1,700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंतकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा की देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्यत्व के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति

0: की गुणवत्ता रख रखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
1: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि COVID-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
2: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का

0: शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रूपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन,
2: कौन लाया, कौन लाया।
3: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
4: परेशान हूँ मैं।
3: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
5: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
3: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
5: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
3: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम बोल रहे हैं विविध भारती से। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आनिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने 2.5 दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

मुंबई आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत,

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं, जिन्होंने आज तक

उनको जिंदा रखा है, और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूंगा क्योंकि इट बी इजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे। तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफी याद हैं, लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज्यादातर हमने उनके

0: आई भी हैं, ज्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है, लेकिन उन्हें जरूर लगा। और इसकी वजह भी है, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों। फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
1: जी मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है कि उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूं। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूं और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1000 रुपये मांगना चाहता हूं, इस खबर के लिए आप मुझे 1000 रुपये दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, मैं देखा कि कोने में रफी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहां, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूं। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
0: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था और दस्तक 1970 में मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी, जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था, वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ एकदम जे सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला, अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे काम छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज चलाओ तेज चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माताजी जो साथ में बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए। उन्होंने कहा मदन जी, मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नजरों ने समझा गाना जो सुना है का माल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत, तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को, और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब खूब प्रयोग किया।

0: सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम, जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।
1: हम सब

शोध आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। मैं हूं विधि जैन। रूठना मनाना, ये तो प्यार का ही रूप है। शायद वो रूठकर हक जताते हैं और हम मनाकर प्रेम। वो रूठते हैं तो उदास नहीं, प्यारे लगते हैं, और हम मनाते हैं तो बेसहारा लगते हैं। और सहारा देने को वो मान भी जाते हैं और फिर प्रेम अपना कुछ यूं दिखाते हैं।

मैं यूं खामोशियों की ओट में खुद को छुपाइए, मेरी आंखों की बेचैनी जरा आकर पड़ जाइए। खता मुझसे हुई होगी मगर इतनी सजा कैसी, गिले शिकवे सभी रखिए मगर कुछ तो सुनाइए।

हम जानते हैं वो दूर जा रहे हैं, पर मन से नहीं, बस इतरा रहे हैं। बुरा तो लगा था हमारी बातों का उन्हें, पर अब लगता है बस यूं ही वो भाव खा रहे हैं। इसीलिए हमारी कलम ने लिखा कि चलो अब मुस्कुरा दो, ये गुस्सा छोड़ भी दो, मेरी खातिर अपनी जिद का रिश्ता तोड़ भी दो। जानती हूं ये रूठना बस बहाना है तुम्हारा, मुझसे और थोड़ा प्यार जताना है तुम्हारा।

0: छोड़ो,
1: छोड़ दिया था हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: और हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

अंतराल के बाद पुनः स्वागत है कार्यक्रम छाया गीत में। हम बात कर रहे हैं रूठने की और मनाने की। और अगर प्रेयसी रूठ जाए और कारण पता ना हो तो? पर मनाना तो जरूरी होता है ना, और मनाने के लिए थोड़ी सी जरूरत तो की जा सकती है और थोड़ी सी मेहनत भी। तो कहती है कलम की, तेरी खामोशियों में भी सदाएं सुन रहा हूँ मैं, तेरे रुखसार पर ठहरी दुआएं चुन रहा हूँ मैं, जो तेरी आंखें बरसों से कह ना पाई मुझसे, उन्हीं अनकही बातों के अफसाने बुन रहा हूँ मैं।

किसी के रूठने से दिल तड़प जाता है, उसको मनाने के लिए भी दिल रह ही जाता है। रूठने मनाने के सिलसिले में कई सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और प्यार और मुस्कुराता है। कभी कभी रूठे दिल को देखकर तड़पन और मुस्कुराते देखकर मन की खुशी दोनों ही बड़ी खूबसूरत होती है। कहती है कलम कि मैं आपके नाम की खुशबू लिए फिरती हूँ सांसों में, मेरे एहसास की दुनिया में फिर से मुस्कुराइए। न जीत मेरी न आपकी मोहब्बत की हो बस, चलिए अब मान भी जाइए और मुझे गले लगाइए।

ये रूठना इजाजत देता है और करीब आने की, और ये मनाना इजाजत देता है फिर से मुस्कुराने की। ये रूठने मनाने के शिकवे के शिकायतों के इन पर्दों को धीरे धीरे हटाकर ही प्रेम का सुंदर रूप दिखाई देता है। रूठना मनाना इसकी भी एक हद होनी चाहिए, एक हद के बाद रूठे हुए को मान भी जाना चाहिए। और बस ऐसे ही जो रूठा है वो रूठ तो सकता है, यह उसका अधिकार है, पर मानना ये भी उसके काम में ही आता है। तो रूठिए पर जल्दी मान जाइए। इसीलिए तो कहा है कलम ने, ये जो रूठे हैं लब आपके, मौसम भी उदास है, बहारों की तरह फिर से मेरे आंगन में आइए। मैं अपने हर तर्क को अब प्रेम में बदल दूंगी, आप बस एक बार दिल से मुझे अपनाइए। नजर झुक झुक के कहती है बहुत कुछ आज भी, लेकिन मेरे अल्फाज से पहले मेरी धड़कन को पाइए। जो बीती बात थी उसको हवाओं में बिखरने दें, नए सपनों की चादर फिर मोहब्बत पर बिछाइए।

तो जल्दी से मिटा देना, क्योंकि जीवन मुस्कुराने के लिए है और साथ बिताने के लिए। रूठना मनाना एक पल का हो तो अच्छा है, अगर लंबा चले तो बड़ा दुखदाई। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, रूठे को मनाते रहिए, अगर कोई मनाए तो जल्दी से मानते रहिए। छाया गीत कार्यक्रम में आज इतना ही। अब आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में मैंने प्यार किया फिल्म से कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप सुन रहे थे। इसी के साथ आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक

0: स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: एंड टुगेदर बिकमिंग अ फोर्स मल्टीप्लायर।
2: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपए शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK-India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK के कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट CETA विच विल एंटर इंटू फोर्स फ्रॉम 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open